0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूं। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहां सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है हम बात यहां कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपन्स जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा हूं।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental of course हम चूज करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें। You know, and it's applicable both the places। जैसे movie को या TV को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज फिर आपकी practical day to day life में आएगी कि ये जो ड्रामा सारा दिन, इसको भी हम ड्रामा ही कहेंगे। माई जर्नी ऑफ लाइफ इज अ ड्रामा। वाई इज इट अ ड्रामा? बिकॉज एक सीन के बाद दूसरा सीन विद सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या तीन घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपन टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही।
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था। क्या होता, हैप्पीनेस या पेन दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रेट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स। इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन्स सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट। यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर। हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहां तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को
0: वो हाँ।

0: है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्यूलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये तो मुझे देखना ही है। अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में, वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है। जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो, इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स। सो दिस इज अबाउट वॉचिंग आर माइंड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूं अभी ऑफिस का काम या घर का, धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती है एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन, यू नो, नॉट टू मेनी थॉट्स, दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई, तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है। ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर, एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है। धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे वट एवर आर ओपिनियन,
1: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए, अब व्हाट नेक्स्ट,
0: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
1: ये बॉल,
0: यू सी, सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट ऐसे करते तो, इवन द एक्टर्स क्लोथ्स वी सीन वट एवर एवरीथिंग, आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल। जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या होगी,
1: वो खत्म हो गया,
0: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे, तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब, वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई। सो दिस वाज द सेकंड स्टेज। द थर्ड स्टेज जो आती कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
1: इन्वॉल्व हो जाते,
0: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर, तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से, देन आई हैव नो अदर थॉट, एंड देन आई, माय क्रिएटिविटी इज ओवर, बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग, मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई,
1: मेरे पहले तो मैं कर रही थी, वैसे
0: उससे पहले
1: जजमेंटल जब मैं हो रही थी,
0: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी। जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से, मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर, और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट, नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
1: बट माई कंट्रोल,
0: माई कंट्रोल,
1: बट आई हैव अ राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन,
0: दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू हैव अ राइट, लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यूजफुल एनर्जी?
1: No, it can't be. Yes.
0: Useful energy?
1: Actually, I know, it's always, it's of no use.
0: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में,
1: एक्चुअली और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी,
0: एग्जैक्टली यही चीज तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी ना, डे टू डे
1: हर एक को, ओ यस,
0: जो आपने कहा डू आई नॉट हैव द राइट टू हैव एन ओपिनियन, यस,
1: सो देन आई हैव माई राइट,
0: सारा दिन ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना, दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है। सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंट, एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व, एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया, मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी। नाउ दिस बिकॉज आई एम डूइंग एवरी डे, इट्स नॉट कि आई एम वॉचिंग अ मूवी जस्ट वंस इन अ वाइल, या मैं टीवी देख रही हूँ वंस इन अ वाइल, नहीं, हम रोज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जो रोज करेंगे वो बन गई मेरी हैबिट। अब जो हमने पिछली बार भी देखा कि अगर गुस्सा ऑफिस में

0: सिर्फ कर रहे हैं ये सोच के कि गुस्से से काम होता, लेकिन वो मेरी अगर बन जाती है हैबिट, तो वो हैबिट मेरे साथ हर जगह
1: मेरी पर्सनालिटी बनती है। यस, नाउ आई अंडरस्टैंड इट एक्चुअली।
0: अब ये था, शुरू किया था जब बैठ कर देखना, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई। अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है। अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे, वो ही हमें आज नहीं पता चलता, और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता, लोगों को बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती है,
1: वो कंटिन्यू। इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, दो दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे।
0: लेकिन अब इसको ही अगर आप देखो, जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है, एब्सोल्युटली के वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ, हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है। Somewhere we are using emotions and the other person's feeling to sell it into the market. और क्यों? क्योंकि हम feel करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. This sounds very harsh. This sounds very harsh, but it is the truth. हमें लगता है कि ये रहम है. Actually नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको compassion चाहिए, उनको love चाहिए. लेकिन love नहीं है. अगर हमने भी pain create किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा टेरर अटैक हुआ, तो व्हाट वाज द इन्फॉर्मेशन दैट वाज बीइंग फ्लडेड एवरीवेयर, कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर, व्हाई आर यू नॉट एंग्री, पीपल शुड गेट एंग्री, वही तो सोल्यूशन है, हाउ कैन एंगर बी द सोल्यूशन टू एंगर। जिन्होंने जो किया दैट वॉज अ साइन ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट। ऑलरेडी उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था, बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे। इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, वी ट्राइंग टू से गेट एंग्री।
1: इनफैक्ट वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया।
0: या बट नॉट इवन सी, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिडिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आई टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स एट द ब्रह्मा कुमारीज। वी नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, जो समथिंग वेरी वेरी नाइस दैट हैपन्स हियर इज कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमीडिएटली एवरीवन नोज दिस, हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन। हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं, और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर। क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है, आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? Don't just see it as a stimulus. See what is my responsibility now. तो वहां दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी। लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम डिटैच्ड हैं। लेकिन अगर मैं दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वेयर इज द पावर?
1: और इनफैक्ट अनोइंगली मैं दिए ही जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ।
0: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन।
1: डेफिनेटली शिवानी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं सोसाइटी के, नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है। तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई एम नॉट डूइंग थिंग्स,
0: यू बिकम वेरी पैसिव।
1: यस, यू नो लाइक, मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं। आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए।
0: एब्सोल्युटली, लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच

0: इसमें तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर पेन हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर पेन हर्ट रिजेंटमेंट एंड स्पेशली वो पूरी यू नो एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज थ्री. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे. अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितने दिन वो न्यूज में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो यू नो एवरी वन इज वेरी एंग्री, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट. किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या किया अपने देश के लिए?
1: कलेक्टिव एंगर जो था,
0: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट.
1: Again, you know, this is what people have seen.
0: See, if you want to voice your opinion, all the more you require stability. We thought ke anger and reaction hamari awaaz jyada, you know, jaise normal bhi, wo to badi baat hai, choti baat pe, office mein bhi hum dekhenge ya ghar pe bhi, ki main zor se chilla kar bolunga na to aapko zyada theek se samajh mein aayegi. See, the thing is, first is impact on you, ki aap jo emotions create karte hain, uska aapke upar impact, phir collective, sab logon ke upar uska impact, phir uska end result. Is particular case mein kya hua, humne bahut zyada kuch kiya nahi, humne sirf uske bare mein, jitne din wo news mein tha, hum bhi news ke saath the, and hum bhi usko, you know, office mein bhi wohi baat ho rahi hai, ghar mein bhi wohi baat ho rahi, humne kiya kya? 10 din, 15 din, I think that's about it all. Uske baad news change ho gayi, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
1: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती
0: है, हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है, वो तो आज भी दर्द में है. हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट.
1: अच्छा, लेकिन
0: अगर सारे इकट्ठे होकर इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं. वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे, विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर वो करना, वो उस तरह से करना धीरे धीरे मेरे क्या बनते जा रहा है, हैबिट बनता जा रहा है. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें एंड तुरंत अपने आप से पूछें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में. वन इज इन द मॉर्निंग एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन. और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कुछ एंड दिस इज गोइंग आउट टू द वर्ल्ड. ये एंड फॉर मी इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क कि इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है. एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे वी यूज्ड टू कॉल दिस डोनेशन ऑफ पीस एंड पावर. तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था. लेकिन पीस डोनेट करो, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई रियलाइज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ, हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है. इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इन टू द एनवायरमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम कि जो

0: कुछ मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी
1: अभी तक जाएगा।
0: वो आप तक पहुंचेगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स। यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरीवन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। कैसे आएगी? जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी। हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए। दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। हरेक जो हम हैं, हम सबकी मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें वो दुनिया की स्थिति है। तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं शांत होंगे तो दुनिया में शांति आएगी। तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी, लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी, लेकिन सबसे पहले आई विल बी पीसफुल, माई फैमिली विल बी पीसफुल, वेयर आई एम वर्किंग विल बी पीसफुल। तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, वी डू इट एवरी इवनिंग 6:30 to 7:30, सर्विंग द वर्ल्ड, सेंडिंग आउट पावर्स ऑफ पीस, लव एंड पावर, एंड स्पेसिफिकली एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ। ये तो फिक्स्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ 6:30 to 7:30 सभी भाई बहने सेंटर पर आते, एंड इट इज कॉल्ड मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस, कि विश्व में शांति के लिए हम इकट्ठे मिलकर मेडिटेशन करते।
1: इनफैक्ट यू नो इट्स सच अ ब्यूटिफुल एस्पेक्ट की इट विल मेक मी फील सो गुड कि आई एम डूइंग इट फॉर द वर्ल्ड। यू नो अभी तक तो सब कुछ इवन प्रोग्राम में भी हम अपने लिए कर रहे थे, यू नो हर चीज हम पर फोकस हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते। So this gives me such a good feeling. Actually, we should all try to experience
0: and
1: it.
0: And in this case, it is कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
1: हाँ, खुद को मिलता
0: सबसे पहले। See, if I do something for you, it's for you. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई benefit नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे through औरों तक पहुंचता। And जब हम देते हैं, that's the most beautiful feeling. लेना लेना सारा दिन ये तो बहुत easy है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। एब्सोल्युटली,
1: इनफैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है,
0: यू नो गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट। आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर, लेकिन वो हम अपने बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, giving love, giving peace, we are wanting happiness, asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
1: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिससे हम यू नो हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
0: कुछ और आ गया ना तब।
1: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना।
0: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी, इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, वो तो फिनिश्ड। सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, तो हमारा भी चेंज।
1: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है,
0: वही दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर।
1: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो यू नो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है, ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है जजमेंटल होना, और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना। इससे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीजें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें। यू नो आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट

0: फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा वही आपको तय करवाएगा। आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सदा शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
1: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प वो अनुभूति एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद द प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कंफर्टेबली, बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, आई एम अ पीसफुल बींग, शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस, इट्स लाइक अ लेजर बीम, मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM
1: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर आपको याद हो पिछली कड़ी में हमने ये जाना है कि इमोशंस और फीलिंग्स दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन्हें आज तक हम ये समझ रहे थे कि वो एक ही तराजू का हिस्सा है या एक ही थैली के हिस्से हैं, लेकिन हमने ये जाना कि इमोशंस जहां नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं वहीं फीलिंग्स मेरी नेचुरल सेंस को लेकर आते हैं, जो नेचुरली मैं हूं, सहज हूं। और आज हम बात करेंगे एंगर की, और आपको बता दें कि आने वाले जो कड़ियां हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि किस तरह से एंगर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो एक नेगेटिव इमोशन है, और क्या है उसका एंटीड्यूट, कहीं ना कहीं शांति जिसे हम और आप तलाश रहे हैं, क्या हम उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आगे चलकर बात आती है क्षमा की, यानी कि फॉरगिवनेस की। ये होगा आने वाली कड़ियों में, लेकिन आज बात करते हैं एंगर की। कई सारे रॉन्ग बिलीफ जुड़े हैं एंगर के साथ, इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा ऐसा लगता है कई बार, अगर हम पूरे अपने सिनेरियो को देखें तो चारों तरफ वो एंगर नजर आता है, और उस एंगर को हमने इतना नॉर्मल मान के एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप पहले भी हमसे कह चुके हैं कि अंदर से हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो कैसे खुद को बार बार ये समझाना जरूरी है कि ये कहीं गलत है, और उसे सिर्फ अंदर न रह के बाहर भी लेके आए।
1: बाहर की दुनिया की जो आज हालचाल हम देखते, तो बस एक बार न्यूज ऑन करने की ही जरूरत है या एक न्यूज़पेपर ही उठाने की जरूरत है, और पढ़ते ही या देखते ही वो एंगर हमारे अंदर भी इतना क्रिएट हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट, एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट, एक शहर दूसरे के अगेंस्ट, एक टीम दूसरे के, यू नो, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतना ज्यादा, और वो कॉन्फ्लिक्ट एक एंगर जेनरेट करता है। कहीं फैमिलीज के अंदर वो भी सारा दिन आज मीडिया में दिखाई देता कि फैमिली के अंदर ही ब्रेकडाउन है, तो चारों तरफ से एक नेगेटिव वायुमंडल तो है ही, लेकिन हमारा सारा दिन ध्यान बहुत ज्यादा उसकी तरफ होता कि बाहर क्या हो रहा है, और इस प्रोसेस में कहीं रुक कर अपने आप से पूछना होगा कि बाहर तो जो है तो है, दैट वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अबाउट, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है। बाहर बहुत एंगर है, बहुत नेगेटिविटी है, और वो देखकर हमें अच्छी नहीं लगती, और यू नो वी सिट डाउन एंड से ये दुनिया कहाँ जा रही है, यू नो व्हाट इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स, समाज का क्या होगा, घर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हालचाल है, यू नो, एंड हु विल आस्क दैट, वो मेरे से कौन पूछेगा, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि अंदर नेगेटिविटी है या प्योरिटी है या पॉजिटिविटी है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर का एंगर

0: इतना है जो मेरे अंदर भी उतना एंगर ही क्रिएट हो रहा है. तो आई नीड टू स्टॉप एंड चेक दिस कि मेरे अंदर क्या हालचाल है. कई बार क्या होता, हम जैसे हमने पहले भी बात किया, हम बुक्स तो पढ़ते हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी सुनते हैं या ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते, सब कुछ करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे सामने सत्यता को लाकर रख देती हैं. क्योंकि क्रोध, इस पर अब कोई डिबेट करने जैसी बात नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है. लेकिन सच जानने के बाद फिर भी उस पर काम नहीं करना, फिर भी कोई स्टेप्स नहीं उठाना जिससे आई कैन यू नो गेट रिड ऑफ इट, तो ये तो अपने आप से धोखा है.
1: लेकिन यही सचिवानी, बहुत से लोग यही इस, ये भी एक कंफ्यूजन या जिस दौर में हम रह रहे हैं कि मुझे सच पता चल गया तो समझ गया, बस हो गई बात, कि मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है कुछ. कुछ कैसे ये हो पाएगा क्या? और यही ये जो एक जो सो कॉल्ड अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं कि आज जब मुझे समझ में, मुझे पता तो चल गया, हाँ ठीक है, मुझे भी पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ, तो फिर अब क्या करना है?
0: क्योंकि सच बहुत सिंपल है, गुस्सा क्या है वो भी बहुत सिंपल है, उसको ओवरकम करना है वो भी बहुत सिंपल है. लेकिन होता क्या कि जब सत्यता सामने आ जाती है तो वो एक शीशे का काम करती है, इट इज अ मिरर टू माय इंटरनल स्टेट, और वो सत्यता मुझे दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अंदर है, कि अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन, दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है जिसने मेरे थॉट्स को उस डायरेक्शन में बनाना शुरू कर दिया है. तो अब अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे अंदर काफी सारा वर्क करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है.
1: आर वी रेडी? दैट्स व्हाट
0: यू नो, वो डिफिकल्ट लगता है, एंड देन वी से इट्स ओके, आई एम ओके द वे आई एम, यू नो. क्योंकि जहां परिवर्तन की और मेहनत की अंदर पे बात आती है तो हम कहते नहीं जैसे हैं ठीक है, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है.
1: तो पहले मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे अंदर काम करने की. ये जो इससे
0: मुझे जरूरत नहीं है भी क्यों? क्योंकि हम अनकंफर्टेबल रहते हुए भी कंफर्टेबल बन चुके हैं. यू नो इट्स लाइक दिस कि सपोज ये कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, यू नो इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन रोज उस पर ही बैठे हैं तो बैठते बैठते इस अनकंफर्टेबल कुर्सी पर बैठने की भी आदत हो जाती है. एंड वो जो दर्द वो दे रही है उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन, लेट्स से यू नो आई कांट चेंज माई चेयर, सो आई एक्सेप्ट दिस पेन एंड आई एक्सेप्ट दिस डिसकम्फर्ट, और इस पर ही मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती हूँ. आई से ओके एंड आई गेट यूज्ड टू सिटिंग ऑन दिस. तो इसी तरह वो जो कंफर्ट जोन हमने क्रिएट कर लिया, गुस्सा दर्द देता है, गुस्सा तकलीफ देता है अंदर, हमें पता है, लेकिन उसी के अंदर हमने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया कि ये ठीक है, दिस इज ओके. तो अनकंफर्टेबल में भी हम कंफर्टेबल रहने लग गए हैं, अनहैप्पी होते हुए भी हम अपने आप को हैप्पी समझने लग गए हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग इल्यूजन, या ये एक चीटिंग है अपने आप से. तो उस कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं हमें बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्सा मन पर तो नुकसान करता ही करता है और हमारे शरीर पर भी नुकसान करता है. एंड इट्स नॉट दैट वी आर ऑल इन द सेम थिंग. अगर आप चारों तरफ देखें तो इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम, यू नो, हमें हर तरह के लोग मिलेंगे समाज में. एक तरफ हमें उस तरह के लोग मिलेंगे जो दुनिया में छोटी से छोटी जो बात हो रही होगी उस पर उनको गुस्सा आ जाएगा. न्यूज देखते हुए भी उनको उतना ही गुस्सा आएगा जितना उन लोगों को आ रहा है जिनके साथ वो अत्याचार हो रहा है. यू नो, इतना ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है. थोड़ा सा बीच में आए तो उस तरह के लोग मिलेंगे जिनको उस बात से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है. दे विल लिसन एंड दे विल से ओके, इट्स एक्सेप्ट. लेकिन उनके जीवन में, उनके नजदीक, उनके ऑफिस में और घर में जो छोटी छोटी बातें हो रही है उससे उनको काफी गुस्सा आ जाता है. और एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वो लोग मिलेंगे जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो रहा है, एंड देन इट मीन्स जो भी, कुछ भी, चाहे बाहर चाहे उनके आसपास, उनको गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है. जिनको हम कहेंगे द इनलाइटेंड पीपल, दे विल नॉट लूज देयर कंट्रोल, दे विल नॉट गेट एंग्री. तो हर प्रकार के लोग हैं. अब मुझे अपने आप को उस ग्राफ के ऊपर ऑफ 1 to 10 मुझे अपने आप को रख कर देखना पड़ेगा कि वेयर एम आई. एंड देन देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो कहेंगे कि गुस्सा अगर नहीं किया तो ये सारी जो गलतियां हो रही हैं समाज के

0: इसके साथ हो गए हैं, इट्स लाइक आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, आई एम नॉट इवन मूविंग, और फिर इस पर बैठकर मैं कंप्लेन भी करती रहूं, ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक नहीं है. सो यू विल से गेट अप, मूव, चेंज योर चेयर. इट्स सो सिंपल. लेकिन रहना भी गुस्से के साथ है, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए.
1: बिफोर वी मूव ओवर टू यू नो कि कौन कौन से किस किस तरह के गुस्से होते हैं, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा, एक वो लोग हैं जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें नाराज नहीं या गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी ऐसे लोग हैं जो शो नहीं होने देते कि उन्हें गुस्सा है,
0: लेकिन वो गुस्सा तो हो रहे हैं.
1: वही वो एक और मेजर चीटिंग है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर जिसे इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको वो फिर कहीं ना कहीं किसी रूप में निकल रहा है.
0: वो सबसे पहले तो अपने शरीर पर निकलेगा, लेकिन इसका भाव ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भी बिलीफ के साथ चलते कि अंदर नहीं रखना चाहिए इसलिए निकाल दो. यू नो, अगर मैंने अपना गुस्सा अंदर रख दिया तो वो मेरा नुकसान करेगा अंदर, तो इससे अच्छा आप, अगर आपने गलती की थी तो आप पे मैं वो गुस्सा निकाल
1: दूं. अल्टीमेटली बात ये है कि अंदर ना बाहर कहीं नहीं रखना चाहिए.
0: बट अगर हम उस तरह से उसको चलेंगे कि अंदर नहीं रखना है तो बाहर निकाल दो, तो हम बाहर निकालते ही जाएंगे, निकालते ही जाएंगे. वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप? यू नो, सो समवेयर, जैसे इस मेडिटेशन के करते दौरान हम जिस यात्रा पर चले, तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन कि समवेयर यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप आउटसाइड. आपको, क्योंकि उतना लेवल नहीं है हमारा एकदम से कि बिल्कुल मन में भी गुस्सा नहीं आए. अल्टीमेट स्टेज वो है कि थॉट में भी एंगर नहीं आएगा, लेकिन एकदम से हम सोचें कि वो वाली स्टेज अचीव हो जाए तो वो नहीं हो पाती है. आइडियली होता क्या है, यहां गुस्सा आता है और ये बाहर निकल कर आता है. अब अगर इसको हम नहीं रोक पाते, कि यहां नहीं रोक पाते, एटलीस्ट हमें इसको यहां रोकना पड़ेगा. एक बार वो यहां रुकेगा, बिहेवियर में आप कॉन्शियस रहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आई शुड नॉट रिएक्ट. यू नो, एंड यू विल कॉन्शियसली कीप अटेंशन इन इट फॉर सम टाइम एंड यू विल सी दैट आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं. कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आप नहीं रिएक्ट करेंगे, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे. तो एटलीस्ट उतना नुकसान खत्म हुआ. तो बहुत सारी एनर्जी जो इस तरह से डिस्चार्ज होने वाली थी, रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले थे, वो रुक गया. देन इट्स अ जर्नी. तो नाउ नेक्स्ट स्टेज इज, ठीक है, मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन अब मुझे गलत सोचना भी नहीं है. देन आई विल वर्क ऑन द नेक्स्ट स्टेज कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे बुरा सोचना भी नहीं है. लेकिन अगर मैं इस प्ली को ले लूं कि जब भी मैं, मुझे गुस्सा है, मुझे बोलना तो चाहिए, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, देन इट नेवर स्टॉप्स, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन.
1: बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर, जहां हम ओपनली गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ,
0: वो अभी भी गुस्सा,
1: मंजिल कहीं और है.
0: बिकॉज गुस्सा वो नहीं है जो बाहर आ रहा है, गुस्सा सबसे पहले वो है जो यहाँ क्रिएट हो रहा है. तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि अंदर से वो इमोशन खत्म हो जाए, वो जो बात बात में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अफेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही है, और हमारे शरीर पर भी अफेक्ट कर रही है. बहुत सारी इस तरह से स्टडीज भी हुई है जिसमें ये बताया, और जो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने कोई चीज अंदर पकड़ कर रखी है, यू नो, यू होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, या किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने वो पकड़ कर रखा है, आप तब तक हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जब तक चलते रहेंगे तो वो आपके शरीर को तकलीफ देते ही रहेंगे. एंड दिस वाज दिस रिसर्च डन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कि दे वर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन फॉरगिवनेस. तो उस फॉरगिवनेस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन दैट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन ये असंभव है कि आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात अंदर पकड़ कर रखी हुई है. टिल यू लेट गो, द डे यू आर एबल टू लेट गो, you will be. Now what happens is we want to be happy. See, this is where the irony comes. And yet humne kitni sari baatein pakad kar rakhi hui hain. Impossible. To fir puri yatra chalte rahenge chahiye ye aur pakad kar ye rakha hua. So it will never be possible.
1: Wahi again hum ye sochte hain ki ye dono cheeze coexist kar lengi, ya gussa aur shanti ikattha kar rahe
0: sakta hai. Woh nahi sakta. Jabhi bhi hamare andar stress ya gussa is tarah se aata hai to hormones secrete hote hain, cortisol और एड्रेनालिन जो हमने देखा, और जैसे ही वो सिक्रीट होता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है,

0: ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है. यू नो इमिजिएटली अगर आप देखो कि लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हो और एक गाड़ी कोई बहुत नजदीक से आपसे चले जाए एंड यू फील कि यू जस्ट मिस्ड एन एक्सीडेंट वेरी क्लोजली, उस क्षण अंदर क्या क्या हो जाता है, वो सारा बॉडी में, वो सारा सिस्टम में फ्लो हो जाता है. लेकिन ये कभी कभी होता है, तो कभी कभी होने से उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कि छोटा सा एक्सीडेंट होना था बच गया, अंदर हार्मोन क्रिएट हुआ लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स. लेकिन जब हम एंगर स्ट्रेस ये सारा दिन क्रिएट करते हैं, दीज आर लाइक एक्सीडेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस
1: एवरी मोमेंट, यू नो लाइक आई थिंक कॉन्स्टेंटली,
0: और वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होने से वो केमिकल्स सारा दिन क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर और फिर हमें बीमारियों का अलग अलग रूप ले लेते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है. तो इसमें अब दो राय कहाँ होनी चाहिए कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं. जिसका हर एस्पेक्ट पे नुकसान हो रहा है, व्हाई हैव वी केप्ट इट विद अस.
1: लेकिन सिस्टर शिवानी अगर हम बात आम जिंदगी में देखें तो बहुत सी ऐसी प्लीज हैं जो जुड़ी हैं गुस्से के साथ, जिन्हें हम अपना बिलीफ सिस्टम में कह सकते हैं कि
0: एक्चुअली गुस्से को खत्म करने के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ सबसे पहले समझ लेना इट्स अनहेल्दी. यू नो जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस, हानिकारक है, सिमिलरली एंगर इज हानिकारक है मेरे लिए, वो हानिकारक है.
1: इनफैक्ट वी शुड राइट इट, एंगर इज टॉक्सिक नाउ.
0: एब्सोल्युटली इट इज टॉक्सिक, यू नो इसीलिए तो वो पूरा जो डेंजर का साइन होता है दैट गोज विद एंगर ओनली, क्योंकि वो इतना ज्यादा नुकसान कर देता है हमारे में. तो तीन स्टेप्स में हम चल सकते हैं. एक, समझ ले पहले अच्छी तरह से. जब तक समझ नहीं आएगा आई विल नॉट वॉन्ट टू चेंज. तो सबसे पहले समझ लें कि एंगर इज एब्सोल्युटली अनहेल्दी, ये मेरे लिए हानिकारक है. दूसरा, ये मेरी जिम्मेवारी है. मेरा एंगर ये मेरी जिम्मेवारी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति. ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी, किसी और की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा. क्योंकि जब तक वो किसी और की वजह से क्रिएट हो रहा है आई कैन चेंज इट, बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आई हैव अ चॉइस, देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट. एंड थर्ड इज वो जो आपने कहा बिलीफ्स, जो मान्यताएं हमने पकड़ कर रखी हुई हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा क्रिएट होता है, चेंज, लेट देम गो. जैसे ही बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ गुस्सा आना खत्म हो जाएगा. तो तीन स्टेप्स पर चले, पहले तो समझ ले कि दिस इज अनहेल्दी फॉर मी, सेकंड दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन फिनिश इट, एंड थर्ड व्हाट इज द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम विच नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड देन चेंज इट. बिकॉज हमने बहुत सारी बिलीफ्स पकड़ी हुई है और उन बिलीफ्स की वजह से ही हमने एंगर को पकड़ा हुआ है. बिलीफ गया एंगर भी चले जाएगा.
1: बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने अभी भी कहा कि बहुत से बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो उनपे आते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल हमें बिल्कुल गुस्से को जाने नहीं देते हैं हमारे पूरी जिंदगी से. उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे
0: बिलीफ को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर पाएंगे. कुछ नहीं है, नॉलेज से. क्योंकि जैसे सपोज अभी तक मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मेरा गुस्सा आपकी वजह से, यू नो नॉर्मल भी भाषा में अगर हम सारा दिन देखें, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं ऑफिस में आई, उन्होंने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आना ही था. तो आई वॉज लिविंग विद द बिलीफ सिस्टम कि मेरा गुस्सा इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अदर पीपल. तो इसीलिए मैंने हर बार अपने गुस्से को जस्टिफिकेशन दे दी, थोड़ा सा रुक कर चेक किया कि उन्होंने जो कहना था वो तो किया, उन्होंने जो करना है वो किया, अब गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा है, इट्स मी. देन आई आस्क माई सेल्फ व्हाट्स द ट्रूथ, क्योंकि बिलीफ जरूरी नहीं है कि वो सच है, इट्स अ बिलीफ. एंड ट्रूथ इज व्हेन आई वर्क विद इट, आई एक्सपेरिमेंट विद इट एंड आई एक्सपीरियंस इट. Till then it's only a belief. ये एक मान्यता है कि औरों की वजह से गुस्सा क्रिएट होता है. Right है या wrong है, we don't know. This I will have to experiment with myself. तो पूरे दिन को evaluate करें जितनी बार गुस्सा आया था और check करें क्या उन्होंने आपके अंदर आकर वो गुस्सा create किया, या उन्होंने जो करना था वो किया, उसको लेकर आपने जो अंदर create किया उससे गुस्सा आया. This will not have to be done once. नंबर ऑफ टाइम्स, आप 8 बार, 10 बार, एक हफ्ते के लिए, हर सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा डजंट नेसेसरी

0: always mean a big,
1: छोटे-छोटे
0: irritation हो रही है, तो वो आप हर time check करें, you know, like simple है कि let's say कई लोगों को आदत है कि वो बैठ के you know अपने knuckles को इस तरह से दबाते रहते हैं, अब कई लोगों को आदत है कि वो देखकर बहुत irritation होती है, right? तो it's like ये मेरी choice है, I'm doing this, अब इससे आपको irritation हो रही है, अब तक हम सोच रहे थे आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मुझे irritation हो रही है, I'm doing what I want to do. This is what I feel like doing. I am not getting into your mind and telling you get irritated with this what I am doing. No, you are choosing that you don't like this. So, irritation kisne create ki? Aapne. Kya aap usko finish kar sakte? Absolutely. The minute you realize this is my creation, it's over. Absolutely. So just work on this for 1 week. Every situation stop.
1: That's wonderful. What you're trying to say is ki hum ye keh rahe hain. आप ये कह रहे हैं कि गुस्सा मेरी वजह से ही अगर मैं क्रिएट करती हूँ किसी और की वजह से नहीं होता, ये एक मान्यता, ये एक जो मान्यता है ये रॉन्ग बिलीफ है, लेकिन मैं तब तक उसे स्वीकार ना करूं जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस
0: कोई भी बिलीफ को नहीं स्वीकार करना, बिकॉज अदरवाइज अभी तक एक बिलीफ था कि औरों की वजह से गुस्सा क्रिएट हो रहा है, अभी हम एक और बिलीफ क्रिएट कर देंगे कि नहीं ये मेरी वजह से हो रहा है, कल फिर वो उसको कोई चैलेंज कर देगा, तो डोंट, you know, that's all about, you know, that's why we don't say just listen and read and start doing it. Experiment, do it, experiment it, experience ho gaya, then it's the truth. So ab aap usko experiment kare, usko sach nahi mane ki this is the truth, lekin jab aapko usko anubhav ho jayega and you will realize this is the truth.
1: Okay, so this is again a new thing for us, you know, ki jo bhi jin bhi manyataon ko आप ये कह रहे हैं कि ये गलत मान्यताएं हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि वो गुस्सा आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं, उन्हें हम जैसे ही गुस्सा आने लगे, दैट्स वंडरफुल एक्चुअली,
0: जस्ट स्टॉप एंड चेक,
1: खुद एक्सपेरिमेंट करके.
0: एब्सोल्युटली, जब दो बार चार बार आई विल रियलाइज कि आपने गुस्सा क्रिएट कर रहा है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम, और जब मैंने उसको चेंज किया एंड ये क्योंकि मैंने अनुभव किया, किसी के सुनने से या बोलने से नहीं किया, जब मैंने अनुभव कर लिया, नाउ दिस इज ट्रूथ फॉर मी, और जब ये सच, ये सत्यता की ताकत मेरे पास आ जाएगी, ये मुझे परिवर्तन करने देगी. अभी तक ये आपकी स्टेटमेंट है सिर्फ, यू नो, अगर कोई सिर्फ ये प्रोग्राम सुने और सोचे कि हाँ मुझे तो गुस्सा अपनी वजह से ही आता है, तो चलो फ्रॉम टुमारो आई विल चेंज, इट विल नॉट हैपन. परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं आ सकता, परिवर्तन सिर्फ तब आएगा जब अंदर से देयर इज दैट इनर वर्क, यू लिसन टू इट, वो आपको समझ मिल रही है, बट द वर्क विल हैव टू बी डन. इनसाइड एक्सपेरिमेंट करें, बार बार रुकें, देखें किसने क्रिएट किया, इट्स माय क्रिएशन, कितनी देर क्रिएट करके रखना, एक मिनट, दस मिनट, एक घंटा, चूज एंड यू विल सी दैट यू हैव ऑल द पावर.
1: वंडरफुल. इनफैक्ट यही एक और जो मान्यता है कि एंगर इज गुड, यू नो एंगर इज गुड, तो यहाँ पे एक और फीलिंग भी हम चेक कर सकते हैं बार बार की
0: वॉट इज गुड अबाउट,
1: क्या मैंने गुड फील किया.
0: Ask, that's all, it's all about. See, self awareness क्या है, every time talking to yourself. बहुत लोग बोल रहे हैं anger is good. Now let me ask myself, what is good? पूरा हो गया, सीन खत्म हो गया, गुस्सा कर दिया मैंने, जिसको डांटना था उसको डांट दिया, और चार लोगों को भी डांट दिया, सब कुछ कर लिया, now stop. What is good? Put it down on paper. अगर आप नहीं थॉट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि लिखने से फिर मे बी इट जस्ट फ्लोज, एंड राइट डाउन अच्छा क्या निकला इससे और नुकसान क्या क्या हुआ, फाइंड योर लिस्ट. मेरे को अच्छे वाली साइड पे तो पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन बिकॉज देयर इज नथिंग अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं निकला.
1: मैं इसलिए बता पाऊंगी क्योंकि मैं खुद ये कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बिलीफ है या वट एवर इट इज, हमसे लाइक वी ऑल एक्सपीरियंस दैट की गुस्सा करने से कम काम निकलता है, वी लिव ऑन दैट, की गुस्सा किए बिना काम नहीं हो सकता.
0: तो काम तो निकल गया, और अगर प्यार से कराते तो, अगर आप प्यार से कराते तो काम निकलता,
1: कोई नहीं सुनता क्या मतलब,
0: आपके साथ कोई किस तरह से काम करवाए तो आपको अच्छा लगेगा. यू सी, इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द पेशेंस, हमारे वो पेशेंस नहीं है कि हम प्यार वाला मेथड यूज करके देखें. एक्चुअली क्या हुआ, Everyone has got used to that belief system के गुस्से से काम हो जाता है. अब अगर हमने किसी को एक बार कहा ये कर देना, उन्होंने नहीं किया, दूसरी बार कहा भैया कर देना, नहीं किया, तीसरी बार हमने थोड़ा सा जोर से बोल के कर दिया, और जैसे ही हमने जोर से बोलकर किया, उस व्यक्ति

0: कर दिया फटाफट. तो हमने कहा अरे वाह वेरी गुड, दिस मेथड वर्क्स. तो मैंने दो बार टाइम वेस्ट क्यों किया अपना, एंड क्योंकि टाइम तो है ही नहीं आजकल, वी आर ऑलवेज शॉर्ट. तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस यहाँ फिट होता जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं दो बार प्यार से फिर तीसरी बार गुस्से से नहीं बोलने वाला,
1: सीधे गुस्से से बोलूंगी.
0: एंड फिर एक बार ऐसे करते हैं, दो बार करते हैं, धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है. क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ ऐसा हुआ था, हुआ एक के साथ था कि एक को प्यार से बोलने से उसने दो बार में नहीं किया, लेकिन वो करते करते करते वो मेरा तो संस्कार बन गया. एंड नाउ दैट संस्कार विल कम इन टू प्ले एवरीवेयर एंड विद एवरीबडी, विद एवरीबडी.
1: हैबिट बना ली मैंने उसको.
0: मैंने हैबिट बना ली अपने आप की उसको. तो वो कहीं ना कहीं उनका तो कितना फायदा कर रही है वो नहीं पता, लेकिन अपना मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है. क्योंकि एवरी टाइम हर काम कराने के लिए मैं अपने अंदर वो एड्रेनालिन, वो कॉर्टिसोल्स, वो हॉर्मोन्स, वो नेगेटिविटी, हार्ट बीट फास्ट, वो सब क्रिएट कर रही हूँ एक एक काम कराने के लिए.
1: लेकिन शिवानी अगर ठीक है सब जगह मैं नहीं करूंगी, लेकिन कई जगह मुझे दिख रहा है कि चार बार बोलने पे भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ?
0: असर्टिवनेस, अथॉरिटी. अथॉरिटी चाहिए. यस, अगर हम समझते हैं कि प्यार से बोलने से नहीं काम होता तो हमें अथॉरिटी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी इज नॉट एंगर. टोटली डिफरेंट. एंगर इज वो कि जब अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, टर्मोइल, हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, हमारे अंदर से पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है. अथॉरिटी, हम बिल्कुल स्टेबल हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है बिल्कुल भी अंदर. एंड फिर भी हम थोड़ा सा स्टर्नली, वो भी तब अगर आपको लगे कि प्यार से काम नहीं हो सकता, एक्चुअली इवन दैट्स नॉट नीडेड. प्यार से डेफिनेटली काम हो सकता है. ये हो सकता है आपको चार की जगह छह बार बोलना पड़ेगा, लेकिन इन द प्रोसेस आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स.
1: लेकिन एक्चुअली हो सकता है जिन हालात में हम रह रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति भी
0: न्यूज़ अथॉरिटी है, वो भी इसलिए हो गया है. देखो ये सामने वाले व्यक्ति पे भी जो हम ब्लेम डाल रहे हैं, उनको भी किस चीज की आदत पड़ गई है.
1: मैं कहना चाह रही हूँ कि सामने वाला व्यक्ति को भी आदत है कि मुझ पे चिल्लाएंगे तभी मैं काम कर दूंगा कि भाई अभी एक चिल्ला.
0: क्योंकि जब हम बार बार बार बार चिल्लाते हैं तो सामने वाला भी ढीठ हो जाता है उसके ऊपर. हाँ ठीक है, जब चिल्लाएंगे तभी होगा. सो यू नो वी आर क्रिएटिंग दैट होल सिस्टम लाइक दैट, बट हमें ही उस सिस्टम को फिर से चेंज करना होगा. तो अगर प्यार से आपको लगता कि नहीं हो रहा है तो अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी एंगर नहीं है. अथॉरिटी में आप पूरी तरह से स्टेबल हैं अंदर, आप सोच समझ कर एक एक शब्द बोल रहे हैं, आपका एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं निकलेगा, सिर्फ आप थोड़ा सा स्टर्नली बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन करके बोल रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू यूज समटाइम्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो. अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड नीड्स टू यूज दैट, कि आपको थोड़ा सा असर्टिव होकर बोलना पड़ता है, बट नॉट एंग्री. एंगर इज नॉट नीडेड. लेकिन इसके लिए सबसे पहला बिलीफ सिस्टम जो तोड़ना पड़ता है वो यही है कि गुस्सा मेरी अपनी क्रिएशन है, इट्स मी. अभी तक बिलीफ था इट्स
1: सिचुएशन, द अदर पर्सन. गुड, वंडरफुल. एंड यू नो अगेन ये बात सुन के हमें इसे अपना बिलीफ सिस्टम बना लेना ये भी जरूरी नहीं है.
0: नहीं, हर बात इसको एक्सपेरिमेंट करो, सारा दिन में ट्राई करो. आपको जो बोलना था आपने बोल दिया. सी इट्स लाइक दिस, यू वॉक इन एंड यू कम इन से यू आर गुड फॉर नथिंग, दैट्स व्हाट यू से. तो आपने बोल दिया, अब मैं उस सेंटेंस को अंदर ले लेती हूँ और अपने आप को बोलना शुरू करती हूँ. इन्होंने बोला कि आई एम नो गुड, इन्होंने बोला आई एम नो गुड. नाउ आई लिसन टू दैट सेंटेंस, मेरा जो इमेज अपने साथ अपने बारे में अंदर है आई एम वेरी गुड, ठीक है. लेकिन आपने बोल दिया कि आई एम नो गुड, तो ये दोनों के साथ क्लैश हो गया. जहां वो क्लैश हुआ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ. इफ आई वॉन्ट टू मेंटेन माई स्टेबिलिटी आई कैन से इट्स ओके, इन्होंने वो बोला कि आई एम नो गुड. पहली बात, या तो ये मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं है, दूसरी बात ये फिर भी एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन से. इनके बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं बन जाऊंगी उस तरह से, लेकिन अब अगर मैं अपना आपा खो दूं देन तो आई एम रियली नो गुड, देन आई एक्चुअली बी प्रूविंग टू यू व्हाट यू आर सेइंग. सो यू से समथिंग टू मी दैट्स ओके, बट दैट डजंट क्रिएट द एंगर. उसको अंदर लेके जो मैं क्रिएट करती हूँ ना, इन्होंने ऐसा कैसे बोला, इन्होंने अपने आप को क्या समझते हैं, ये इन्होंने ऐसा, तो नाउ आई एम क्रिएटिंग दैट एंगर. अब वो कितना क्रिएट करना है, किस लेवल का क्रिएट करना है, कितनी देर का क्रिएट करना है.
1: Okay, लेकिन वो

0: इतना रिएक्शन इतनी देर तक होता है ये हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो एक इंस्टेंट जो एक्चुअली एंगर है, जो रिएक्शन की बात है, वो इतना इंस्टेंट होता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना देर लगा पाऊंगी अपने अंदर की जो कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मे भी आदत नहीं है इस कॉन्वर्जेशन.
1: दैट्स सो. अगर वो अवेयरनेस हमने अदरवाइज प्रैक्टिस की होगी तो नेक्स्ट टाइम ये बहुत स्लो चल रहा है, देन वो अवेयरनेस में रहेगा कि हाँ इन्होंने कह दिया. अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन शाम को जब हम बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे दैट टाइम चेक इट अप, और आप देख लें और तब अपने आप को कंक्लूजन दे दें, उन्होंने गुस्सा नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था. टॉक टू योर सेल्फ, काउंसिल योर सेल्फ, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था. गुस्सा किसने क्रिएट किया?
0: मैंने खुद.
1: तो उस टाइम शायद अभी नहीं याद आएगा क्योंकि नया नया प्रोसेस चल रहा है, लेकिन शाम को बैठकर उस पर वर्क करेंगे तो कल जब होगा तब वो याद आ जाएगा.
0: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, एंगर के इस एस्पेक्ट की बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि जिन भी रॉन्ग बिलीव्स को या जिन भी बिलीव्स को हम रॉन्ग या राइट समझते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको भी ना मान के एक एक्सपेरिमेंट करते रहे, उसको एक सूत्र पकड़ के उस पर खुद अनुभव का जो हमारा एक सफर है उसे तय करते रहे और फिर देखें कि हम कहां खड़े हैं, क्योंकि अगेन काम अपने ऊपर करना जरूरी है. लेकिन आज ये जो पूरा हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें ये बात तो सामने आती है, जिस तरह से हमारा परिवार जुड़ा है, कि हम काम करने को तैयार हैं. शायद वो रास्ता नहीं मिल रहा था तो अब ये रास्ता हम जरूर पकड़ेंगे. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: जिस गुस्से को हम सही मानते हैं, हो सकता है वो सही हो अगर आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि हर बात की तरह बात यही कहेंगे कि जिस बिलीफ को लेकर हम चल रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है और उसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है. आज तीन बातें हमारे सामने आई हैं कि सबसे पहले ये कि हम समझ लें कि गुस्सा अगर हम करते हैं या एंगर या क्रोध जो है वो किस तरह से ना सिर्फ हमारे मन को बल्कि शरीर को परेशान करता है, उसके लिए नुकसानदायक है. दूसरी बात ये, हम ये अभी तक मानते आए हैं कि गुस्सा कोई और क्रिएट करता है, किसी और के कारण मुझे आता है, लेकिन करने वाला मैं खुद हूं, ये बात जानना बहुत जरूरी है. और तीसरी बात ये कि जो रॉन्ग बिलीफ्स हैं या जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है. सफर अभी लंबा है, लेकिन अगर हमने एक सूत्र पकड़ लिया है तो फिर सफर पर चलने को भी हम तैयार हैं. ये इंटरनल जर्नी यूं ही चलेगी. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं.

और हकीकत के फासले को कम करते हैं। नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बदलेंगे मन में जोश, अपने तन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में।
1: सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और stable भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। You know, तो then I cannot say कि I am internally stable, but now I am being assertive। तो internal stability means, no trace ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है, तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं, तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
0: रक्तदान करें।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
4: दोस्तों, जब आपके ऊपर किसी का उधार हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिन रात उस चीज की याद आती है कि मुझे ही किसी को लौटाना है, मुझे ही किसी को लौटाना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी से लिया हुआ कोई सामान हो, किसी से लिया हुआ कोई किताब हो। हमेशा ही बुद्धि में ये बात रहती है कि मुझे सामने वाले को लौटाना है। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो उसको धन्यवाद बोलना या उसके लिए कुछ उपयुक्त ऐसा कर्म करना जिससे उसके किए हुए उस सहयोग का मैं ऋण चुका सकूं, ये मुझे हमेशा याद रहता है। आपको भी याद रहता होगा। लेकिन एक ऋण ऐसा है दोस्तों, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। माता पिता का ऋण हमें याद होता है, दोस्तों का ऋण याद होता है, परिवार जनों का ऋण हमें याद होता है, लेकिन जो ऋण माँ प्रकृति का हमारे ऊपर है, वो ऋण हम भूल जाते हैं। नैसर्गिक ऋण है ये, निसर्ग ऋण है ये, जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस निसर्ग ऋण को भूलता नहीं है, याद रखता है, वही जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो कि पूरे भारत का नक्शा ही बदल देता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्री शरद काले जी के साथ। डॉक्टर श्री शरद काले जी भारत के वो यशस्वी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कारण निसर्ग ऋण। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर शरद काले जी और समझते हैं क्या है निसर्ग ऋण। स्वागत करते हैं डॉक्टर शरद काले जी का हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शरद काले जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर शरद काले जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे श्रोता साथियों से जोड़ने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका दिनचर्या मैं समझता हूँ बहुत बिजी रहता होगा, क्योंकि आपको हमारे जैसे कई लोग ढूंढ रहे होते हैं समय आपसे बातचीत करने के लिए, आपका थोड़ा सा समय पाने के लिए। तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
5: मैं वैज्ञानिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर कोई जो कोई मुझसे बात करना चाहे उससे मैं बात करूं, उसे सेटिस्फाई करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है
4: जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे शरद काले जी के सफर की, जहां पर बचपन से लेकर के एक वैज्ञानिक बनने तक और एक वैज्ञानिक ही नहीं भारत के प्रबुद्ध व्यक्तित्व बनने तक का जो सफर है वो

0: सुनना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी।
1: मैं अहमदनगर में शालेय शिक्षण ले चुका हूँ मेरा, और सबसे ज्यादा मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ने वाले व्यक्ति थे मेरे स्कूल के जो 68 शिक्षक, मुझे पूरे नाम याद है, और मैं उनको अपनी तरफ से किताबें लिख के एक एक करके अर्पण कर रहा हूँ। 14 किताबें हो गई है और 54 किताबें लिखनी है। तो कभी मैं मेरा उत्तरदायित्व उनके प्रति थोड़ा सा तो जिसे हम रिटर्न कहते हैं वापस दे सकता, पूरा तो नहीं दे सकता। और दूसरे जो व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस किया है मुझ पर वो मेरे पिताजी और माताजी। मेरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक गुरु मेरी माताजी रही है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाल पोस के हमें तो बड़ा किया, लेकिन जो संस्कार भी है, मुझे याद है कि मैंने जो मेरे जीवन में अगले अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कचरे पे काम किया, उसकी शायद बीज मुझे याद है कि 1964 की दिवाली, उस दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा थी, और लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी माताजी ने कहा बेटे, चवन्नी थी, तो चवन्नी मेरे हाथ में दिया और कहा कि बाजार में जाके केरसुरी खरीद लाओ। केरसुरी का मराठी में मतलब मेरे शब्द इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। केरसुरी मतलब छोटा झाड़ू, वो उस जमाने में बैठ के झाड़ू लगाते थे, पर छोटा झाड़ू हुआ था, लंबा झाड़ू नहीं हुआ करता था आजकल जैसे होते हैं, छोटा झाड़ू हुआ करता था, उसे हम लक्ष्मी केरसुरी कहते थे। तो मैंने माताजी से कहा, माताजी आप सब लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, मिठाइयां खरीद रहे हैं, हम आप मुझे झाड़ू खरीदने को क्यों कह रही है? तो मम्मी जी ने कहा कल बताऊंगी। कल दूसरा दिन लक्ष्मी पूजा थी, तो लक्ष्मी पूजा के दिन उन्होंने वो चौरंग पे एक 5 रुपए की नोट थी, उस जमाने में 5 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और मम्मी के पास एक छोटा सा गोल्ड का ऑर्नामेंट था वो रखा और उसमें झाड़ू रखा और ये तीनों की पूजा करने को कहा। मैंने कहा मम्मी जी मैं लक्ष्मी की पूजा तो समझ जाता हूँ, लेकिन झाड़ू की पूजा क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, इतना सुंदर उत्तर मुझे आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है, और पूजा का अर्थ भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ मम्मी जी को कि मुझे पूजा का अर्थ उन्होंने समझाया, और बहुत छोटी उम्र में समझाया। उन्होंने कहा बेटे तुम जिसे केरसुनी कहते हो, झाड़ू कहते हो, वो असल में जुड़वा बहन है लक्ष्मी जी की, और दोनों को सह अस्तित्व होता है, और ये सह अस्तित्व बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है तो दूसरी है, एक नहीं है तो दूसरी नहीं है, इसलिए एक की पूजा करना और एक का अपमान करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, दोनों की पूजा दोनों को होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा पूजा मतलब क्या, हल्दी कुमकुम चढ़ाना, हार लगाना, आरती करना और नैवेद्य खुद खा लेना, इसका मतलब पूजा होता है क्या? ऐसा नहीं होता पूजा, पूजा होती है 364 दिन, 364 दिन जब सेवा कर रहे हो तो पूजा कर रहे हो, 365वें दिन याद करके, लक्ष्मी पूजा के दिन याद करके, खुद मिष्ठान खा के, फिर खुद को याद दिलाना है कि मुझे अगले 364 दिन लक्ष्मी माता और झाड़ू माता आप दोनों की पूजा करनी है, तो ये होती है पूजा। तो ये जो अर्थ है पूजा का कि आपका कर्तव्य आप निभाते रहो, वही पूजा होती है, वर्क इज वर्शिप। ये बहुत अच्छा लेसन, और झाड़ू ये अलग चीज नहीं है, ये जो कचरा है ये नाम की वजह से हमने इसका इतना हमारे देश में पूरा डंपिंग यार्ड जैसे लगता है, क्योंकि वो धारणा मन में एक बार बैठ गई कि यह कचरा है। अगर मन में धारणा बैठ गई कि यह कचरा नहीं, ये लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता। तो ये बहुत उम्दा काम, सकारात्मक काम मेरे मम्मी जी ने मेरे मन पर संस्कार ये किए थे। दूसरे थे हमारे टीचर्स, बहुत ही अच्छे थे। एक टीचर ने हमें एक पौधा लगाने को दिया था, वो पीपल का पौधा आज 65 ईयर्स ओल्ड हो गया है जो हमने अपने हाथों से लगाया था। तो उस 65 साल के पीपल के वृक्ष के नीचे जब मैं बैठता हूँ तब मुझे समझ आता है कि मेरे शिक्षक ने मेरे लिए क्या किया। हम कहते हैं कि हम सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है इसका हिसाब नहीं करते क्योंकि फ्री मिलती है। अभी आपकी अगर श्वास के हिसाब करें तो हम 21,000 बार श्वास लेते दिन में, और 21,000 बार श्वास लेते समय हम 17,000 लीटर हवा लेते हैं अपनी फेफड़ों में। तो 17,000 लीटर हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, मतलब

3,500 लीटर ऑक्सीजन होती है, उसका अगर वजन करें, केमिस्ट्री में एक रूल है कि 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, उस हिसाब से हमें 2.7 किलोग्राम ऑक्सीजन रोज लगती है। और जब कोरोना काल में हम ऑक्सीजन खरीदते थे तो पता चलता था कि 11,000 रूपये किलो पे ऑक्सीजन बेची जाती है इंडस्ट्रियल, मतलब 33,000 रूपये का ऑक्सीजन रोज हम 21,000 बार श्वास के लिए इस्तेमाल करते, मतलब हर श्वास के लिए हम 1.5 रूपये मोल अलग करना चाहिए प्रकृति। अगर प्रकृति ने ऑक्सीजन का सप्लाई कट किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती। प्रकृति ने कहा आप 1.5 रूपये नहीं दे पा रहे, आप श्वास नहीं ले पाओगे, ये हमारा जो मुलाकात है ये ऊपर लेनी पड़ेगी चित्रपट के सामने, क्योंकि ना तो आप बिल दे पाओगे ना हम दे पाएंगे। लेकिन जो सर ने मेरे लिए काम किया था, मैं आज जोड़ता हूँ सर को पेड़ के नीचे जब बैठता हूँ, कि मेरा ऑक्सीजन का बिल सर ने दिया है ऑलरेडी। वो जो पेड़ अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से 3 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो जितना मैंने लिया उतना दे दिया। ये जो निसर्गरुण, जिसे मैं संस्कृत में निसर्गरुण या प्रकृति का ऋण, ये चुकाने की जो बात है, ये 7वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा में ये संस्कार हमारे ऊपर मन में, स्कूल में और घर में हुए। इसकी वजह से ही मैं आगे अच्छे काम कर सका। अगर ये संस्कार शायद नहीं थे तो शायद नहीं कर सका। एक और एक छोटी कहानी मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी, कि हमारे एक सर ने एक बहुत अच्छा सम दिया था 5वीं कक्षा में। एक टंकी है, उस टंकी का वॉल्यूम 10,000 लीटर है और वो टंकी का पानी भरने का जो रेट है 120 लीटर प्रति मिनट है, लेकिन उसको एक छेद गिरा है और छेद से पानी बह रहा है, तो उसका पानी बहने का रेट 20 लीटर प्रति मिनट है। तो टंकी भरने को कितना समय लगे? होशियार बच्चे थे क्लास में, सबने जवाब दिया 100 मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने कुछ सोचा, सवाल मेरे मन में आया, तो मैंने सम किया नहीं, सर की तरफ देखता रहा। सर को गुस्सा आया, सर ने कहा जवाब मेरे चेहरे पे लिखा है। जवाब तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, पूछो। तो सर, मैंने कहा सर अगर टंकी डल रही है तो भरेगी, अगर हम उसे लीक बंद करें और फिर भरे तो पानी भी नहीं वेस्ट होगा और एक सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। तो सर ने बहुत उमदा चीजें दो बताई। सर ने कहा बेटे ऐसा कभी मत सोच, ये गलत सोच है, क्योंकि भारत में सब मार्क्सवादी लोग हैं, मतलब सबको मार्क्स चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। ज्ञान की बात से मत बोल। लेकिन सर ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही। सर ने कहा बेटे जब बड़ा होके समाज में जाएगा, भारत में जाएगा, मधुबन रेडियो में मुलाकात करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सारा भारत देश ही गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है, और अगर उसमें से एक गलती बंद करने की कोशिश तुम करोगे तो आसमान में मेरी तरफ देख के बोल कि सर मैंने गलती बंद करने की कोशिश की है, तभी मैं तुम्हें किताब की गलती निकालने का अधिकार दूंगा, तब तक तुम्हें ये सम ऐसा ही करना पड़ेगा। 5वीं कक्षा के बच्चे को सर ने ये चीजें क्यों बतानी चाहिए, वो सर का ही बड़प्पन है, सर की ही सोच थी कि अगर इस बच्चे के मन में कुछ, दिमाग में कुछ सीड डाले तो उसका किसका किसके ब्रेन में वो से, अभी ये स्टोरी तो सर ने सबको बताई, तो ये सीड कहां पैदा होगा, कहां जर्मिनेट होगा। तो ये होता है शिक्षक का जो दृष्टिकोण जो होता है ना, बहुत उन्नत है हमारे सर के। ऐसे अच्छे शिक्षक मुझे मिले थे स्कूल में, और इतनी बढ़िया शिक्षक मिलने से मेरे जीवन को एक दिशा मिली। तो 1966 की बात है जब डॉक्टर भावा जी का, अपने बाबा का देहांत हो गया प्लेन एक्सीडेंट में 24 जनवरी को, तो उसे दूसरा दिन था, वो सैटरडे था, और उस दिन हमारे स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर की थी, लेकिन सर ने बहुत ओजस्वी ऐसा भाषण दिया, कौन है बाबा, क्या है विज्ञान, क्या है एटॉमिक एनर्जी। और उस सुन के मैंने घर में आके उसके नोट्स बनाए, आज भी मैंने मेरे पास वो नोट्स रखे हैं, कभी मौका मिले तो आपको दिखाऊंगा। तो वो जो नोट्स से मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जी मैं वैज्ञानिक बनना चाहूं, तो मम्मी ने कहा बेटे जो भी बनना है उसमें कभी चेंज मत करना, योर माइंड शुड बी फोकस्ड, अगर फोकस है, केंद्रीभूत रहेगा, लक्ष्य तुम्हारा ठीक रहेगा, तो तुम यशस्वी हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो मैंने कभी मेरा लक्ष्य बदला नहीं, और आज तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया

वैज्ञानिक क्यों बना। तो ऐसे वैज्ञानिक बनने के जो रास्ते थे वो स्कूल में खुले हुए, तो कुछ देखे, कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ लिखे, कुछ पढ़े। तो ऐसे जैसी जिंदगी बनती गई तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैंने प्रवेश किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहा था तो एक दिमाग में आया, अरे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना सुंदर है, आपको मालूम है आपके शरीर में कितने सेल्स है, पेशी है। तो हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन पेशी होती है, सेल्स होती है। अभी हर पेशी में, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं आप उसका एविडेंस भी दे सकता हूं कि हर सेल में 10^16 एटम होते हैं, मतलब 3 × 10^12 12 सेल्स, और हर सेल में 10^16 एटम। तो हमारा शरीर 3 × 10^28 एटम से बना हुआ, और ये एटम में आपको मालूम है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को मैं अलग नहीं मानता, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिक कण जिसे कहते हैं वो दो ही, मूलभूत कण दो ही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और निगेटिव है। तो ये निगेटिविटी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जो बात आपने की, ये समझना, ये मुझे एटॉमिक एनर्जी से लेसन मिला कि जब हमारा प्रोटॉन, जब हमारा एटम उसका इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन निगेटिव हो गया। तो सोडियम को पॉजिटिव, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपकी निगेटिविटी आप छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव बनोगे, आपका ही एटम आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और आपके शरीर में ऐसे 3 × 10^28 एटम आपको बता रहे हैं भाई निगेटिविटी छोड़ दो, आप पॉजिटिव बनो। अभी ये निगेटिविटी इतनी खराब चीज है क्या? वो सोडियम ने दी, क्लोरीन ने ली, इसलिए बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड नहीं बनता था तो सोडियम क्लोराइड नहीं बनता था, सोडियम नहीं बनता था तो पेशी नहीं बनती थी, पेशी नहीं बनती थी तो ऑर्गन नहीं बनते थे, आप नहीं बनते थे, मैं नहीं बनता था, फिर ये भाषण नहीं सुनना पड़ता था। तो ये सब बना क्योंकि निगेटिविटी यूज दैट राइट प्लेस इज कन्वर्टेड टू पॉजिटिविटी। ये लेसन हमें इस एटॉमिक एनर्जी से मिलता है कि आप निगेटिविटी, निगेटिव एंड पॉजिटिव दीज आर टू साइंस, डोंट टेक इट इन अ निगेटिव सेंस। ये निगेटिविटी भी जरूरी है लेकिन उसे निगेटिविटी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। अगर मेरे सामने ये प्लग पॉइंट है, इसमें निगेटिव में हाथ डालूंगा तो शायद मुझे शॉक नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव में हाथ डालूंगा तो पूरा मंडल पूरा होकर मुझे शॉक लगता है। तो ये निगेटिविटी इज नहीं होती तो ये फ्लो नहीं होता पहले, तो निगेटिविटी होना जरूरी है। तो कचरे को मैं लोगों को कहता हूं कि कचरे को निगेटिविटी मत सोचो। तो मैथमेटिक्स में भी जो थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो पॉजिटिव? तो निगेटिविटी पुट एट राइट प्लेस बिकम्स पॉजिटिविटी, कचरा पुट एट राइट प्लेस बिकम्स रिसोर्स। एंड शेक्सपियर से मेरा वही झगड़ा है कि शेक्सपियर को मैं कहूंगा जब ऊपर जाऊंगा, मिलूंगा उसे, कि भाई आपने नाटक को बहुत अच्छे लिखे थे लेकिन एक बात आपने बहुत गलत कही, आपने कहा कि व्हाट इज देयर इन द नेम, आपने देखो कचरे को कचरा कहा, हमारा पूरा भारत देश डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हमने, हमारे बच्चों को हम पढ़ाते थे ये कचरा नहीं है, रिसोर्स है, तो ये डंपिंग यार्ड नहीं बनता था। कितनी छोटी छोटी चीजें होती है कि देखिए, हम अपने थाली में, अभी आप ब्रह्म कुमारी के यहाँ सेवा देते हो तो आप बिल्कुल नहीं फेंकते होगे, लेकिन कितना अनाज हम फेंक देते हैं अपने डिश। जब हम अनाज फेंकते, बना बनाया खाना, सब्जी अच्छी नहीं हुई, फेंक दी, तो हम ये नहीं सोचते कि खाना फेंकने से हम अपनी मम्मी जी का या पत्नी का या अपने बैल का अपमान करते हैं, हम किसान का अपमान करते हैं और हम सृष्टि का अपमान करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको ये तीन लोगों का अपमान करने का? अगर ये अपमान नहीं करना है, अगर नहीं करोगे आप, तो 20% कचरा तो उधर ही खत्म हो जाएगा पैदा होने से पहले। फिर आप बाजार में जाके केला खरीदते हो, तो केला खरीदते हो तो छिलके के साथ खरीदते हो या बिना छिलके तक खरीदते हो? तो छिलके के साथ खरीदते हो, तो केला आप खाए, छिलका किसी और ने उठाई, ये कहां का न्याय होगा? उसकी भी मरम्मत आपको ही करनी है, वो धरती माता को आपको ही वापस देना है। और मैंने ऐसी टेक्निक बीआरसी में डेवलप

0: बारिश के बाद जैसे खुशबू आती है वैसे मेरे खाद को खुशबू आती है। अगर सोचिए कि भारत में सब लोगों ने ये काम किया तो उसमें एक बिजनेस प्रपोजल भी मैं बच्चों को देना चाहता हूँ नए कि मैं अपने घर में दो लोग हैं हम 5 किलोग्राम खाद में हर महीने में ब्यूटीफुल FCO क्वालिटी जिसे फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है उस क्वालिटी का खाद में बना। अगर ब्रह्म कुमारी के आश्रम में करना है तो मैं आपसे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में आप खाद करके दूंगा। तो क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे आप लोग खाना खिलाते हो तो अपशिष्ट तो बनता है, तो उनका खाद बनाने के आपको ठीक बताता हूँ ना। ये तो भगवान का दिया हुआ है, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, मैं आके आपके साथ जुड़ जाऊंगा और करूंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 किलोग्राम खाद में आपके दो लोग बनाते हैं, भारत की लोक संख्या 140 करोड़ है, अभी 110 करोड़ लोग भी एक्टिव है समझिए, तो 55 करोड़ यूनिट हो गए दो लोगों के, तो 55 करोड़ गुना 5 मतलब 275 करोड़ किलोग्राम हर महीने में गुना 12 भारत को यूरिया की जरूरत है। भारत पूरा सेंद्रीय खाद पे काम चला सकता है अगर आपने आपके घर से खाना और जो अपशिष्ट है फेंकना बंद कर दिया। कितनी आसानी से कहते हैं, मैं अभी एक कविता में आपको एक सवाल करूंगा कि चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, अंतरिक्ष अब दूर नहीं है, पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर या शायद उसके आगे भी, आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारी, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को, क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को, डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, घर की माँ को कब से तड़पा रहे हैं, घर का कूड़ा म्यूनिसिपालिटी के गाड़ी में डाल के, घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा, उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी, यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है वहां भारत बदलने की बात हो रही है, मेरा भारत है।
1: जी बहुत सही,
0: आप आपके घर से कूड़ा मत फेंकिए। अभी और एक कविता में हमारे देश की समस्या में बताता हूं, छोटी कविता है कि कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है, पहले मुझे सताता था ये सब, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है, जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, मैं रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मेरा वातानुकूल यंत्र ऊर्जा खर्चा कर रहा है, आधी आबादी को पंखा भी नहीं मिलता, आधी आबादी को कंबल नहीं मिलता, ये मेरे दिमाग में नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। जब मैं बाजार में जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और प्लास्टिक की थैलियां भर भर के सब्जियां लाता हूं तो मुझे शर्म नहीं आती है क्या, सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं। जब मैं पार्टियां देता हूं गजब की और थालियां भर भर के खाना खिलाता हूं ऐसे मित्र और सज्जनों को जिसको जिनको खाने की तो समस्या नहीं है लेकिन खाने से समस्या हो सकती है, वो फेंक रहे खाना थाली में वो मुझे समझने मुझे नजर नहीं आता, पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए वो मुझे नजर नहीं आता, कई महीने का इंसान हो तो नहीं रहा। जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के रास्ते से निकलता हूँ सैर करने तो रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते ना, मुझे गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण नजर आता है क्या, सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैला रही है, कई मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा। जब मैं मोबाइल लेके चित्रीकरण करता हूँ किसी दुर्घटना का या किसी के मृत्यु का तो आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता, मेरे हाथ कांपते नहीं है, आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे वापस आके वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड करके लाइक्स कमाने हैं दोस्तों से, कई मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है, मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है। जब मैं देखता हूँ ना कि कितने हम उदासीन हो गए हैं, कितनी असंवेदना अपने मन में पैदा हुई है, कितनी आसानी से हम कचरा दूसरों को देते हैं, मिक्स करके देते हैं, सोचते नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में समझिए कि प्लास्टिक की दूध की थैली भरी थी,

0: ये मैं आप कैसे काटोगे, हाथ में कैंची लिए कॉर्नर कट करते हैं, हम सब कॉर्नर कट करते रहते जिंदगी में, तो ये कॉर्नर कट करते हैं। अभी एक थैली है तो कॉर्नर कट करने की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भारत में अमूल का जो बिजनेस है 25% मिल्क बिजनेस है एंड देट कैन सेल 2.5 crore पैकेट्स एवरी डे, दैट मीन्स 10 crore पैकेट्स आर सोल्ड, 10 crore कॉर्नर्स फॉल डाउन ऑन टू द ग्राउंड और वो सारे पर्यावरण में जाते हैं, उनका कुछ विघटन नहीं होता, उनके सारे सूक्ष्म जो पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल बनते हैं और वो सारे जमीन में मिल जाते हैं क्योंकि वहीं पहुंचते हैं और पानी में पहुंच जाते हैं और उसी से हमारे शरीर में आते हैं। तो ये जो समस्या पैदा हुई है ये हमारे असंवेदनाशील वर्तन से पैदा हुई और ये कचरे पे काम करने के बाद बागाड़ परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये मुझे तीव्रता से ये लग रहा है कि हमारे देश में अगर किसी की जरूरत है तो ये इंडिविजुअल टीचिंग की बहुत जरूरी है। इसलिए फिर मैंने अपनी विज्ञान धारा प्रोग्राम से बच्चों से बातें, मैं 30 साल हो गए रोज कम से कम 300-400 बच्चों को साल में 200 दिन तो मैं बातें करता रहता हूँ। ये एक ज्वाला है, एक मशाल है, ये मशाल देनी है कि अरे ये काम करना है, जरूरी है। अगर हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर जाके तो हम नहीं रह रहे, उसी जिंदगी में उसी सिस्टम में रह रहे। पानी की समस्या है, पानी की इतनी समस्या है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहाँ डिस्टिलेशन प्लांट चलते रहते हैं, एक जगह ऊर्जा खर्चा होती है, दूसरी जगह एसी से पानी जो बाहर से लीक होता है वो मानसरोवर क्वालिटी पानी होता है, लेकिन उससे झगड़े होते हैं, मेरे सर पे आपके एसी का पानी गिर रहा है। अगर वो कलेक्ट करके आपके सारे डिस्टिलेशन प्लांट आप बंद कर सकते हो, आपके सारे जो कार बैटरीज को पानी लगेगा वो एसी पानी से लगा सकते हो। भारत में 10 crore अगर एसी है तो आपको रोज 60 crore लीटर मानसरोवर क्वालिटी पानी मिल रहा है और वो उधर ड्रेनेज को जोड़ते हैं, ड्रेनेज को कनेक्ट करते हैं और वहां से बह जाता है। कितनी मतलब ये दो जो हमारे टीचर ने कहा था ये भारत में सारे लीकेजेस है, ये लीकेजेस इतने बड़े हैं, हमारे जो फूड का जो वेस्ट होता है, पानी का वेस्ट होता है, कचरे का, कपड़ों का वेस्ट होता है। अभी आपको मैं कहूंगा आप खुद का एक बार अकाउंटिंग कीजिए, अकाउंटिंग में आपको लगेगा कि घर में इतने सारे चीजें पड़ी रहती है जो हमने सालों से इस्तेमाल नहीं किए, अगर वो इस्तेमाल नहीं की है तो रखना मेरे हिसाब से क्रिमिनल अपराध है और ये किया हुआ अपराध। तो शेयरिंग नहीं है भारत, ये शेयरिंग कैसे बढ़ाए, अगर ये चीजें शेयर हो सकती है क्यों हम पीछे पड़ते हैं, हर नई चीज आई मार्केट में मुझे चाहिए, क्यों हम इसके पीछे भाग, हम विज्ञान के सारे उपकरण यूज तो करते हैं लेकिन उससे हमारी वैज्ञानिक मेंटेलिटी नहीं बनती। अभी इतने गड़े चांद पे तो पहुंच गए कि यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो रहा है उसके बारे में, और हम इक्लिप्स में वो हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा, ये सारा परिणाम विज्ञान हमारे किताबों में रह गया, इसका सब ये परिणाम नहीं होता है परिणाम। अगर आप प्रिकॉशन लेके अगर आप समाज में जाओ कोई गलत परिणाम नहीं होता ये, लेकिन ये समझ नहीं पाते हम, क्योंकि हम आधे हम जो मैंने जैसे कहा मार्क्सवादी एजुकेशन से चले,
1: नंबरों के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगे हैं, चाहे वो स्कूलों में नंबर हो, चाहे स्कूलों में नंबर हो या अकाउंट्स में पैसों का नंबर हो या बुद्धि में कहीं पहुंचने का होड़ हो, तो इट्स लाइक अ रेस में हम हो गए हैं।
0: लेकिन अभी ऐसा है ना कि मैथमेटिक्स इज देयर परफेक्टली इन योर लाइफ, हम जिसे डेरिवेटिव कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, आपका एक पीस व्हेन इट बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू 10 crore इट बिकम्स ए ह्यूज, इट इज नॉट सिंपल समेशन, इट बिकम्स इंटीग्रेशन, और इसका बहुत बड़ा एक जिसका होता उतने 10 crore टाइम्स नहीं होता, वो 100 crore टाइम्स होता है बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, और हम इस बच्चों को इतना उससे चिढ़ आती है कि हमें ये समझता नहीं, लेकिन इस तरीके से इंटीग्रेशन आप समझा दो बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाते हैं, तो सर तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है समझने को, आसान भी है, फिर डालो उसमें वो फॉर्मूला क्या चीज है, फॉर्मूला तो हमने बनाए अपने सिंपल करने के लिए। तो ये जो तरीका है पढ़ाने हमारे शिक्षकों का

0: जो तरीका था पढ़ाने का, शिक्षा सेवा नहीं, आज धंधा बन गया है। तो मैं तो सैडली कहता हूं धंधा बन गया, हम बहुत सेल्फिश बन गए, हम अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ते। मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मैंने 11वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ा और आज तक मुझे जिंदगी में कहीं भी मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अपनी मातृभाषा में जितना से समझता है। लेकिन भारत में देखो सब जगह इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है, सब जगह इंग्लिश में ही चलना है, कॉन्वेंट भेजना है बच्चों को, और बातें करेंगे जब सभा में बड़ी बड़ी बातें करेंगे मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, लेकिन हालत बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो समस्या है समाज की, ये समस्या मेरे जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है और मैंने देखी है। मैंने एक हमारे जैसे स्कूल था कि जय कृष्णमूर्ति कहते थे, देर आर ओनली टू प्लेसेस वेर यू कैन फोर्सिबली टेक पीपल, तो यू हैव टू टेक फोर्सिबली पीपल, वन इज जेल एंड अदर इज स्कूल। तो इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम, मैं बताता था उनको, मुझे जेल का तो पता नहीं लेकिन हम स्कूल में सर ऐसा कभी फोर्सिबली नहीं है, हमारे स्कूल में इतने अच्छे संस्कार थे, जो पढ़ाई भूल गए, पढ़ना भूल गए। आप खुद को पूछिए, आई एम नॉट गोइंग टू एम्बरेस एनी क्वेश्चन टू एनी वन, आप कितनी किताबें पढ़ते हो साल में? आजकल नहीं पढ़ते, लाइब्रेरी भूल गए हम। लाइब्रेरी होती है दिखाने के लिए लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में एक रूल ऐसा था, अलिखित नियम था, कि हर बच्चे ने हर हफ्ते एक किताब पढ़नी चाहिए। बाय द टाइम मैं 11वीं में पास होकर बाहर आया, आई हैड रेड माई 350 बुक्स, और आज मेरी 5000 किताबों की लाइब्रेरी है, मैंने ए टू जेड हर किताब पढ़ी हुई। ये बड़ी गर्व से कहता हूं मैं, और ये होना जरूरी है, ये हर एक के लाइफ में होना जरूरी है। तभी आप, क्योंकि आप जब टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हो, आपका ब्रेन काम देता है। जब आप पढ़ते हो तब आपका ब्रेन काम करता है। तो आखिर ये समस्या है।
1: मुझे लगता है चूंकि पढ़ते समय बुद्धि को बहुत ज्यादा केंद्रित करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये मशक्कत ही जो है बुद्धि का एक्सरसाइज है, ये उस इंटेलेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तो वो उस मेहनत से बचना चाहते हैं। जैसे अभी कोई जिम जाता है, अगर वो जिम जाकर के कुछ करे ही नहीं, बस लोगों को मशक्कत करते हुए देखे, तो उसके तो कभी मसल्स बनने ही नहीं वाले, उसको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही किताबें पढ़ना जैसे आप कह रहे हैं वो बहुत वाकई में इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि चलिए मानते हैं कि लोगों का अब वो जो एक हैबिट है पढ़ने का वो छूट गया है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आज इस एपिसोड को जो सुनने वाले हैं उनके मन में आता है कि डॉक्टर शरद जी ने कहा था कि उन्होंने किताब पढ़ करके अपनी बुद्धि को बड़ा बलशाली बनाया है, मुझे भी करना है। Where to start? What is the beginning point? कहाँ से शुरू किया जा सकता है?
0: बहुत बहुत सिंपल सी चीज है कि मेरे मम्मी जी ने एक मंत्र दिया था कि unless you read something new, don't sleep. एक छोटा सा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है कि नया कुछ पढ़ने से आप सोना नहीं। अगर यू आर वेरी ट्रू टू दैट, अगर आप उसमें वेरी फर्म, आपका मन अगर उसमें बन गया, नहीं आज कुछ पढ़ूंगा तभी सो जाऊंगा, तभी आप जरूर पढ़ो। छोटी सी चीज होती है, एंड शुरू में ये सारे जो चीजें हैं, बदलाव है, कोई भी बदलाव आसानी से नहीं है, लेकिन बदलाव को आप इस तरीके से ले लीजिए कि जो जीवन का अंग बने, तो अगर जुड़ जाए कि बच्चों को, अगर बेटा पिताजी को हाथ में मोबाइल लेके बातें करते हैं और पिताजी वो बच्चा बेचारा बाप से बोलने को बहुत तरस रहा है, एंड ही इज डजंट हैव टाइम, इट डजंट रिफ्लेक्ट नाइसली, अच्छा नहीं दिखता, वो प्रतिबिंबित नहीं होता। तो जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसको मेरे पास जवाब है। जो स्विट्जरलैंड में मैंने देखा, जर्मनी में मैंने देखा, ये लोग, ये तो देश रईस क्यों है मालूम है आपको? ये देश रईस इसलिए है, जो मैंने देखा कि शाम को 6 बजे उनका सफर डिनर हो जाता है और 6:30 बजे किचन बंद हो जाता है, और 6:30 बजे के बाद 11:30 तक वो खुद का समय होता है, पढ़ते रहते ये लोग। आप देखिए स्विट्जरलैंड में सारी टाउन लाइब्रेरी भरी हुई है। तो ये 5 घंटे अपने को देते हैं, आप खुद को पूछिए आपको कितना समय देते हैं? मैं ये आपको 2 घंटे का समय देती हूं, बहुत काम हो जाएगा। एंड कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ यू आर ए स्टूडेंट, हर मनुष्य विद्यार्थी होता है।

0: है अंतिम श्वास देने तक। अगर वो हमारे आइंस्टाइन थे, एक बड़ा बाप आदमी था, नोबेल प्राइज विनर था, फिजिक्स का जानकार था, उसके मेंदू के बारे में, ब्रेन के बारे में कहते थे ऐसा ब्रेन हुआ नहीं। वो आदमी ने क्या कहा उसके पीएचडी स्टूडेंट को, एंड ही वाज डाइंग ऑन मृत्युशैया पे थे, तब उन्होंने बच्चों को कहा, पीएचडी बच्चों को, आज मुझे पता चलता है कि मुझे कितना विज्ञान मालूम नहीं है। कैन यू सी पर्सन? तो विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। अगर आप विद्यार्थी है और आपका काम आप निभा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे आत्मविश्वास की दिक्कत मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। मुझे ना तो कभी टेंशन आता है, ना कभी अभी अभी क्या होगा ये दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि आई एम वेरी श्योर, मैं खुद मुझे पता मालूम है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक तपश्चर्या है। ये तपश्चर्या पुराने जमाने में वो भगवान के सामने बैठ के करते थे, आज की तपश्चर्या अलग होती है। ये 5 घंटे की तपश्चर्या अगर आप करेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में लोग करते हैं, जर्मनी में करते हैं, इसलिए लोग आगे आगे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, यूनिवर्स एक्सपांड ऐसा करने हो रहा है, ये ढूंढने के लिए वो यूक्लिड मिशन उन्होंने भेजा है, हमने भी भेजा है, आदित्य भेजा है, चंद्रयान भेजा है, हमारे भी लोग है, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, लेकिन 2 चीजें हमें खराब हो रही है। एक, हमारा समय अच्छी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये व्हाट्सएप ये जो चीजें आई है ये एक्चुअली वो डाइवर्टिंग टाइप आई है, और बाहर के लोग यही देने की कोशिश करेंगे ताकि ये 140 लोगों का देश मूर्ख रहे और अच्छी मार्केट प्लेस बनी रहे, यही चाहेंगे वो, अपनी उन्नति वो नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारी उन्नति हमारे हाथ में है। अगर हम आपके सवाल का आंसर यही जवाब यही है कि खुद को आप 2 या 3 घंटे दिन में शुरू में दे दीजिए, बाद में वो नंबर बढ़ा दीजिए, और खुद को बताते रहिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये पढ़ना है। डोंट से दैट यू आर ए मास्टर।
1: मुझे सब आता है। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे हैं डॉक्टर शरद काले जी को, जो कि भारत के एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक है, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया है। बट आपने इनको बहुत पहले और कई जगह पे अपने विज्ञान के तथ्यों के द्वारा समाज में सुधार लाने का प्रयास करते हुए देखा है, सुना है। आप में से कईयों ने इनको आमिर खान जी के शो सत्यमेव जयते पे भी देखा है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको वहीं देखा था डॉक्टर शरद काले जी। मैं उस किस्से पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मैं किसी को पूछता हूँ कि आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनाए, तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, और अक्सर उन कहानियों में कई माइलस्टोन्स होते हैं, कई ऐसे पड़ाव होते हैं जिनका वो जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने आपकी कहानी में पाया डॉक्टर शरद काले जी कि आपने कहीं पर भी किसी पड़ाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस पड़ाव के पीछे के व्यक्तियों का जिक्र किया। आपके 68 शिक्षक, आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपने लोगों का जिक्र किया। ये बहुत अनोखा है और बहुत सुकून देने वाला एक विषय है कि व्यक्ति की जो यात्रा होती है उसमें यात्री पड़ाव याद रखता है, मुकाम याद रखता है, लेकिन मुकम्मल उन मुकामों को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं अक्सर। आप उन लोगों को याद रखते हैं, इसलिए शायद आप भी यादगार। आपको पहले तो उस चीज के लिए हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ में एक सवाल भी इसके साथ पूछते हैं कि ये जो भावना है आभार की भावना, ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये आपको पर्सनली कैसे इनरिच करता है? इसकी वजह से आप अपने जीवन में क्या अनुभव करते हैं? अगर मान लीजिए शरद काले जी के जीवन से ये आभार की भावना को थोड़ा भी कम कर दिया जाए, तो क्या देखते हैं आप शरद काले जी के जीवन?
0: मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता था, मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचता था। ये सारा जो है, जैसे बीआरसी के लाइफ में भी डॉक्टर काकोडकर से एक बहुत अच्छे गुरु मेरे सामने खड़े थे। मैंने जब कचरे पे काम शुरू किया तब सारे लोगों ने तो हंसने लगे, ये क्या कचरे पे काम करने की, अनुसंधान केंद्र में आप जहां एटॉमिक वेपन्स बने जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी बनती है, वहां आप कचरे पे क्या काम कर रहे हो? तब सपोर्ट दिया था सर ने, तो मैंने उसमें उपाधि मैंने मिली, उपाधि मैंने जिस दिन मैंने निवृत्त हो उपाधि भी छोड़ दी। उपाधि इज वेरी गुड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट उपाधि, लेकिन वो उपाधि और जो डॉक्टरेट वगैरह है मैं इसे नहीं मानता हूं। उसके साथ जो हमारे सर ने जो कहा था कि वो गलती बंद करने की कोशिश, अगर किसी ने मुझे

0: बताया कि सर मैंने आज से खाना फेंकना बंद कर दिया है, मुझे अच्छा लगता है कि अरे कुछ तो चीज असर हुआ इस चीज का। तो ये जो हमें क्या फाइनली हम इस धरती पे, मैं ये मानता हूं कि पंचतत्व ने आत्म तत्व अलग किया, उसे शरद काले नाम देके बोला कि जा धरती पर चला जा, लेकिन जाते समय नंगा जाएगा, आते समय नंगा है, तो क्या किस लिए मैं भेज रहा हूं। मेरे हाथ में उन्होंने पूरी वसुंधरा सौंप दी। अगर आप किसी को 15 रुपए 10 रुपए देते हो तो आप उसे मॉर्गेज लिखते हो कि मेरे को ये दे दो, तभी इससे भगवान ने तो कुछ लिया नहीं, मॉर्गेज पूरी दुपट्टे आपको दी। तो उसने एक एक्सपेक्टेशन है पंचतत्व को आपसे, वो एक्सपेक्टेशन ये है, अपेक्षा ये है कि आप जब गए थे तब धरती जितनी सुंदर थी उससे और सुंदर बना के वापस आए, और सुंदर बनाने में आपको जो लोग मदद करेंगे उनके चरण छूओ आप, वही आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं कि उनकी वजह से आप ये जो रास्ता है चल रहे हैं, रास्ता कट रहा है। और ये अगर मैं धरती आप सुंदर कर रहे हो तो उनका योगदान उसमें बहुत बड़ा है, आप सिर्फ निमित्त हो।
1: ये बहुत सुंदर बात आपने रखी कि जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जहाँ पर आप हो वहाँ से जब आप वापस आओ तो उस जगह को 100 गुना सुंदर बना करके आओ। ये जो लक्ष्य है ये अगर व्यक्ति अपने जीवन में ठान ले तो मैं समझता हूँ उसका हर कदम जो है बहुत कल्याणकारी कदम होगा, वो कभी भी किसी का नुकसान कर ही नहीं
0: सकता। नहीं सुनेगा किसी का, गलत नहीं
1: जी।
0: ये जो मैं बच्चों से बोलता हूँ, आप ये धर्म की बातें हैं, पूजा की बातें हैं, आप धर्म में रखो, ये पूरे विश्व में एक ही धर्म है वो मानव धर्म, और दो ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। अगर ये सोच के आप चाहो, जब रास्ते पे मैं चलता हूँ, मैं मेरी गाड़ी में बस में बैठा हूँ, बस का ड्राइवर मुस्लिम है क्रिश्चियन है, मुझे क्या वास्ता है, मुझे जगह पे ले जा रहा है, मेरे लिए मेरा गाइड है भगवान है, वो श्री मेरा श्री कृष्ण है, सारथी है, वो लेके जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है। ये जो भावना मन में पैदा हुई, आप किसकी पूजा करते हो आप घर में रखो, आपको अगर शांति मिलती है ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाके आप जरूर जाओ, कोई रोकता नहीं आप, लेकिन दूसरे को आप नीचम इसकी ये मत कहो कि आप ये मत कहो, आपका आपने रास्ता तय किया, आप उस रास्ते से चलते रहो।
1: ये जो दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो वृत्ति है इसकी वजह से ही शायद हम कभी भी कचड़े का समाधान नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कचरा मतलब यूजलेस या वेस्ट, लेकिन किसी का वेस्ट जो है वो किसी के लिए गोल्ड होता है, समझिए जैसे जो कचरा बिलने वाले लोग होते हैं उसके लिए तो वही वेस्ट गोल्ड है। तो मैंने बोलते हुए सुना था
0: गोवा में 250 टन का एक प्लांट चलाता हूँ मैं, उनका मैं एक्सपर्ट हूँ, वहाँ 250 टन कचरा जीरो हो जाता है, और उसमें 1 मेगावाट बिजली भी निकलती है, 40-50 लाख रूपये रिसाइकलेबल वैल्यू भी उसे मिलती है, और उसे जो RDF करके वो सीमेंट फैक्ट्री को ईंधन भी मिलता है, और कचरा भी शून्य,
1: लोगों को रोजगार भी मिलता है उससे, लोगों को रोजगार भी मिलता है।
0: 165 रैंक भी कर अभी उनके बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, कहीं भी गोवा में जाके सालीगांव प्लांट देखिए आप खुद खुश हो जाओगे। 165 लोगों का जो रास्ते पे कचरा उठाते थे अभी उनको 20,000-25,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, 2 वक्त का खाना मिलता है, पूरा मेडिकल इंश्योरेंस उनका भरा रहता है, तो उनका कितना अच्छा हुआ, और गोवा भी जीरो वेस्ट होता है। तो ये चीजें होती है कि प्रकृति के विश्वकोश में कचरा शब्द नहीं है, वो हमने लाया। अगर प्रकृति के विश्वकोश में एक कचरा दूसरे का रिसोर्स है, इसे ही पुनर्चक्रांकन कहते हैं। जीवन चक्र होता है, जो पानी से एक कविता मैंने लिखी थी, युगों से रहा हूं मैं धरती पर, तो बारिश झरना नदी सागर, फिर बारिश झरना नदी सागर, चक्र से मैं गुजरता हूँ, लेकिन वक्त के मुसाफिर मानव मित्र में से जितना पिया है आज तक आधा को शुद्ध करो, धरती माता की मदद करो, नहीं तो मेरा जनाजा उठने वाला है, उसके साथ साथ मानव वंश का भी जनाजा उठने वाला है। अगर पानी की हम समस्या पैदा करें, रोज हम 100 लीटर पानी प्रदूषित करते हैं हर एक, तो इंटीग्रेशन इतना बड़ा होता है उसका।
1: मैंने ये देखा शरद जी कि आप केवल वैज्ञानिक ही नहीं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, आपके शब्दों में बड़ा जादू है और आपके बोलने के तरीके में एक रोमांच है जो कि लोगों को छू जाता है। तो मैं समझता हूँ अगला जो पढ़ाव है आपके जीवन में, मैं समझता हूँ आपके साहित्य की वजह से शायद आ सकता है। डॉक्टर शरद काले जी, आपके साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है कि कब हम इतने लंबे समय से बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ हमें अभी भी बहुत कुछ जानना है आपसे।

बहुत कुछ सीखना है आपसे, इसलिए इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड के लिए। साथियों बने रहिएगा यशस्वी भारत के साथ, और उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। एक और एपिसोड में डॉक्टर शरद काले जी हमारे साथ होंगे अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है और उसे पाने के लिए अक्सर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यह विषय है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की अवस्था है। मित्रों, आज हम बाहरी रूप से सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। हमारे पास तकनीक है, साधन है, उपलब्धियां हैं, फिर भी मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष बना रहता है। कारण स्पष्ट है, हमने जीवन की गति तो बढ़ा ली है लेकिन मन को थामना भूल गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ सरल तरीके अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति पाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं से जुड़ना। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मन की गति को देखना, यह एक छोटा सा अभ्यास है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हैं तभी मन शांत होता है। श्रोताओं, आंतरिक अशांति का एक बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। हम अक्सर वही बातें याद रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज अपनाया जा सकता है। आंतरिक शांति के मार्ग में क्षमा का विशेष महत्व है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत पालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही मन झेलता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। माफ करने से सामने वाले का नहीं हमारा मन हल्का होता है। मित्रों, संतोष और कृतज्ञता भी आंतरिक शांति की कुंजी है। हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं और जो है उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रतिदिन जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। यह आदत मन को गहराई से शांत करती है। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे सुबह की सैर, पेड़ों के बीच कुछ पल, आकाश को निहारना, यह सब मन को सहज रूप से शांत करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना शोर किए भी संतुलन में कैसे रहा जाए। आंतरिक शांति का एक और सशक्त माध्यम है आध्यात्मिकता और प्रार्थना। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में श्रोताओं, इतना ही कहना चाहूंगा कि आंतरिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने, अपनाने और रोजमर्रा के जीवन में उतारने की। इसी संदेश के साथ

0: मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है, तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: say such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: What?
2: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है पर किसी से

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट,
0: मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: सो क्यूट।

0: महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मी काका स्मृती शिंदे, त्यामुळे मला हे पीक विमाचा अनुदान रक्कम 1,38,000 रुपये मिळाले आहे। तर काही गोष्टींमुळे येत असतं, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी हे विमा याचा लाभ शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे, त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल।
2: खरीफ पीक विम्यासाठी लवकरच नोंदणी करा।
3: बँक शाखा, विमा कंपनी, कृषी ऋण समिती, जनसेवा केंद्राशी संपर्क करा।
4: पीक विमा संबंधित अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन नंबर 1444 वर कॉल करा।
5: पीक विमा करा हो, सुरक्षा कवच मिळवा हो।
6: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
7: ओम शांति।
6: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
7: थैंक यू सो मच।
6: आज फिर से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ।
7: जरूर।
6: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो। वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो बट थ्रू अ मिरर, आईने के द। Everything we discern is comparatively held to the vision with which we see ourselves.
7: Look at the line. We do not see the world through the window. We see the world through a mirror. Dunya ko hume khidki ke through nahi, ek aaine ke through dekh rahe hain. Dunya ko agar hume khidki ke through dekhte, खिड़की के थ्रू तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है,
6: तो डिटैच होके देखते हैं।
7: जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी, थ्रू अ विंडो।

0: वो दो लोग सिचुएशन के अंदर हैं। अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया, तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई एक। फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई, तो वो रोते हुए आई, उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने
1: जोर से डांटा ना,
0: जोर से डांटा ना,
1: अब जरा इतनी भी अकल नहीं है तो
0: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा। द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया।
1: जिसने फोन उठाया उसको क्या समझ में आई, क्यों झाड़ रहा है मुझे?
0: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था। जब तक हम वो नहीं देखेंगे, हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे। इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है, खिड़की नहीं खुली ना,
1: मिरर के थ्रू,
0: मिरर के थ्रू मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको। बहुत सारी, सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
1: छोटी नहीं हुई ना, ये बात इतनी बड़ी बाद में,
0: लेकिन ये बात
1: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी, महीनों महीनों चला इसको कि बोलती मेरे, मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा।
0: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके, ना लंबा चलता है, चीज इतनी होती है, इतनी सही नहीं परखी, तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं, ये कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया। ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं। इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर टू लेट गो, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया, लेट को छोड़ना है,
1: पावर टू टॉलरेट,
0: फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना, तीसरा एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति। लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति, वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति, मीन्स राइट रॉन्ग सही गलत, हम बचपन से सीख रहे हैं सही गलत की परख होनी चाहिए, परखो तो सही क्या था गलत क्या था, सच क्या है झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो। वी हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड, लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे, दैट वाज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है गलत क्या है देखो तो, नो बट अ लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है, राजयोग मेडिटेशन से जो हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, और हर एक अनुभव भी करेगा उसको, कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ, साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है, हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती कि लॉजिकली राइट क्या है रॉन्ग क्या है, नॉलेज क्या कहती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन वो होती है एक इनेट अंदर से, एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते थे, नहीं जब कहते अंदर की आवाज कहती है ये राइट है ये रॉन्ग है।
1: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता
0: है ना,
1: और कई बार बोलते हैं मत कर मत बोल और मैं हमेशा फंसा,
0: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा,
1: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय
0: अंदर वाला, नॉट लिसनिंग। हाँ
1: सिस्टर, एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस, तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो, तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा, मैंने क्यों, माली है उसके पास चाबी है, वहाँ सब खाना पका के देंगे, वहाँ गया तो मालिक के घर में किसी की डेथ हो गई, वो गांव चला गया।
0: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना, वो एक परखने की शक्ति है जो अक्वायर्ड बातों से नहीं, लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं, जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता, लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है, आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है। नहीं, कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए, मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है, वो जो आवाज आती है, वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा, वो हमेशा राइट निकलेगा, इट ऑलवेज बी राइट फॉर अस, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर।
1: विवेक, मेरा बेटा और मैं एक अपने लिए लैंड लेने गए थे,

0: तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछ बोलने लगा और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला लें, उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा, बोल रहा डैडी आई लव इट, डैडी मुझे अच्छी लगी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी। ना नंबर पूछो ना वास्तु पूछो, तुम और मैं दोनों फंसेंगे, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा, ये हाथ से चीज चली जाएगी।
1: सही बात है।
0: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से।
1: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज एंड वन इज द इनेट नॉलेज दैट द सोल हैज।
0: दिस इज ब्यूटिफुल, आपने मुझे याद दिला दिया अंदर
1: वाला। सही और गलत की जो आवाज, जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी, जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है, इससे पूछें इससे पूछें, ये करें, इधर पढ़ें उधर चेक करें। अगर हम सिर्फ दो मिनट साइलेंस में बैठ जाएं, सिर्फ दो मिनट, हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है। वी डोंट नीड टू फाइंड आउट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन और एनीवेयर। एवरी सोल नोज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, एवरी इश्यू एंड एवरी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ।
0: यू आर सो राइट। ये प्रैक्टिकली मैंने किया सिस्टर। विवेक को किसी ने बोला आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यंगस्टर्स की जरूरत है आज, आप क्यों नहीं किसी पार्टी से टिकट लेके लड़ते, दिस दैट यू सो गुड इन स्पीच। तो मेरे से वो एडवाइस लेने आया। मैंने कहा एक काम करो, बाबा के सामने बैठो, मंदिर में बैठो, मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो, आपको जवाब आएगा। वो गया ही नहीं।
1: एक बार परखा सही फिर निर्णय लेना इज इजियर। इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना। तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में, इवन अब अगर जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है दो लोगों के बीच, जैसे हमने देखा कि दूसरे का संस्कार, हम क्यों नहीं परख पा रहे दूसरे का संस्कार, क्यों हम दूसरे को अपने संस्कार के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम ईगो से कनेक्टेड है। हाँ,
0: क्यों इनेट से कनेक्टेड?
1: हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है ना। अगर हम इनेट से कनेक्टेड
0: हूँ या नहीं हूँ, हाँ, आप मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे,
1: हाँ,
0: तो मैं इनेट से कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, आप बदतमीजी करोगे तो।
1: वाइज सोल कौन सी है? जो आत्मा अपनी विजडम से कनेक्टेड होगी। आप देखो जब हम अगेन जब हम महात्माओं के पास जाते हैं, उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है
0: वो तो मैंने देखा, लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना।
1: महात्मा नहीं हो, एक मिनट,
0: हम तो
1: महात्मा नहीं हो, मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ, मैं संत आत्मा नहीं हूँ। उस टाइम
0: क्या करना है?
1: उस टाइम मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्टेड हूँ।
0: टॉकिंग
1: टू पीपल लाइक अस ओनली।
0: आप बीच में महात्मा मत लाइए ना। महात्मा तो करता ही है, मैंने देखा हुआ है। एक मेरे सामने जगत गुरु को एक आदमी इतना बोला, उन्होंने सिर्फ बोला आप शायद इसे गलत समझ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है।
1: पहली बात तो हम जो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है,
0: इसमें विक्टिम की बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल है। आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था, बोलता मैं सुन के मेरा मन कर था अभी मारूं, और वो देख रहे हैं, बोलते शायद नहीं आपके ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी।
1: तो अब वो संत आत्मा उस क्षण उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक से नहीं बात की, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, वो शांत थे,
0: मैं तो बहुत शांत
1: डिस्टर्ब हो रहे थे। ओके, नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू सोल्स ओनली एट दैट टाइम? आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था?
0: वो महात्मा थे, मैं एक्टर था।
1: महात्मा थे, मैं एक्टर था, मतलब क्या?
0: मतलब
1: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है,
0: तो फिर
1: कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे मैं एक्टर था। महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है। महात्मा है मतलब
0: क्वालिटीज तो है उनमें,
1: है मतलब डेवलप की
0: और क्वालिटीज भी है, काम भी है उनका, और उनको
1: काम नहीं है।
0: महात्मा को प्रैक्टिस भी तो होती है ना।
1: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे ना। सी, ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से, वो महात्मा थे मैं एक्टर था, नहीं, वो आत्मा है मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे, मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपने ईगो में था। नहीं, सिर्फ आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है, हम सब संत आत्मा है। परमात्मा हमें कहते हैं आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो, सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो, दिव्य आत्मा हो, डिवाइन सोल, देवी देवता। देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा, हर आत्मा वो है।

0: डिविनिटी, संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है। आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी चाहिए और आपको ऐसे
1: ईगो होनी चाहिए नहीं बोला, मैं एक्टर हूँ, महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है।
0: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
1: तो क्या हुआ?
0: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन,
1: महात्मा तो
0: इज नॉट अ प्रोफेशन।
1: तो
0: महात्मा हूँ, एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
1: महात्मा का बिहेवियर,
0: एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
1: क्यों नहीं बन सकता?
0: सिंपल, मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना इज फाइन।
1: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते
0: हैं। दैट्स इट, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए।
1: आपका पॉइंट समझ में आया।
0: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजंट मैटर। महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन। महात्मा मीन्स,
1: रिपीट करेंगे, बहुत सुंदर।
0: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
1: वो आत्मा हाँ,
0: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है। फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है।
1: यू सो राइट, अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है, लड़ाई करते हुए भी देखा है, एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है, पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है।
0: बिल्कुल,
1: यू आर राइट। तो
0: विच इज ओके, अगेन हम यहाँ जजमेंटल
1: तो
0: नहीं,
1: मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा,
0: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है? वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा, एवरी सोल, एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्यूटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रहे हैं, एंड कुछ भी कर रही है मीन्स कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है, लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं। एक है हम सब लोग, लेट्स से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करें या कुछ करें, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हैं, तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल। और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है। जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं। आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा?
1: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है।
0: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे?
1: जिसको मतलब
0: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन, और किसको बोलते हैं संत? छोटे बच्चे को,
1: फ्रेंडली चाइल्ड,
0: छोटे बच्चे को जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी। नाउ नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है। ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना है। क्योंकि आज क्या होता है, ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम परखने की शक्ति रॉ

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्य कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें जीवन का।

कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भूचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार। ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। ज्ञान की कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है सफलता। ऐसी सफलता हर लोगों के जीवन में होना जरूरी होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता होना जरूरी होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक, गृहिणी से लेकर वैज्ञानिक तक। गृहिणी अपने कर्तव्य में सफलता चाहती है और विद्यार्थी पढ़ाई में, उद्योगपति उद्योग में, समाज सेवा समाज की सेवा में। और हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफलता चाहता ही है, परंतु सफलता हमसे क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्हें सर्वप्रथम यह समझा कि सफलता हमसे क्या मांग कर रही है, फिर उस मांग को पूरा किया तो सफल हो गए। इसमें निस्वार्थ भावना हो, निष्काम कर्तव्य निष्ठा हो, समर्पण और लगन का संतुलन, अपेक्षा और अहिंसा का त्याग हो, जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देने की भावना प्रमाण प्रैक्टिकल कर्म करे तो सफलता गले की माला बन जाएगी। तो आइए सफलता पाने की कुछ विधियां समझते हैं। एक होता है हद से ज्यादा मेहनत करो। जो मेहनत से पीछे भागते हैं वे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। अगर कोई कहे कि पीछे का नहीं छोड़ सकते तो आगे भी बढ़ा नहीं जा सकता। कहा जाता है खून पसीने की कमाई सुकून देती है, मेहनत से अर्जित किया गया कौड़ी सम्मान मूल्य भी करोड़ों का सुख व संतोष देता है। जीवन के प्रत्येक पहलू को सम्मान दीजिए। सम्माननीय बनने के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, फिर मेहनत का जादू देखो। बुरी आदतों का भी त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, बुरी आदतों का त्याग सफलता के मार्ग में परीक्षा के रूप में कई नकारात्मक चीजें सामने आती है, इससे सतर्क रहे। जितना अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान रहेगा तो कभी भी बुरी संगत में नहीं आएंगे। जब लक्ष्य से ज्यादा किसी और को प्राथमिकता दे देते हैं तब उद्देश्य जो है उससे हम अटक कर बुरी संगत में फंस जाते हैं, मार्ग में अवरोध खड़े कर देते हैं। हमें यह देखना है कि जो चीजें हमारे पास आ रही है उनकी हमें आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो अच्छी से अच्छी चीज भी नुकसानदायक हो सकती है। अपनी आदतों को समझे, स्वयं की संभाल करिए। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? संघर्ष करने की हिम्मत करना। एक होता है संघर्ष करने की हिम्मत करना, जब भूमि के में बीज बोते हैं तब बीज के साथ साथ अनेक प्रकार की खर पतवार भी उगाती है। किसी ऊंचे संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो अनायास ही कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। इससे घबराए नहीं, हाँ हिम्मत से सामना करें। संघर्ष ही नए मार्ग की पहचान है। अगर किसान खर पतवार को देखकर हतोत्साहित हो जाए तो क्या होगा? हम भी हिम्मत से काम लें तो और हौसला बनाए रखें। अपने काम पर विश्वास रखना। जैसे किसान अपना परिश्रम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, यह विश्वास रखता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। हम भी कर्तव्य पर आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता का आधार विश्वास है। जिन्होंने भी विश्वास बनाए रखा, सफलता उनके कदमों में आ पहुंची। एक होता है धैर्य रखने की काबिलियत। विश्वास को कम करने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आ जाती है।

कठिन है। एक होता है अपने काम के प्रति जुनून पैदा करें। हाँ, अपने काम के प्रति हमें कैसा जुनून होना चाहिए, अपने भीतर देखें। जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प, जैसे संकल्प ले लेते हैं, तो क्या होता है कि यह तो करके ही रहेंगे, तो हम क्या होता है कि हम निश्चित रूप से वह हो ही जाता है। हमारे साथ ऐसा होता ही है कि अगर हम संकल्प करते हैं तो हम वो कर लेते हैं। जहाँ जुनून हो वहाँ कोई भी विपरीत बात हिला नहीं सकती। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, जुनून के साथ करो, साधारण रूप से नहीं। हाँ, और समय से पूरे पूर्व जो होता है वो संपन्न करो। लगन और समर्पण से किया गया कार्य सफल होता है। सफलता और असफलता को बुद्धि से निकाल संपूर्ण निष्ठ, संपूर्ण हमें क्या करना है, निष्ठावान होकर कार्य करो, तो निश्चित ही सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा कर रहे थे सफलता हमसे क्या चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफल होने के लिए बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सफलता का मार्ग मुश्किल से होकर गुजरता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी मुश्किलों से होकर गुजरता है। मुश्किलों से नहीं भागो, अभी तो मुश्किलों को साथी माने। हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ो। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुश्किलें रूपी बहुत सारी ऐसी बातें मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलों रूपी मूल्य ही सफलता की मंजिल तक हमें दी जाती है। किसी से आशा मत रखो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करके आगे बढ़ो। स्वयं की जागृति से चलने वालों का क्या होता है, चलने वाला जो होता है कभी रुक नहीं सकता। जो गतिशील रहता है वही आगे बढ़ता है। नदी बहती तो है, हाँ नदी बहती है तो आगे बढ़ती है, रुकती है तो सड़ती है। प्रतिपल परिवर्तन ही प्रगति है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। एक होता है स्वयं से ज्यादा किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने का, इसीलिए कहा जाता है स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। कई बार विश्वास जो है वो टूटने पर हम उठने के योग्य नहीं होते। जो अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है वह गिरकर भी संभलने की क्षमता रखता है। जो दूसरों पर निर्भर होकर चलता है वह कभी भी गिर सकता है, टूटकर बिखर सकता है। जो परिस्थितियों को खेल समझकर खेलते हैं वे अवश्य ही विजय बनते हैं। जीवन में जो होता है, जीवन के खेल में हर चुनौती को स्वीकार करो, मूल उत्साह से खेलो। प्रतिपल सफलता का साक्षात्कार करो। जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सोचते हैं वह पाते हैं।

यह कुदरती सिद्धांत है। नित्य अपने क्षेत्र की सफलता का दर्शन करो, उसी प्रमाण मेहनत करो। समय और संकल्प सबसे बड़ी धरोहर है। हमारा जो समय है और संकल्प है, हमारा संकल्प जो है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा संकल्प होना चाहिए जिसमें सकारात्मकता हो। तो समय और संकल्प जो होता है सबसे बड़ी हमारी धरोहर है। इसका सही सदुपयोग करो। सफल वही होता है जो स्थूल और सूक्ष्म खजानों की बचत की कला को सीखता है, वही निखरता है अर्थात संपन्नता को प्राप्त करता है। विवेक और भावना का एक संतुलन रख कर्म करो। विवेक और भावना का हमें क्या करना है? संतुलन रखना है। केवल विवेक अहंकार उत्पन्न करता है। अगर विवेक केवल हो तो वो क्या होता है? वो अहंकार उत्पन्न करता है। और केवल भावना का युद्ध क्या होता है? विवेक हमें अहंकार जब लाता है तो भावना जो है वो कायरता हो जाती है। हमारी कई बार अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नुकसान पहुंचा देता है, और कई बार सीमित मात्रा में मिला हुआ जो भी हम लेते हैं, अगर हम लिया हमने सीमित हाँ मात्रा में लिया गया विष भी क्या होता है? औषधि बन जाता है। इसलिए स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर विवेक और भावना का संतुलन रख प्रयोग करें। तो इसका संतुलन रखकर अगर प्रयोग करने से प्रत्येक कर्म में सफलता मिलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता क्या चाहती है? योग्यता के साथ सकारात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण। योग्यता के साथ क्या होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण सही दिशा देता है। जो गुणग्राही व्यक्ति दूरदर्शिता भी रखता है वह सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त पाता है। हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है, उसकी उम्मीदों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना दुआएं अर्जित करने का सहज मार्ग है। श्रेष्ठ कार्य करने में शर्म नहीं अपितु समर्पण और नम्रता को, जिससे निर्माणता और महानता प्रत्यक्ष हो, यही सफलता की नींव होती है। सरल और निर्मल स्वभाव यानी कि एकदम पवित्र स्वभाव। अगर स्वभाव सरल व निर्मल है तो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सकते हैं। जो वृक्ष लचीला होता है वह सबसे ज्यादा वो बड़े से बड़े तूफान में भी अपना बचाव कर सकता है। त्रिकालदर्शी बने, हमारा क्या है, हमें कैसा होना चाहिए? त्रिकालदर्शी बनना चाहिए। यानी कि तीसरे काल को देखो। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि कर्म करने से पूर्व ही कर्म के परिणाम का बोध हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की समझ द्वारा साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है। इसलिए कर्म करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होता। प्रचलित मान्यता है कि कोई भी कार्य आगे पीछे देखकर सोचकर समझकर करो। ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज में मान सम्मान का पात्र बनता है। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी

0: फिर ये जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिकार तो बने न वो बुलबुल
1: जिसके दिल में उठे न सुनकर किसी के दर्द की हूँ। ऐसी लड़की से अच्छा है ले आओ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर और मेरे साथ आज इस शो को सजाने के लिए खास वीबा जी हैं, जिनसे हम लोग पहले भी रूबरू हो चुके हैं और काफी अच्छे गानों का कलेक्शन उनके पास है। तो आप सभी की तरफ से वीबा जी का भी आज के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, खाबो के सफर में आपको और हमारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी वीबा जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजे में।
1: काफी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और हमारे सभी श्रोता भी आपकी आवाज सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज भी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बहुत सारे जो अच्छे गानों का कलेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बता ही दीजिए हमारे श्रोताओं को, तो उन्हें भी लगेगा कि आज ये गाने, इस टाइप के गाने, इस भाव के गाने सुनने को मिलेगा।
2: आज के इस एपिसोड में मैं लेके आई हूँ जो गाने, उसमें मिक्सचर है और जिंदगी की सच्चाई है। इसमें प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट, नशा भी है, दूरियां भी है और निकटता भी है। कुल मिला के जिंदगी की सच्चाई है इसमें।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत धमाकेदार गीत हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। तो सबसे पहला गाना आपके पिटारे में कौन सा है?
2: पहला गाना मेरे पास है मोहब्बत भरा, ये गीत है। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी ये इंसान तो क्या खुदा से डर नहीं सकती। इसमें मोहब्बत को इस यकीन के साथ बयां किया गया है कि मुझसे पहले मेरी मोहब्बत कभी नहीं मरेगी। अपने महबूबा को डेथ बेड से खींचते हुए कैसे प्रेमनाथ ले आते हैं अपने बोलों के जरिए, अपने गीत के जरिए, और उनकी आवाज में एक कशिश है, एक प्यार की तासीर है जो उनके महबूबा को डेथ बेड से भी उठा के ले आती है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, दिल को छूने वाला गाना है ये।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है ये चंगेज खान फिल्म का तो नहीं बता रहे आप?
2: जी
1: जी हाँ, 1957 में ये फिल्म आई थी, चंगेज खान। बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही थी उस समय की और केदार कपूर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, MR बकरी साहब ने इसे लिखा था और इस फिल्म के जैसे कि बहुत ही अच्छे पॉपुलर उस समय के स्टार्स थे, प्रेमनाथ, बीना राय, शेख मुख्तार पर यह फिल्म पिक्चराइज किया गया था। और जिस गाने की आपने जिक्र किया है विभा जी, उसे जो है मोहम्मद रफी साहब ने गाया है,

0: और
1: संगीतकार थे उस समय के हंसराज बहल, जिन्होंने इस फिल्म को संगीत से सजाया था। और 1957 का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। अब आगे बढ़ते हुए मैं कहते हैं, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खबरों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये गाना जो है चंगेज खान इस एल्बम से था जो विभा जी ने याद कराया। तो विभा जी, अब अगला गाना आपके पिटारे में कौन सा है?
2: ये दूसरा गाना मेरे पास है, मुझे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, आवन कह गए अजहू न आए, लेने न मोरी खबरिया। इसमें मीना कुमारी विरहा का गीत है, और इसमें मुझे लगता है कि ऐसे तो कोई बेवफा नहीं होता, जरूर इनके महबूब की कोई मजबूरियां रही होंगी, कभी तो इतने दूर हैं। और मीना विरहा का गीत गाते हुए तड़प भी रही हैं और उनको बुला भी रही हैं, और उनके मिलने की एक उम्मीद लेकर इस गाने को गा रही हैं, और इसके अंदर जो बोल है वो बड़े मुझे अट्रैक्ट करते हैं। प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, मुझे भूल गए सावरिया, उसको सिर्फ अपना प्रीतम चाहिए और कोई नहीं, ना दुनिया ना दुनिया में रहने वाले लोग। बहुत प्यारा गीत है।
1: जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद करा, बैजू बावरा इस एल्बम से है, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा, और कहीं न कहीं ये विरहा का जो गीत है हमारे दिल को छू लेता है। शकील बदाई साहब का लिखा ये गीत है लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में, और बेहतरीन नौशाद साहब का संगीत है इस गाने के लिए। और बैजू बावरा ये जो फिल्म थी 1952 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म खास मीना कुमारी और भारत भूषण पर पिक्चराइज किया गया था। ये शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही अच्छा नमूना इसमें हम सभी को मिलता है सुनने को, और ये संगीत के साथ साथ जो गाने बने हुए हैं ये भी अपने आप में बहुत ही कमाल के लिरिक्स है इसमें। तो चलिए गाना सुनने के बाद फिर बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी हाँ नमस्कार, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना बैजू बावड़ा इस एल्बम का। और 1952 में ये फिल्म आई थी और उस समय ये फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कहानी को भी बयां करता है, एक संगीतकार की कहानी को इसमें दिखाया गया है। और विजय भट्ट इस फिल्म के विशेष डायरेक्टर रहे और भरत भूषण मीना कुमारी पर यह फिल्म बना था। और सम्राट अकबर के समय की कहानी इसमें बताई गई थी और बैजू बावड़ा जो कैरेक्टर है वो भरत भूषण ने प्ले किया था। और अपने पिता की मृत्यु का बदला संगीत सम्राट तानसेन से लेना चाहता है और तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज, एक साधारण व्यक्ति इतने बड़े संगीतकार के साथ किस तरह से वो बदला लेता है या किस तरह की बातें उसमें होती है वो बताई गई थी इसमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभा जी, आपने फिल्म देखी है क्या बैजू बावड़ा?
1: जी हाँ जी, बिल्कुल मैंने देखी है और दो बार देखी है।
0: तो उसमें क्या होता है, मेरे को लास्ट का सीन बताइए, क्या बैजू बावड़ा जीत जाता है, तानसेन हार जाता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उनके संगीत, इनके इस फिल्म के सारे गाने बड़े हिट रहे हैं और उनको आप पूरी मूवी को एंजॉय करते हो। स्टोरी के साथ साथ गाने बहुत हिट है इसके और बार बार सुनने को मन करता है।
0: चलिए, शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही सुंदर जो एग्जाम्पल हम लोग देखे, हिंदी फिल्मों के गाने जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एसेट हम सभी के बीच में है। बीच बीच में हम लोग इन चीजों को सुनते हैं तो हमारी संगीत की जो आत्मा है हमें नजर आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाने में थोड़ी सी मस्ती है, थोड़ा चंचल और प्रीतम से मिलने के कई बहाने हैं इसमें, जिसमें नूतन गाते हुए कह रही है, मोरा गोरा अंग लैले मुझे शाम रंग दे दे। नूतन इसमें शाम रंग की मांग इसलिए कर रही है ताकि

आई थी 1963 में ये फिल्म आई थी और इसके मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार बोस और इफ्तिखार। तो यहाँ पर जो है एक कहानी ऐसी बताई गई है, शायद आपने देखा हो, तो जेल में एक डॉक्टर का किरदार निभाते हुए धर्मेंद्र सर को बताया गया है, डॉक्टर देवेंद्र, और वो एक महिलाओं के जेल के डॉक्टर हैं, तो इसलिए वहां पर जितनी भी महिलाएं हैं वो कैद में रहती हैं और उनका देखरेख करना एक देवेंद्र जी का काम होता है, और उसमें उन्हें किसी एक स्त्री से प्यार हो जाता है और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये स्त्री तो हथियारिन है। तो इस तरह का ये क्लाइमेक्स इसमें बताया गया है। तो चलिए, हबीबा जी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत याद कराया है, मोरे गोरा अंग, गुलजार साहब का ये बहुत ही खूबसूरत कलम से लिखा हुआ गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, मस्ती भरा, जैसे विभा जी ने बताया था, और सचिन देव बर्मन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा गीत आपने सुना। और अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। तो विभा जी, कौन सा अगला गीत आपके पास है?
2: अगले गीत में मेरे पास है थोड़ी

0: कितने आंसू। तो जिंदगी चलते चलते थोड़ी सी नमकीन भी हो जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए ये गाना भी इसमें फिट हो सकता है। मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना।
1: अच्छा,
0: बहुत सुंदर गाना है, सुनील दत्त गा रहे हैं, शादी का माहौल है और सुनील दत्त अपने आंसुओं को खुशी के आंसुओं का नाम दे रहे हैं, जबकि उनका दिन श्रोताओं को उनके दर्द का एहसास दिलाता है। साफ पता चलता है कि वो रो रहे हैं, लेकिन अपने आंसुओं को खुशी का नाम देते हुए ये कह रहे हैं, हजारों तरह के होते हैं आंसू, अगर गम हो दिल में तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। उनके आंसू की कहानी उनकी व्यथा बता रहे हैं और इसकी पिक्चराइज किया गया बहुत अच्छी तरह और इसके बोल भी बड़े अच्छे हैं। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, तो आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं अभी। और ये आपने बताया मिलन इस एल्बम से है जो 1967 में आई थी फिल्म। आनंद बख्शी साहब का लिखा है, मुकेश जी का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध ये गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आपने सुना बहुत ही प्यारा संगीत मिलन इस एल्बम से, और 1967 में बनी ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही, और इसमें जो है बह राव ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, और फिल्म जो है उस समय काफी जो है पॉपुलर रही, और ये एक दूसरी फिल्म की रीमेक थी, और एलवी प्रसाद द्वारा इसे निर्मित किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, सुनील दत्त नूतन पर पिक्चराइज किया गया था, प्राण और देवेन वर्मा जैसे कॉमेडी एक्टर भी इसमें रहे, और लक्ष्मीकांत का संगीत से सजा ये फिल्म एक छोटी सी कहानी को बयां करती है। एक विधवा जो लड़की है, एक गरीब नाविक जो है उससे प्यार कर बैठता है, और दोनों के प्यार को जो है लोग अलग ढंग से देखते हैं, और आखिरी में जो है गोपी पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो एक विधवा के ऊपर अवैध संबंध का ये जो बातें हैं इसमें बताई गई, जो सीन है उसमें दिखाई गई, लेकिन फिर बाद में सारा ही क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है और फिल्म में हैप्पी एंडिंग भी दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि अब एक चुलबुला सा अच्छा सा गाना लेके आऊँ जिससे वो आंसू वाला माहौल खत्म हो जाए। और
1: जी जी जी जी,
2: ये गाना मेरे पास है, मुड़ मुड़ के देख मुड़ मुड़ के जिंदगी के सफर में तू अकेला ही नहीं। कई बार इंसान दोराहे पे आकर रुक जाता है और समझ में नहीं आता कि वो रुके या आगे बढ़ जाए। वो इसी दुविधा में राज कपूर है इस गीत में, और नरगिस और नादिरा है इसमें। गाने का बड़ा अच्छा पार्टी का एटमॉस्फेयर है, और वो लग रहा है कि जैसे राज कपूर जो है दुविधा में है, आगे जाऊं पीछे जाऊं क्या करूं, पर फिर यही डिसाइड करते हैं। इसके गाने के बोल आगे चल के बड़े अच्छे हैं, नैनो से नैना जो मिला के देख, मौसम के साथ मुस्कुरा के देख, दुनिया उसी की है जो आगे देखे।
1: 3420-1955 का आपने याद कराया, शैलेंद्र साहब का लिखा, आशा भोसले मन्नाडे का गाया है, और शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये गीत अभी हमारे श्रोताओं के लिए। जी हाँ, मुड़ मुड़ के ना देख।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़मोल के नाते सी 420 का ये गाना आपने सुना, जो बहुत ही प्यारा सा गाना है और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हमें आज भी वर्तमान में मैसेज देता है। और ये जो फिल्म बनी थी एक जीवन शैली को बताने की कोशिश की है और

0: इस नाम के एक लड़के की कहानी इसमें बताई गई है। जब एक अमीर व्यापारी सोना चंद उसके लिए एक मुश्किल का काम करता है, हालांकि जब राज को सोना चंद के बेईमान तरीके का पता चलता है तो वह बदला लेने का फैसला भी ले लेता और फिर आखिरी में चीजें बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती हैं। और इसमें राज कपूर साहब का जो एक्शन और कॉमेडी भी दोनों मिला के उन्होंने एक्शन किया था इसमें, तो बहुत ही मजेदार फिल्म थी। आशा करता हूँ हमारे विभा जी ने इसे भी दो बार देखी। विभा जी कितनी बार देखी? दो बार तो देखी होगी मेरे ख्याल से। तो
1: एक्चुअली जो मेरी पसंदीदा पिक्चर्स होती हैं जो मैंने बचपन में देखी हैं उसको मैंने दोबारा जरूर देखा है। जब मैं सुनती हूँ मुझे गाने के वर्डिंग जो अच्छी लगती है तो उसके पीछे छुपी स्टोरी को मैं जरूर सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, तो इसलिए ये मूवी मैंने वाकई मैंने फिर से देखी है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला थोड़ा सा दर्द है इसमें और धर्मेंद्र शिकायत कर रहे हैं इसमें और कह रहे हैं मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। तो एक तड़प है जो नंदा के लिए है, वो उसमें इसी तड़प को गाने में गुनगुनाते हुए बयां कर रहे हैं। मैं अपनी दुनिया में कितना खुश था, मजे में था अपने आकर, मेरी दुनिया ही उथल पुथल कर गई। और इसमें दर्द है और पिक्चराइज बहुत अच्छी तरह किया गया है। उसकी एक वर्डिंग है, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
0: धर्मेंद्र साहब, अशोक कुमार, महमूद अली, निम्मी पर चॉइस किया गया था ये खूबसूरत फिल्म आकाश दीप का जो आपने याद कराया है। और इसमें शंकर जो है विशेष धर्मेंद्र ने अभिनय किया है शंकर का, और वो अपने निराशा जो है उसकी ये होती है कि उसके पिताजी की मौत देखता है और फिर बहुत मुश्किल से पिताजी जो है काफी मेहनत करके अपने परिवार को चलाने की कोशिश करता है और उस बीच में ये कश्मकश आता है और उनका एक छोटा भाई भी है जो चाय स्टॉल चलाने का काम करता है और उसमें वो मस्त रहता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं गरीबी का जो भाव है वो आ जाता है बीच में और उसके लिए वो जद्दोजहद मेहनत करते हैं। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और ये गीत भी हमें कहीं ना कहीं एक अलग फील देता है। मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से लिखा ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, चित्रगुप्त का संगीत है। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। कहते हैं जिंदगी की राहों में अंधेरा बहुत है, ये कभी मत कहना। राहों को रोशन करना है अगर, तो दिल में सदा उम्मीद की लौ जलाए रखना। जी विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पिटारे में?
1: तो मुझे लगता है दोनों मोहब्बत करने वाले को मिला देना चाहिए, इसलिए मोहब्बत वाला गीत लेके आई हूँ।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं था और फिर क्या है, इसमें दो आशिक मस्ती करते हुए दिख रहे हैं और मोहब्बत की शुरुआत हुई है और दिल में उठते हुए भावों को गीत में गाया जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: साधना और जय मुखर्जी है, दोनों मस्ती में है और इसके बोल इसमें आगे चल के आते हैं। अदा आशिकी के नजर शायर आना, मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और ये गीत एक मुसाफिर एक हसीना इस एल्बम से है जो 1962 में रिलीज हुई थी। चलिए, इस फिल्म के जो कलाकार हैं वो जॉय मुखर्जी, राजेंद्र नाथ, साधना, शिवदासानी, धुमाल, इन पर पिक्चराइज किया गया है, तो इस गाने का आनंद उठाते हैं। ये गाना जो है खास HS बिहारी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और OP नैयर साहब का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी और हमारे साथ आज के खास मेहमान इस एपिसोड में विभा जी हैं, जिनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है 50s और 60s के एम अक्षर वाले। तो चलिए विभा जी, अब अगला आखिरी गाना शायद मुझे लगता है आपके पास है।
1: जी हाँ, मेरे पास एक नशे से भरा हुआ गाना है जिसमें मस्ती है, एक्टिंग है, प्यार है और मैसेज भी है, और बड़ा डीप मैसेज है इस गाने में जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दिलीप कुमार जी का तो कोई जवाब ही नहीं, उनकी एक्टिंग और स्पेशली उनकी जोड़ी जो वैजयंती माला के साथ रही है, वेरी नाइस। तो ये गाना मेरे पास है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाई गई। इसमें दिलीप कुमार ने कमाल की शराबी की एक्टिंग करी है और गाने का एक एक बोल मीनिंगफुल है। इसमें आज के दौर में हो रही दोहरी जिंदगी का बयान है, पार्टी का माहौल है। इसमें वर्डिंग है, कोई पी रहा है लहू आदमी का, हर एक दिल में मस्ती रचाई गई है, जमाने के यारों चलन है निराले, यहाँ तन है उजले मगर दिल है काले।
0: क्या बात। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने लीडर फिल्म का याद किया है जो 1964 में आई थी। ये एक कानून की पढ़ाई करने वाले विजय नाम का लड़के की कहानी है और वो सरकार की आलोचना करता है, खूबसूरत महिला से इश्कबाजी करता है और जहाँ जाता है मुसीबत में पड़ता है और उस पर राजनीति की जो है बातें आ जाती है और आखिरी में उसके ऊपर एक हत्या का भी आरोप लगता है। फिर बाद में सारी चीजें जो है एक वकील होने के नाते जांच पड़ताल भी होती है, फिर चीजें जो है बाद में ठीक हो जाती है। और इसमें काफी गाने जो है बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, एक शहंशाह ने बनवाया एक
1: ताजमहल,
0: इस तरह के बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। और इसमें आज अभी हम लोग जो आपको सुनाने वाले हैं, विभा जी ने जिसे याद कराया, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, तो आइए इसी गाने के साथ विभा जी हम लोग आखिरी मोड में हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और एम अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए।
1: जी थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी श्रोताओं से बात करके, ऐसे लगता है कि मैं उनसे सामने बैठ के ही बातें कर रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ, गानों को भी इंजॉय करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोतागण इस कड़ी को सुने, इसको एंजॉय करें और खूब मस्ती के साथ जिंदगी के हर पहलू को जिए। थैंक यू,
0: बहुत ही प्यारी सी बातें आपने कही, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें पसंद आ रही है। और कहते हैं मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इन चंद लाइनों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी मिलता है। जब भी हम लोग किसी चीज को सुने तो पूरे दिल से सुने, देखे तो पूरे दिल से देखे और जो करे वो भी पूरा दिल से आप करें। जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें आप हो ये एहसास के साथ आप करेंगे तो चीजें आसानी से और बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम कुछ कर रहे हैं और वहां की बातें नहीं, किसी और दुनिया में हम खो गए, दिल से कहीं और दुनिया में चले गए, विचारों से कहीं और चले गए, तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें और जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो 100% उसका रिजल्ट नहीं मिलता।

तो इसीलिए आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसे 100% अपना टाइम और अपना दिन दिमाग सब कुछ वहीं पर दे। विभा जी वंस अगेन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, सलाम नमस्ते, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान दें।
0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हाँ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, किकनार करके सिंगार, किकनार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, चमक झुम झुम, चमक झुम झुम।

नदियाँ पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने। भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार भरने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया।

0: लेवल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं, बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आप सुन रहे कार्यक्रम यशस्वी भारत। भारत का जो गौरव है वो देश और दुनिया तक फैला है, लेकिन दोस्तों भारत का गौरव फैलाने वाले कौन है? कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं को ऐसा निखारा, ऐसा उन्होंने उभारा कि भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने अपना साथ साथ देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं जो आपको जानकर बहुत खुशी होगी। कालबेलिया नृत्य आप सभी पसंद करते हैं, जानते हैं, जहां से उत्पत्ति हुई है वो सोर्स के पास हम आपको लिए जा रहे हैं आज। जी हाँ, जिन्होंने शुरुआत की है कालबेलिया नृत्य की, हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी। उनके नाम के पीछे राज हैं, उनके जन्म में, उनके नृत्य में बहुत राज छिपे हैं। उनको कई पुरस्कार मिले हैं, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और देशों दुनिया में न जाने 50 देशों में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बहुत कुछ है जाने को। गुलाबो जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है हम आपकी शुरुआत से अगर शुरुआत करें।
4: मेरा जन्म स्पेशल हुआ है और हम लोग सपेरा समाज से हैं और नाम तो आपने बता ही दिया है। मेरा नाम गुलाबो सपेरा पद्मश्री लगा सकती हूँ और अभी मेरे को डॉक्टरी का PhD का सर्टिफिकेट मिला है, तो डॉक्टर गुलाबो सपेरा भी ले सकते हैं नाम। तो हमारे समाज में क्या है कि हम लोग गुरु कृपानाथ जी के शिष्य हैं, 9 नाथों में से, जैसे गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, पार्श्वनाथ और गुरु कृपानाथ। तो हमारे जो गुरु जी जो थे वो जंगल में रहते थे, सांपों का जहर निकालते थे और घर घर जाके उनकी पूजा करवाने का काम था। उसी पद से हम लोग निकले और हमारा नाम रखा गया। काल को पकड़ते इसलिए हम लोग कालबेलिया कहते हैं, क्योंकि हम सांप को वश में करते इसलिए हम कालबेलिया कहते हैं। नाथ हम लिए इसलिए कहते हैं कि हम कृपानाथ जी के शिष्य हैं और हम गुरु गुरु शंकर भगवान के पद से निकले हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को नाथ कहते हैं और जोगी भी कहते हैं हम लोगों को। और सपेरा इसलिए कहते हैं कि हम सांप को नचाते हैं, घर घर जाके बीन बजाते हैं और सांपों को नचाने का काम, इसलिए हम लोगों को सपेरा कहते हैं। उसी समाज में एक रीति और रिवाज बना हुआ था कि लड़कियां जन्मते उनको नहीं रखा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब होते थे और गांव डाणी में घूमने का काम, आज यहाँ डेरे कल वहाँ डेरे परसों वहाँ डेरे, हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। हम लोगों को गांव के कुएं का पानी भी नहीं पीने देते थे, हम लोग जंगल में जाके जंगल का कुआं ढूंढ के और वहाँ से हम लोग पानी पीते थे, लोग बाग हमारे से छुआछूत करते थे। तो इसी तरीके से हमारे ये रूल बना दिया कि ज्यादा बेटियां रखेंगे तो रुकाली भी नहीं कर सकते बेटी की, और एक बेटी हो तो ठीक हम शादी कर दे, लेकिन 4-5 बेटियां हो तो फिर उसकी शादी करना, खर्चा करना, उनके लिए देना, कपड़े पहनाना, देना दहेज वहेज, ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे समाज में पंच लोगों ने, हमारे गुरुजी ने डिसाइड किया कि जो भी कन्या पैदा होती है नाला नहीं काटो, उसको वैसे की वैसे जमीन गाड़ दो। नाला काटने के बाद तो वो अपनी हो जाती है, नाला नहीं काटते जब तक वो जहाँ से आई है उसी दुनिया में वापिस भेज दो। तो इस तरीके से हमारे नाला नहीं काटते थे और सदियों से लड़कियों को दफनाते आ रहे थे। कोई एक लड़की रख भी लेता कि भाई मेरा आंगन कवारा नहीं रहे, मैं तो बेटी को चाहता हूँ, बेटी को मैं ब्याह कर सकता हूँ, तो कई लोग थे भी इस तरीके से। तो इस तरीके से

0: घर में भी इसी था कि मेरे पापा माता चामुंडा के पुजारी थे और वो बेटियों को नहीं मारते थे। पहले तीन बहनें थी और फिर उसके बाद तीन भाई हुए, फिर चौथे सातवें नंबर पर मेरा जन्म हुआ। उस रोज धनतेरस का दिन था और मेरे पापा घर पे थे नहीं, दीपावली का सामान लेने के लिए अजमेर से ले गए। और पीछे से औरतों ने, जिस औरतों ने मुझे जन्माया और जिन औरतों ने हेल्प किया, उन्हीं औरतों ने जन्माते और जमीन में ले जाके और जंगल में ले जाके मुझे गाड़ दिया। मेरी माँ सोची कि निराने लेके गए होंगे या नाला वाला काट रहे होंगे। तो 15-20 मिनट आधा घंटा भर तक मेरी माँ ने वेट किया और वो भी नहाई धोई कपड़े लेते पहने तो कहा कि भाई मेरे बच्चा हुआ या बच्ची मुझे बताओ तो सर मेरी गोद में तो दो। तो मेरी मौसी ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी उसको जमीन में गाड़ दी। तो ये जन्म से ही मेरे साथ हुआ कि मैं इधर से माँ के पेट से 9 महीने बाद निकली और धरती माता के पेट में मुझे डाल दिया गया। तो मेरी माँ रो रो के भीख मांगने लगी और से धमका के चली गई और कहने लगी कि नहीं वो लड़की थी मर गई अब तो चुप हो। मेरी मौसी के आगे मेरी माँ ने हाथ जोड़ा और मेरी मौसी ने हेल्प किया। इस तरीके से मेरी माँ और मेरी मौसी रात की 12 बजे निकाल के जाके और मुझे उस जमीन से खुद वापस निकाला। और मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी जिंदा मिलेगी, मेरी माँ का विश्वास जीता, मैं मेरी माँ को जिंदा मिली, मेरी माँ की जीत हुई और मेरी सांसें चल रही थी जब मेरे को खोद के निकाला। तो ये मेरे जन्म का वेलकम
1: जी। और बिल्कुल आप धरती पुत्री भी हैं, आपने धरती माँ की गोद से ही जन्म लिया।
2: तो आपने अपने जन्म की कहानी सुनाई गुलाबो जी, और हम शायद नहीं जानते कि कितनी ऐसी बेटियां जिनके साथ ये होता है और जो नहीं भी बच पाती हैं, और फिर भी आज भी कहते हुए बड़ा दुख होता है लेकिन भारत के कई कोनों में इस तरह की प्रथा है। गुलाबो जी, जब आप बड़ी हुई धीरे धीरे, और आपने नृत्य करना कैसे शुरू किया?
0: जब मेरे को जन्म से गाड़ दिया था तो समाज वाले लोगों ने बहुत विरोध किया, कहने लगे कि इसको लड़की को मरना है एक न एक दिन इसको, क्योंकि ये समाज के खिलाफ जाके तुमने इसको जिंदा छोड़ा और जिंदा रखा। तो मेरे पापा डरते थे, वो ये सोचते थे कि इस बेटी को मार नहीं दे। तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे, सांपों को नचाने जाते थे। उन सांपों को देख देख के मैं 6 महीने की थी जब से मेरे पापा के साथ जा रही, और उन सांपों को बचावा। मेरी माँ पूछती कई बार की बच्ची रोती है तो खिलाते क्या है इसको। मेरी माँ, मेरे पापा ने कहा कि मैं क्या खिलाता हूँ, जो सांपों को दूध पिलाती औरतें वो जो बचावा दूध है वो मैं इसको पिला देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पापा के साथ में पली बढ़ी और सांपों के साथ खेलते खेलते, मेरे बहन भाइयों के साथ नहीं खेली, सांपों के साथ ही खेलते कूदते बड़ी होगी। और सांपों को गले में पहनने के, और जब 6 महीने की होगी तो मैं गले में पहनना स्टार्ट कर दिया। 2.5 साल की होगी तो मैं गले में पहन के सांपों को नाचती थी, वो बीन की धुन और डपली की थाप पे मैंने डांस स्टार्ट कर दिया। और ये गॉड गिफ्ट है, और मेरे पापा से सांपों से प्रेरणा मिली मुझे इस डांस, और वहां से मैंने डांस स्टार्ट किया। समाज के लोगों ने कहा कि पहले तो तू समाज के खिलाफ जाके धरती से बच्ची को बाहर निकाला, अब तू डांस करवाता है तो इसको तो इसीलिए पाला कि तू बेटी की कमाई खाए, ये लड़का है लड़की ने, तू इतना तो सोच इसको क्या सिखाता है, बीन बजाना या डफली बजाना या सांपों को नचाना। इस तरीके से ताना देते थे मेरे पापा और मेरे पापा को लोगों। और मेरे पापा फिर कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे डर के मारा इसको लेके जाता हूँ, मैं कोई बेटी की कमाई नहीं खाती। फिर मेरे पापा ने कहा, समाज ने कहा कि नहीं हम नहीं मार सकते, 2.5 साल की हो। तो मेरे पापा ने मुझे घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे को वो लत पड़ी हुई थी डांस करने की। मैं रोज डांस करूँ या रोने लग जाऊँ या फिर मेरी माँ तम्मू के पर्दा करके, और मुझे डांस भी सिखाती थी और गाना भी सिखाती थी। कहती कि मैं तेरे को नचवाते थे, तेरे पापा नचवाते थे, अब मैं नचवा। यूँ करते करते मैं बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो, और डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, इस लड़की को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है पर ये बचेगी नहीं, इसको घर लेके। मेरे पापा पीर बादशाह पे विश्वास करते थे अजमेर ख्वाजा, कहा कि नहीं ये लड़की अजमेर धरती पे जन्मी हुई, ख्वाजा शरीफ की धरती पे जन्मी हुई, नहीं मर सकती 5 घंटे धरती में रहने के बाद, अभी डॉक्टर साहब ये नहीं मर। मेरे पापा बड़ा विश्वास रखते और वहां ले जाके मेरे को दरगाह में सुला दी। और 1 घंटे बाद में गुलाब का फूल आया और मेरे हाथ पांव चलने लगे। तो मौलाना साहब ने कहा कि तेरी बेटी जिंदा हो गई, इसको लेके। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं जो लेके आया था वो धनवंती, अब जो लेके जा रहा हूँ वो गुलाब। तो मेरे नाम के पीछे भी ये रीजन है कि मेरा नाम पहले धनवंती था जन्म से, और फिर मैं बीमार हुई पीर बादशाह की और अजमेर ख्वाजा शरीफ की कृपा से कल गुलाब का फूल आया और मेरे सांसे से मेरे पापा ने मेरा नाम गुलाब रख, वो धनवंती वहाँ खत्म हो और गुलाब मेरा नाम। उसके बाद फिर मैं जब 7-8 साल की थी तब मैं पुष्कर मेला में हमारे समाज की जो औरत वो छुप छुप के नाचने के लिए जाती है होली के दिनों में भी, और वैसे मतलब आदमी लोग लेडीज के कपड़े पहन के जाते थे लेकिन औरतों को घर से नहीं निकले। और

मतलब जिसको शादी करनी होती थी वो यहाँ जालौर से लड़कियां मोर खरीद के लेके जाते थे, यहाँ आते थे अजमेर से, दिल्ली से, जयपुर से, यहाँ जालौर में आके यहाँ से वो छाबड़ी बनाने वालों की लड़कियां मोर खरीद के ले जाते और उनको पाल पोस के बड़ा करते थे और उनसे शादी करते, पर खुद की बेटियां नहीं बचाते थे। इस तरीके से हमारा ये रिवाज बना हुआ। और मैं समाज की औरतों के साथ में और एक मेरे चाचा और मेरे भाई बीन बजा के और डपली बजा के मुझे छुप के नचा रहे थे कि भाई अपन को पैसे मिल जाए खर्चा, थोड़ा लाली टीकी बिंदी खरीद ले, अपन मेले में शॉपिंग कर ले, तो छुप छुप के नचाते फिर रहे थे। और वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के एम्बेसी पांडे आए और उन्होंने देखा कि बोले भीड़ इकट्ठी हो रही, वो भीड़ देख के वो आए और एकदम उनको लगा कि लड़की नाच रही, लेकिन ऐसा लग रहा कि इसके बदले में तो हड्डियां ही नहीं, पर मैडम को ये लगा कि सपेरों की लड़कियां तो नाचती नहीं है, वो तो सांप को नचाते हैं, ये पहला लड़की है जो मेरे को नाचते हुए दिख रही है। तो पूछा कि तुम्हारे तो लड़कियां नाचती हैं, फिर कैसे नाच रही? मैंने कहा मैम मैं छुप के नाच रही हूँ, मेरे समाज वाले नहीं देख, हम लोग ऐसे ही थोड़ा काजल बिंदी खरीद ले तो छुप छुप के नाच रहे। बोला ऐसे ही तुम शाम को नाच प्रोग्राम के लिए। उन्होंने हमें प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया और हम लोग चले गए, प्रोग्राम समझते नहीं थे लेकिन हमें नाचने के लिए कहा, हम लोग चले गए। मैडम ने पहले बार घुंघरू दी, पुष्कर मेला में मैंने 81 डांस स्टार्ट किया और वहाँ पहले दिन डांस किया, दूसरे दिन डांस किया और तीसरे रोज समाज वालों को पता चला कि ये लड़की तो तख्तों पे डांस, और समाज वाले तो बिल्कुल ले बाउम की जैसे फटे के बोले तुम जो हम कह रहे थे वही हुआ, ये लड़की कलंक है समाज, हमारे समाज का नाम काट दिया इसने, नाक काट दिए इसने, ये तख्तों पे डांस कर, कई तख्तों पे अच्छी लड़कियां डांस नहीं करती, अच्छी औरतें डांस नहीं करती, ये लड़की ने तख्तों पे डांस किया। तो मेरे पापा को उन्होंने डिसाइड किया कि इसको समाज से बाहर कर, और मेरे पापा दंड जुर्माना दे के और समाज से बाहर होने के लिए एग्री हो। इधर से मैडम 15 दिन बाद भी मैडम के कई लोग आए जयपुर से, कहा कि भाई तेरी बेटी को मैडम बुला रही, मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा इसको, हमें समाज से बाहर कर दिया। लेकिन मैंने सुन लिया, मैं मेरे भाई के साथ हाथ जोड़ के उनको और कैसे कैसे मना के मेरे भाई को, हम लोग दोनों मेरे भाई रात को उठ के और 1 बजे रात को हाईवे पे जाके और बस लेके हम लोग जयपुर चले गए। 6-7 महीने बाद मेरे मम्मी पापा भी आ गए और इस तरीके से मेरा सफर किस्त, वहाँ जाके हम मैडम से मिले, कृति मैम से 15 दिन बाद जाके मिले, हम रक्षा चला चला के पेट भरे हमारे, और वहाँ जाके फिर मैडम से मिले, फिर उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया और कहा कि बोले ठीक है तुम भी यहाँ प्रोग्राम। तो हम लोग पूरे इंडिया में 5 साल तक टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोग्राम किए और 85 में अमेरिका जाने का मौका मिला पहले बार। और जब तक हमारे समाज के लोग हमें समाज से बाहर कर रहे हैं, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी पंचायती, पर मेरे पापा चट्टान की जैसे खड़े और वो पूरे समाज को देखते। और इधर जो जयपुर की महारानी गायत्री देवी है मैडम, उन्होंने कहा कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे राजस्थान की बेटी है, इसको तुम्हें सपोर्ट करना है, इसको आगे निकलने दे। मेरे पापा ने एक ही बात कही कि मैडम ये बात तो मैं सपोर्ट करूंगा मेरी बेटी का और इसको मैं आगे निकाल, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरीके से मेरे पापा महारानी गायत्री देवी जी ने गोद दिया मुझे, वो समाज से लड़ना स्टार्ट कर दिया और इधर मैं मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। 85 में अमेरिका जाने का मौका मिला मुझे और वहाँ पे भारत महोत्सव हुआ था, उसमें वहाँ पे लता जी भी मिले थे मुझे, उनका आशीर्वाद भी मिला कि लड़की बहुत आगे जाएगी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी ने बोला ये लड़की बहुत आगे जाएगी, इसका सपोर्ट करो। फिर मेरे जाने से 1 रोज पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे अमेरिका जाने से, और मैं वहाँ दिल्ली में थे हम 2 महीने, मुझे वापस लेके आए, फिर मुझे बताया कि तेरे पापा नहीं, बेहोश पड़ी 2 बजे रात की, मेरे पापा ड्रीम में आए, कहा कि बोले बेटा तेरे को जाना, बेहोश नहीं होना है, तेरे को चीलगाड़ी में नहीं बैठना। तो इस तरीके से मेरी आंख खुली और मैंने कहा माँ मैं दिल्ली जा रही। मेरी माँ ने कहा कि 12 दिन से पहले नहीं जा सकती। फिर मैंने कहा कि मेरे पापा लड़ रहे थे मेरे लिए, क्या माँ आप नहीं लड़े? मेरी माँ ने कहा तू जा अमेरिका, मैं लड़ती हूँ समाज से, 12 दिन भी हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे पापा मरे नहीं है, जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है, और वो अपने आंखों से गुजरे लेकिन वो अपने साथ, आप आंख बंद करके देखो आप उनको पाएंगे, वो बहुत नजदीक पाएंगे। तो इस तरीके से मैं मेरी माँ को समझाते रहे अमेरिका चली गई, और वहाँ पे मेरे को राजीव गांधी जी मिले, उन्होंने कहा कि हमने सुना कि तेरे पापा नहीं रहे आने से पहले, फिर भी आप आए तो मैं पापा की जगह तो नहीं लूंगा लेकिन भाई बन सकता हूँ। तो मैंने उनके हाथ की राखी बांधी और सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी साथ, और 2 महीने 5 दिन हम लोग अमेरिका रहे, और बहुत बड़ी बड़ी मैगजीनों में, बहुत बड़े बड़े अखबारों में आता था, समाज के लोगों को चाय पिला रहे, कोई पास में बिठा रहे, कोई क्या कहते तुम्हारी लड़की तो अमेरिका गई हुई। बोला नहीं नहीं नहीं साहब, वो कलंक है, वो हमारी लड़की नहीं। पर बोले उन्होंने देखो बड़ी बड़ी बुकों में नाम आ रहा है उसका, उसने तो बहुत बड़ा नाम किया है, नाम उनको सपेरा नाम रखा है अपने सर ने,

0: सपेरों का तो बहुत बड़ा नाम हो गया। तो इस तरीके से फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि नहीं नहीं लड़की तो अच्छा काम कर रही। जब मैं वापिस आई अमेरिका से तो समाज के लोग मुझे दिल्ली आए लेने, बहुत मान सम्मान, समाज का अध्यक्ष चुना। और उसके बाद समाज वालों ने कहा कि बोले बेटा तेरे जैसी बेटी हमारे को भी चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसी बेटी आपको चाहिए तो मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारो। मेरे समाज वालों ने मुझे प्रॉमिस किया और अमेरिका से आने के बाद मेरी पहला जीत हुई कि समाज की बेटियों को नहीं जिंदा गाड़ते हैं नहीं मार। अब एक ही घर में पांच पांच छह छह बेटियां और उन्हीं बेटियों का वो वेलकम करते हैं। वो बेटियां उनको कमा के खिलाती है, सासरे में जाती है तो ससुराल वालों को कमा के खिलाती है। आज अमेरिका लंदन हॉलैंड पेरिस हमारे हजारों लड़कियां पांव पे खड़ी है कमा रही है और वो होल सोलर मतलब जीती अपनी जिंदगी जीती है और वो पढ़ रही है लिख रही। मेरी शादी हुई मेरी पहला बेटी हुई मैंने उसको पढ़ाया लिखाया। उसकी देखा देख बहुत सारा समाज के लोग वो पढ़ रहे लिख रहे और मेरे खुद के पांच बच्चे दो बेटा और तीन बेटी। तो पहला लड़की को मैंने एमजीडी स्कूल में पढ़ाया उसने इंग्लिश से भी किया क्लासिकल डांस करती है राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन। मेरा बेटा जो है वो फ्यूजन ग्रुप चलाता है डीनो बंजारा के नाम से सब जानते हैं। दूसरा भवानी सपकरा है वो मोटर बाइक स्टैंडिंग और रेसिंग करता है इंटरनेशनल खिलाड़ी। और दो बेटियां छोटी है वो एक्ट्रेस भी है और वो राजस्थानी मेरा वाला डांस भी कर रही है। अब साथ तीसरी पीढ़ी मेरी पोती दोनों पोतियां माही और तिया वो भी डांस करती है। तो ये
1: गुलाब जी जैसा हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा योगदान है आपका कालबेलिया नृत्य और कई भारत की बेटियां जो रोशन कर रही हैं भारत का नाम और एक प्रथा जो वो आपने खत्म कराई बहुत बहुत बड़ा योगदान। ये नृत्य का नामकरण कैसे हुआ और ये जब यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुई तो उसके बारे में कैसा लगा आपको ये नृत्य के नाम और इसकी ड्रेस ये उत्पत्ति?
0: मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं ये डांस करना स्टार्ट किया जब तक मुझे खुद को पता नहीं था कि इस डांस का नाम क्या था। और ये ड्रेस मैंने देख के और कहीं पे भी और मैंने ये ड्रेस बनाई। काला कपड़ा मुझे बहुत पसंद था शुरू से। मेरे कहा पापा मैं काले ड्रेस बनाना चाहती हूँ मैं मेरे घाघरा लूंगी। तो पापा ने कहा काला कपड़ा अपना अलाउ नहीं बेटा हम घर कनीपाना जी किसी से हम लोग सिर्फ भंगवा पहन काला नहीं। मैंने कहा मैं ऐसा ड्रेस बनाऊंगी कि उसको पूरे को ढक दूंगी। तो मेरे दिमाग में डिजाइन चल रहा था तो मैंने पूरे सात कलर की सात पाइपें ले ली फिर गोटा पत्ती ले ली फिर सितारे ले ली। फिर मैंने मेरे पापा को कहा मैंने कहा दिख रहा कुछ काला? बोले कुछ नहीं काला दिख रहा महारानी अब तू जीती मैं हारा ठीक है तू पहन। तो इस तरीके से मैंने मेरा ड्रेस डिजाइन मेले में हम लोग अक्सर जाया करते। मेरे गाना भी मैंने खुद नहीं बनाया अरे रे रे रे काले गयो बड़ो मेला में लायो काले
1: क्या दो लाइन सुना सकते हो
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे

रे क्या होता कि जब मेला देखने जाते थे ना जी, तो मोटरे पहले बसें लगती थी, वो लंबे मुंह वाली बसें, वो पापू पापू उनकी आवाज आती थी, हॉर्न बजाते रहते थे। तो मैं खड़े खड़े बस वही कह रही थी कि मेरे को जयपुर देखने का भी बहुत शौक था, तो मोटर पड़ी पड़ी धरनावे जयपुर जाबाड़ो कोई गौरे भाई, मैं ही जाऊंगी एक रोज जयपुर और कोई नहीं जा सकता, अब तो धरनाथी। तो ये गाना भी मैंने बनाया और ड्रेस ही मेरा खुद का डिजाइन और डांस गॉड गिफ्ट, और पापा से मम्मी से प्रेरणा मिली, सांपो से प्रेरणा मिली, सांपो के साथ पली बड़ी। और ये डांस मेरा साथ ही जन्म, इसका नाम कैसे हुआ, अमेरिका में मुझे गुलाबी नाथ कहते, मैंने कहा मेरा गुलाबी नाथ क्यों कहते हैं, मैं तो लड़की हूँ, नाथ तो हमारे लड़कों के लगते हैं, मर्दों के लगते हैं, मेरे पापा के लगता है नाम नाथ। तो उन्होंने कहा कि भाई सर नेम चाहिए, अंग्रेज से तो कहे सर नेम क्या है सर नेम, मैंने कहा सर नेम क्या होता, हम लोग तो सपेरा है, तो ऐसे करो मैं सांप की जगह नाचती हूँ, तो आप ऐसे करो मेरा नाम सर नेम गुलाबी सपेरा रख, मैं सांप की जगह नाच, तो इसलिए मैंने मेरा खुद का नाम सरनेम रख। बोले इस डांस का नाम क्या है, मैंने कहा डांस का नाम भी सपेरा डांस रख, क्योंकि मैं सांप की जगह नाच रही, तो मेरा इस डांस का नाम सपेरा रखो। और अभी यूनेस्को में जब शामिल हुआ तो किसी ने काल बिलिया डांस लिखवा दिया कि काल बिलिया डांस, हम लोग काल को पकड़ के वश में करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, लेकिन हमारी कोई जात नहीं है काल बिलिया, हम सिर्फ काल को पकड़ के वश में, सांपों को पकड़ते हैं, तो सांप काल हो गए।

0: तो उसको वश में कर, इसलिए उन्होंने काल भी लेना होगा। पर ये डांस मेरा वहाँ शामिल हुआ और इसी तरीके से उसका अमेरिका भी नामकरण हुआ, इसका डांस का भी और मेरे सरनेम का भी।
1: मीरा बेटी, जब आप विदेशों में परफॉर्म करते हैं तो कैसा महसूस होता है? भारत की संस्कृति को विदेशों तक लेके जाना, ये आपने बहुत कमाल किया, तो कैसा महसूस होता है?
0: सबसे पहले मैं 85 में गई थी अमेरिका और उसके बाद मैं लगातार लगी और मैं जाती रही। मैं आज तक 165 कंट्री जा चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाहर जितनी जाऊँ मैं उतनी मेरी कला को बढ़ा। और अभी कोरोना में भी मैंने ऑनलाइन डांस सिखाया है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो मेरे से डांस सीखती हैं। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं घर घर में बुलाऊं, ये डांस मेरे नहीं मर और ये जिंदा रहे। तो बाहर जाती हूँ तो इस डांस को बहुत लोग लाइक करते हैं। आज देख लो, इंडिया में भी हो चाहे विदेश में भी हो, ये डांस नहीं होता कोई फेस्टिवल, कोई पार्टी, कोई शादी ब्याह, कोई मतलब होता ही नहीं। अगर ये डांस नहीं हुआ तो फिर कहते यार सपेरा कालबेला डांस तो वही नहीं, फिर आपने क्या किया। तो वो ये डांस होता तो हर फेस्टिवल पूरा हो जाता है, नहीं तो अधूरा रहता है। ऐसे ही विदेशों में मेरे से यहाँ लड़कियाँ डांस सीख के जाती है, वहाँ से लोग भारत आने के उनको पैसे मिलते हैं और मेरे डांस सीखने के उनको स्पेशली पैसे मिलते हैं कि कलरशिप 6 महीने के कलरशिप पर आते हैं। ये कि हम गुलाबी सपेरा के पास जा रहे हैं उनका डांस सीखने के लिए, तो वहाँ की सरकार उनको पैसे दे के भेजती, अरे वो डांस सीखने जा रहे हो आप। वो 1 महीना डांस सीखती है, मेरे को धन्यवाद बोलती है और पूरे 5 महीने पूरे हिंदुस्तान में घूम के जाती है, कहती है आपका लाख लाख शुक्र कि हमें वहाँ की सरकार, हमारी सरकार हमें पैसे देती है, हम आपका डांस। और वो लड़कियाँ जाके वहाँ डांस सीख, चिली हो, जापान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, हॉलैंड हो, डेनमार्क हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, न्यूजीलैंड हो, ब्राजील तक मैं डांस सीखा गई, कोई सा भी देश है, कौन सा देश है जिसमें मैं नहीं गई।
1: तो कैसा लगता है, भारत से तो बहुत अलग है विदेश, तो कैसा अपनापन आपको मिला वहाँ या कैसा?
0: हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी मतलब डांस को और हमारे संस्कृति को बहुत वो मान सम्मान देते हैं और इतना प्यार से, इतना ध्यान, जैसे अपना यहाँ कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो अगर डांस देख रहे हैं किसी के तो डांस ही देख, इतनी शांति वातावरण का, हमारा एक सितारा भी गिरता है स्टेज पे तो वो भी उसकी भी आवाज आती, तो इतना वो प्यार से देखते हैं और उतनी वो रेस्पेक्ट करते हैं, इतनी वो रिगार्ड करते हैं कि नहीं ये कला है, इसको अपने को देखना है, कितनी मेहनत करके इन्होंने डांस सीखा है। तो वो लोग एक एक चीज पे गौर अपने इंडिया में भी करते हैं, अगर इंडिया में गौर नहीं करते, राजस्थान में गौर नहीं करते तो हम लोग विदेश तक पहुंचते ही नहीं, हम लोग पास तो यहाँ से होके बाहर जाते हैं। लेकिन उनका एक देखने का नजरिया और तरीका एक अलग से है, वो एक कला को सरस्वती माता के रूप में के वो रेस्पेक्ट करते, क्योंकि उनको ये कला देखने को मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ तो अपने ठीक है गली गली में देख लेते हैं कलाकार को, एक राजस्थान की ये कला, लेकिन वहाँ बेचारों के लिए एक स्पेशल होता है कि नहीं अपने को देख वो। इसलिए
1: गुलाबा जी, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि आबू के आसपास के जो गांव है, जो बेटियां आपको सुन रही है खास तौर से, उन्हें आप क्या कहना चाहूंगी?
0: मैं सारी बेटियों को एक ही जवाब देना चाहूंगी, उनको एक मैसेज छोड़ना चाहूंगी, बेटी हो चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो, और उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बेटी हो आप कहीं जाओगे आप भी माँ बनोगे, बहन हो आप भी कहीं जाओगे माँ बनोगे, आपको अपनी बेटियों को बचाना है। करण्या भ्रूण हत्या जो प्रोग्राम चलता है उसको बंद करना है, सिर्फ 2 लोगों को समझना है, माता और पिता को। माता पिता ये सोच ले कि जो भी आ रहा है अपने हिंदुस्तानी या राजस्थानी नागरिक आ रहा है और उसका वेलकम करना है, तो कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगा। वो बच्चा जब आ रहा है आपका तो आप उनका ढंग से वेलकम करें, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, और वो बच्चा कुछ भी बनना चाहता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अगर कुछ बनना चाहती है चाहे वो कलाकार बने चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने चाहे कुछ भी, उसका माता पिता सपोर्ट करे। और उनको मेरे माता पिता पढ़े हुए नहीं थे, वो शहर में रहने वाले नहीं थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन एक बाहर नहीं गए थे, देवी जी ने थोड़ा सा कहा और वो उस चीज को गौर किया और मेरा सपोर्ट किया और मेरे को पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन मेरे माता पिता की वजह से हुआ। तो आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं और उन बेटियों को आगे उनको नया रास्ता दिखा सकते हैं। हर बेटी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको माता पिता आपको सपोर्ट करके आगे लेके जा रहे हैं, आप माता पिता की कदर करें, माता पिता का वो आदर करें, माता पिता की वो इज्जत रखें, माता पिता का वो ठीक रेस्पेक्ट रखें कि जो माता पिता आपको भेज रहा है आप पे हाथ पांव संभाल के आपको चलना है। मेरे माता पिता ने एक ही चीज कही थी, बेटा आप जाओ ये दुनिया में, हम आपके पीछे, लेकिन आपका हाथ पांव संभाल के, दुनिया बहुत टेढ़ी है, आपको इधर उधर नहीं देखना, पीछे दुश्मन है आगे भगवान है, भगवान का हाथ पकड़े सीधे चलते बने और आप चलते रहे, इधर उधर आपके लोग गलत लोग खड़े रहते हैं, आपको कहीं वो अपनी बातों में नहीं लगा, तो आप अपने सीधे चलते जाओ और माता पिता की रेस्पेक्ट करो कि माता पिता ने आपको इस लाइन में डाल दिया, तो उनको कुछ करके दिखाए। मैं सारी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ करके दिखाए, कोई भी हुनर हो, कोई भी कला हो, आप अपने माता पिता का और अपने समाज का और अपने देश का नाम करें और आगे।
1: गुलाबो जी, भारत के लिए क्या सपना देखते हैं आप? देश
0: के लिए मैं एक ही सपना देखती हूँ कि भारत मेरा भारत, वैसे मेरा भारत महान और महान ही रहे, और चार चांद लगे भारत और अच्छा अच्छा काम करे भारत और आगे निकले और सारी दुनिया से हमारा भारत मान है और मान रहेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे सब मिलके और एक दूसरे को मिलके एक एक करके 11 होते और बस इसी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करें और आगे बढ़े।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाबो जी, और हम पुनः धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश का नाम रोशन किया, तालबेलिया नृत्य हमें दी, तो भारत की धरोहर आपने जो है बहुत ऊंची, आपने इसका ऊंचाई प्रदान की, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इसलिए कुमारी जी को और यहाँ पे सबको कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और सब लोगों से अरूबरू करवाया और पद्मश्रीयों को सबको एक साथ बुलवाया, बहुत सारे मेहमान गेस्ट आए उनसे मिले और इतनी पावन धरती पे हम लोग आके इतने भगवान के घर में आके हमें मान सम्मान मिला, इतना बड़ा अवार्ड मिला और इतना सम्मान मिला, उसके लिए परम कुमारी जी की बहुत बहुत बहुत आभारी। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हर बार इसी तरीके से आऊँ, इसी तरीके से उनका प्यार पाऊँ और आशीर्वाद।
1: हम भी बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ आज की मुलाकात हुई, तो हम ये याद भी रखेंगे और जो आपने सिखाया है जो शेयर भी करेंगे हमारे दोस्त जरूर, एक दूसरे के साथ बातिएगा दोस्तों, और रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, अपने पैशन को आगे बढ़ाते रहिए, आपकी बेटियां दिन आपका नाम रोशन जरूर करेंगी, विश्वास रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.3 FM।
2: नमस्कार पुणे, अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है, तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।
3: रक्तदान करें।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता,

0: ऊंचे ऊंचे टीले होते टूटी के।
1: और घास फालूदा होती दीदी तो क्या मजा आता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह,

0: अच्छा सोचो,
1: मैंने
0: सोच के देखो, खेत में उगते टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है?
1: कारण फिर वही कायदा
2: कायदा कायदा आखिर कायदा
3: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है, एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्कार नमस्कार। आओ मनु, कैसी हो?
0: मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है।
1: जरूर करो।
0: आज से हमारी कॉलेज द्वारा आसपास के स्कूल्स को जोड़कर एक नया कैंपेन शुरू हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। उनकी एक छोटी सी वर्कशॉप होती है उसमें।
1: और उसमें क्या होता है?
0: जिसमें उन्हें उनके शरीर के बारे में जरूरी जानकारी दी जाती है और ये बताया जाता है कि अगर उन्हें किसी बड़े व्यक्ति से बात करना, उनके पास जाना या कुछ भी अजीब लगता है तो अपने माता पिता को तुरंत बताएं। ये मुहिम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में है।
1: ओह, ये बात है मनु। बाल यौन शोषण के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। हम डरकर तो नहीं जी सकते, लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: हाँ पुराना स्तंभ जी, आपको पता है मेरे दोस्त की छोटी बहन जो फोर्थ क्लास में पढ़ती है, ये क्लास उसके स्कूल में हुई तो वो रो पड़ी। बाद में पता चला कि उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, मगर उसे ये लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है और मम्मी पापा उसको डांटेंगे। इस डर से वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी।
1: अक्सर ऐसा ही सुनने में आता है मनु, कि बाल यौन शोषण पीड़ित अपने आप को ही जिम्मेवार मान अपनी बात बोल नहीं पाते।

0: उन्हें डराया जाता है कि उनके माता पिता उनकी बात नहीं मानेंगे। मगर दोनों ही जगह अगर बच्चों को सजग किया जाए, अगर माता पिता अपने बच्चों से समय प्रति समय बात करते रहें, उनकी मनोस्थिति जांचते रहें, तो अच्छा होगा। अगर बच्चा किसी विशेष स्थान या व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता, तो उससे जबरदस्ती ना करें, चाहे वो परिवार का कोई अनन्य सदस्य ही क्यों ना हो, बल्कि इसकी वजह जानने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने पुराना स्तंभ जी, हमें इन बातों को करने से झिझकना नहीं चाहिए। अपनी चुप्पी तोड़ना, हमारी चुप्पी ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों को बढ़ावा देती है।
0: मेरी तो हर माँ बाप से यही विनती है कि अपने बच्चों को समझें, उनसे बातें करें।
1: पुराना स्तंभ जी, मैं भी अपने कॉलेज की इस मुहिम में हर स्कूल जाकर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर समझाऊंगी, जैसे आमिर खान जी ने समझाया था सत्यमेव जयते कार्यक्रम के एक एपिसोड में।
0: बहुत अच्छी बात है मनो। चलो अब मैं तुम्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी की आगे की कहानी सुनाता हूँ।
1: सुनाइए ना।

0: केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से लोकमान्य तिलक जहां अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं सुधारक पत्रिका को गोखले ने अपनी लड़ाई का माध्यम बनाया हुआ था।
1: अच्छा।
0: केसरी की अपेक्षा सुधारक का रूप आक्रामक था। सैनिकों द्वारा बलात्कार का शिकार हुई दो महिलाओं ने जब आत्महत्या कर ली तो सुधारक ने भारतीयों को कड़ी भाषा में धिक्कारा था, तुम्हें धिक्कार है जो अपनी माताओं बहनों पर होता हुआ अत्याचार चुप्पी साध कर देख रहे हो। इतने निष्क्रिय भाव से तो पशु भी अत्याचार सहन नहीं करते। इन शब्दों ने भारत में ही नहीं इंग्लैंड के सभ्य समाज में भी खलबली मचा दी थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोखले द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। इस तरह गोखले ने राजनीति को आध्यात्मिकता के ढांचे में ढालने का अनूठा कार्य किया। इस सोसाइटी के सदस्यों को ये सात शपथ ग्रहण करनी होती थी।
1: कौन सी?
0: पहली, वह अपने देश को सर्वोच्च समझेगा और उसकी सेवा में प्राण न्यौछावर कर देगा, देश सेवा में व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखेगा, प्रत्येक भारतवासी को अपना भाई मानेगा, जाति समुदाय का भेद नहीं करेगा, सोसाइटी उसके और उसके परिवार के लिए जो धनराशि देगी वह उसी से संतुष्ट रहेगा तथा अधिक कमाने की ओर ध्यान नहीं देगा, पवित्र जीवन बिताएगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, सोसाइटी का अधिकतम संरक्षण करेगा और ऐसा करते समय सोसाइटी के उद्देश्यों पर पूरा पूरा ध्यान देगा।
1: अच्छा।
0: गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति समझते थे। गोखले ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के बाहर भारत कुछ प्रगति कर सकता है। अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने के दुष्परिणामों की कल्पना करके ही वे अंग्रेजी साम्राज्य के भारी समर्थक बन गए। लॉर्ड हार्डिंग से गोखले ने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब उनके पहुंचने से पूर्व भारतीय नेता उनको लौट आने के लिए तार द्वारा आमंत्रित करेंगे। गरम दल के लोगों ने उन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी और छिपा हुआ राजद्रोही कहा।

0: उन्होंने 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के निर्माण में सहयोग किया। 1912 से 1915 ईस्वी तक गोखले भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु गोखले ने 12 जून 1905 को भारत सेवक समिति की स्थापना की। इस संस्था से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण समाज सेवकों में वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदय नारायण कुंजरू आदि आदि थे। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका तथा सुधारक का संपादन भी किया।
1: अच्छा।
0: गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनके परामर्श पर ही गांधी जी सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व एक वर्ष तक देश में घूमकर स्थिति का अध्ययन करने का निश्चय किया था।
1: अच्छा।
0: साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गोखले ने गांधी जी को आर्थिक सहायता भी दी। गोखले सिर्फ गांधी जी के ही नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे।
1: अच्छा।
0: गांधी जी को अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी।
1: अच्छा।
0: गोखले की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया और सन 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर वह खुद भी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां जारी रंग भेद की निंदा की। जन नेता कहे जाने वाले गोखले नरमपंथी सुधारवादी थे। भाई उन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ ही देश में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ भी आंदोलन चलाए।
1: वाह।
0: वह जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम करते रहे। वायसराय की काउंसिल में रहते हुए गोखले ने किसानों की स्थिति की ओर बार बार ध्यान दिलाया।
1: अच्छा।
0: वे संवैधानिक सुधारों के लिए निरंतर जोर देते रहते थे। मिंटो मार्ले सुधारों का बहुत कुछ श्रेय गोखले के प्रयत्नों को है। नरम विचारों के होते हुए देश के बदलते तेवर से गोखले बिल्कुल अलग नहीं थे।
1: अच्छा।
0: इसलिए बंग भंग के विरोध में आरंभ में बहिष्कार के संबंध में उन्होंने कहा था।
1: क्या कहा था?
0: यदि सहयोग के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाए और देश की लोक चेतना इसके अनुकूल हो बहिष्कार का प्रयोग सर्वथा उचित है। गोपाल कृष्ण गोखले मधुमेह दमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से परेशान रहने लगे और अंततः 19 फरवरी 1915 ईस्वी को मुंबई महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। गोखले ने भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाइटहुड की उपाधि में पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे निम्न जाति के हिंदुओं की शिक्षा और रोजगार में सुधार की मांग कर रहे थे जिससे कि उन्हें आत्मसम्मान और सामाजिक स्तर प्रदान किया जा सके।
1: अच्छा।
0: गोखले ने स्वदेशी का प्रचार करते हुए भारत में औद्योगिकरण का समर्थन किया किंतु वे बायकॉट की नीति के विरुद्ध थे। अपने समझौतावादी स्वभाव के वशीभूत होकर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने बायकॉट के प्रस्ताव का समर्थन किया। गोखले की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने अपने इस राजनीतिक गुरु के बारे में कहा, सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे मापा नहीं जा सकता, लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता, पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है।
1: अरे वाह।
0: तिलक ने गोखले को भारत का हीरा

0: राष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा कहकर कई दफा उनकी सराहना की।
1: अच्छा, बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी थी ये तो पुराना स्तंभ जी।
0: इतने समय से तुम्हें कहानियाँ सुना रहा हूँ, लगता है जैसे पुणे का इतिहास फिर से जी रहा हूँ। वो यादें या कहानियाँ नहीं है, बल्कि मेरे लिए पुणे की मिट्टी के कण कण के रचयिता हैं ये वीर, ये गौरवशाली व्यक्तित्व।
1: आज तो आप काफी इमोशनल हो गए लगता है पुराना स्तंभ जी, लेकिन आपका मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है।
0: शुक्रिया तुम्हारा भी मनु, इतिहास के हर पहलू को इतना गौर से सुनने के लिए।
1: अच्छा, अब मैं चलती हूँ पुराना स्तंभ जी, आपसे जल्द ही मिलूंगी।
0: बाय।

0: प्राध्यापकाचं कार्य केलं आणि पुण्याचे जे वेगवेगळे प्रश्न आहेत ते सुद्धा त्यांनी सखोलपणे त्याचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसचं जे आहे सर, काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून त्यांनी पहिल्यांदा भाषण केलं, काँग्रेसशी संबंध प्रस्थापित झाला आणि त्यांनी गोपाळकृष्ण गोखलेंनी सुधारणा ज्या केल्या त्याच्यामध्ये सुधारकच्या आगरकरांचं जे सुधारक होतं त्याचं इंग्रजी आवृत्तीची जबाबदारी ही नांदर गोखलेंनी काही काळ स्वीकारली. सार्वजनिक सभा, राष्ट्रीय समाचार या वृत्तपत्रातूनही त्यांनी लेखन केले. वृत्तपत्रातील लिखाणाद्वारे ते समाज सुधारणांचा सतत पाठपुरावा करत असायचे. संपूर्ण आयुष्य राजकारणात राहून पण कधीच त्यांनी राजकारण न करता विशुद्ध सार्वजनिक जीवन जगण्याच्या कार्यकर्त्यांपैकी तीच एक गणले जातात.
1: ओके शुभांगीताई, फारच सुंदर तुम्ही गोपालकृष्ण गोखले यांच्याबद्दल माहिती दिली आणि फारच सुंदर त्यांचं वर्णनही तुम्ही केलं.
2: एक्सपर्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं हूं मनु और मेरे साथ साथ आप सुन रहे थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी की कहानी पुराने स्तंभ जी से. आज जो मैंने एक सीख चुनी है अपने लिए इस कहानी से वो ये है कि हमारे कर्म हमें स्वयं भी प्रत्यक्ष करते हैं और हमें कभी भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती. बस कर्म करते रहना है और सच्चाई खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगी. मतलब कि हम कभी कभी अगर कभी कभी खुद को प्रूव करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, ये समझते क्यों नहीं हम राइट हैं, सब लोग हमारी बात मानते क्यों नहीं. लेकिन सच तो ये है दोस्तों, हमारे कर्म खुद ही अपने लिए बोलते हैं. हम जिस बात को सही समझते हैं वो करते रहें, अपने कर्मों द्वारा खुद को प्रत्यक्ष करें. आज कुछ लोग अगर नहीं भी मानते तो कल मान जाएंगे, लेकिन वो कहने से कुछ नहीं होगा बल्कि करने से होगा. खुद को प्रूव करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. वो कहते हैं ना, सूर्य को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो खुद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, खुद सबके सामने आ जाएंगी. भले आज आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे या फिर आपको कोई सक्सेस मिलती है तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे या आपकी क्वालिटीज को छुपाने की कोशिश करे, आपकी अच्छी स्किल्स किसी के सामने ना आने दे. लेकिन दोस्तों ये सब हमेशा नहीं हो सकता. जो जैसा है वो एक ना एक दिन प्रत्यक्ष हो ही जाता है. जैसे कैमरास लगे हो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, असली व्यक्तित्व सबके सामने उभर कर आ ही जाता है. हमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती. हाँ अपनी बात रखनी जरूर होती है, लेकिन इसके अलावा बिल्कुल चिंता मत करिए, बस अपने कैरेक्टर को अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए और देखिए एक ना एक दिन सभी आपको पहचान जरूर जाएंगे. ये चीज मैंने भी सीखी आज और आपने भी सीखी गोपाल कृष्ण गोखले जी की कहानी से. मैं करती हूँ एक बार फिर से पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया और लेती हूँ आपसे इजाजत ताकि फिर मिल सके हम एक नई कहानी के साथ. आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें जीवन।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहां यहां यहां यहां ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे लगता है उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहां हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो यू सी व्हेन एवर दैट, नो इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
0: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, वट एवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीजें हमें जीवन में मिली हैं, लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती? See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना है, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी
0: अगर ये नहीं हुआ तो।
1: अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी

0: होगे। तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता? डर में। तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा? नेक्स्ट वाले।
1: तो एंटिसिपेशन में, डर में, डर में होगा।
0: ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीते?
1: और वो पल तो निकलते ही गए। मैंने सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये होगा।
0: देखो, अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते। एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जो वरी करते हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं?
1: फ्यूचर
0: के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये हुआ तो एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती हैं उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते। हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है। चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा। तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है, वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते। और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के
1: डरते
0: रहते हैं। सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर इन माय प्रेजेंट मोमेंट एंड आई क्रिएट पेन। सो माय एवरी मोमेंट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट, माय एवरी मोमेंट इज पासिंग इन पेन, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ।
1: सपोज आई एम वेरी पुअर, यू नो, मेरे घर में सब क्योस है, मेरे जीवन में क्राइसिस आया हुआ है जिसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा। दैट इज द टाइम वेन आई, यू नो, अपना काम तो कर्म तो करता ही रहूंगा, लेकिन यू नो यू कीप ऑन एंटिसिपेटिंग योर फ्यूचर एंड वेयर यू सी दैट यू नो यू विल गेट मनी, ये चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, होता जाएगा। एटलीस्ट इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस फॉर दैट टाइम, बिकॉज अभी जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा।
0: इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनैलिटी। कि आप अभी यहां है, लेकिन यहां आप टुमोरो में है, यू ऑलरेडी गॉन टुमोरो, एंड यू विल फाइंड पीपल हु लव टू बी इन देयर टुमोरो। जिसको हम कहेंगे ये तो खाबों में ही रहते हैं अपने ज्यादा दिन। क्यों वो खाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है, दे आर इन पेन। सी व्हेन विल आई एस्केप फ्रॉम टुडे एंड लिव इन द टुमोरो?
1: आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली, यू नो, वी डोंट वांट टू लिव
0: इन प्रेजेंट। नीड्स टू चेक, हर एक अपना अपना
1: देखेगा। व्हाई वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट?
0: क्योंकि अभी मेरे अंदर दर्द है, मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ इससे, पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ
1: कहीं पे भी? हाँ, किसी
0: वी टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ यू नो एस्केपिंग दीज थॉट्स ऑफ पेन। जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलीडे पर जाना है,
1: मूवी,
0: वो ये क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली थॉट्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट चलो घंटे के लिए भी, एटलीस्ट एक घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूं, मैं कुछ और देखूं, आई विल फील गुड। जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचती गई, एंड आई क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। तो 15 मिनट क्या हुआ? आई एस्केप्ड, आई रैन अवे फ्रॉम माई प्रेजेंट थॉट्स ऑफ पेन एंड आई लिव्ड इन द फ्यूचर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर। आई फेल्ट नाइस आफ्टर दैट।
1: I come back refreshed, but can I? Can't I?
0: I don't come
1: more?
0: Back refreshed. I come back even more in pain. क्योंकि ऐसे
1: ये तो अभी बचा है यहाँ पे,
0: अभी तो नहीं है ना। लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया।
1: अच्छा,
0: लेकिन अभी तो नहीं है ना वो
1: अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस, यू नो, कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती?
0: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ। अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस, बीमारी को ठीक करते हैं। खाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा? और अगर आज उसको ठीक नहीं किया, तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा? अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। सी, हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है। तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी, एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियां कल बहुत अच्छी हो जाएंगी, जो आपने

0: से कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है. हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए. वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माई नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain, then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say, if today is in pain and aaj usko address nahi kiya, to tomorrow will automatically still be in pain. Aap kitna bhi sochte jao ki bahut acha ho jayega, bahar acha ho jayega, lekin yahan to phir bhi dard create hoga.
1: To ye kaha jata hai ki sapno mein rehna chahiye ya sapne lene to chahiye kam se kam. So again, I just want to know ki whether it's a right personality, right way of looking.
0: Escaping from the present. What is, you know, fantasizing bahut zyada bhavishya ke bare mein, escaping from the present. So how far would that be beneficial for me? Again, main energy, main apni wo thought power use kar raha hu kuch aisi cheez ko create karne mein jo ki mere control mein
1: hai hi nahi.
0: Mere control mein sirf ye wala pal hai aur is pal mein meri sthiti, ye mere control mein hai, iske ilawa mere control mein कुछ भी नहीं.
1: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो, क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
0: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
1: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
0: खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी. लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी, तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
1: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका
0: हो. कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी, अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. समवन वेरी ब्यूटिफुली सेड एट द एंडिंग फेज ऑफ देयर, यू नो, दिस पर्टिक्युलर बर्थ. They said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. Hum puri jeevan bitate hain un baaton ke bare mein soch ke, chinta karke, jo actually hui nahi. Jab wo hogi tab dekhenge na. Why do I create it beforehand? To fir hum kehte, main isliye chinta karta hu because I care. I worry because I care. To humne worry aur care ko jod diya. Care to pyar hai, sneh ki shakti hai, aur worry फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
1: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
0: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा, अचीवमेंट, अचीव करना है. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है, उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक स्टिमुलेंट है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी recognition, औरों का approval, औरों से recognition. Sometimes it could be just the realization, हो गया, ये मेरे से ये भी हो गया. या sometimes it is काम तो करते ही जाना है क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो, टिक, चेकलिस्ट होती जाती है. ये हुआ, अचीव किया. जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया. ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, पर ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी एवरी
1: टाइम,
0: एवरी टाइम, नॉट फियर में या इनसिक्योरिटी में या एंटिसिपेशन में, नेक्स्ट क्या होगा, या ये भी करना है क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी. तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट. उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है. अब ऐसे लोगों की

0: जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, दे अचीव अलॉट क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है. लेकिन खुशी दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स दैट दे नो बेस्ट कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट वो काफी
1: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब. वंडरफुल. आई थिंक
0: कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो, क्योंकि वो एक संस्कार बन गया.
1: जब वो नहीं मिल रहा होता तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं.
0: और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, चाहे वो क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स. एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आर डिजायर्स. एवरीवन, वी ऑल से कि छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है. आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा. आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी. आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल. आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम. और टाइम मिल जाए ना, मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती, और कई बार जो पूरे भी होती जाती वो हमारी डिजायर, लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
1: और बड़ी होती
0: जाती, और भी लंबी होती जाती. क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सटल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, आई दैट सेल्फ विल बिकम कम्प्लीट. यू नो, व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू, आई विल बिकम कम्प्लीट, आई विल बिकम कंटेंटेड. राजयोग हमें ये सिखाता, आई द सेल्फ
1: इज ऑलरेडी
0: कैन नॉट बी कम्प्लीट बाय एनीथिंग आउटसाइड, आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं कम्प्लीट
1: क्यों नहीं करते. यू नो, हम फील कम्प्लीट क्यों नहीं करते अगर हम हैं, यू नो, लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. तो हमें ये जो अर्च है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है?
0: बिलीफ सिस्टम. क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है? बिलीफ पर. अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कम्प्लीट, so then I will feel like that only, and I'll keep looking for.
1: Let's try to change that and say that I'm already full.
0: I'm complete. I'm full. I'm beautiful.
1: But how will I create that belief system now?
0: I create
1: by reinforcing it now.
0: I create. अभी हमने create कर दिया already. अब इसको क्या करना है? इस belief system को जीवन की यात्रा में लेके चलना है. जैसे ही कोई thought आए, ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा. Immediately stop and tell yourself.
1: तो अच्छा
0: तो है, तो ऑलरेडी अच्छा, आई एम ऑलरेडी फीलिंग नाइस. हाँ, ये हो वेरी गुड, लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है. एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड. क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार.
1: लेकिन जब हो रहा होता है तब तो वी फील, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट. ओ, वी हैव क्रिएटेड द थॉट कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं.
0: लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट हो गया था, अब ये होगा देन आई विल फील गुड. सी, जब से ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी. तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें, देन आई विल फील गुड. तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, आई फील वेरी गुड. लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, दैट इज समथिंग I don't.
1: I expected then,
0: and
1: you know.
0: And then it's not only on you. Now I expect कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे. How far is that in my control?
1: एक बार मेरा एक belief system ये reinforce हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं feel good करूंगी, वही हुआ, तो अब हर जगह यही चले.
0: Absolutely.
1: तो again I think we can reverse it. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, how to do that. लेकिन उससे पहले thought power की जब बात होती है कि whatever you want in life, you know, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो. मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है. आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट.

0: is meant to be enjoyed. हमने उसको बहुत serious, you know, serious वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या? एक एक पल को जीते जाएं प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें. आज में भी हर पल को देखते जाएं तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है.
1: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी, सपोज आज मैं ठीक हूँ लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ. यू नो, कई बार क्या होता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को.
0: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं.
1: अब क्या होगा.
0: एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी. ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है? हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म. क्यों? सारी एनर्जी किसमें हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
1: हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है. हर बार कोई सिचुएशन आते हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. शिवानी, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अब इतनी विद्रामा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि किस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नीयत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है?

0: सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजने तो किसके फायदे के लिए भेजने? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. जिंदगी जीते जीते सचमुच एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां हीलिंग की जरूरत थी, जहां मन करता था कि किसी न किसी तरह जो मुश्किलें आ रही हैं वो ठीक हो जाएं, और उसका प्रोसेस ये समझ में आया, मेडिटेशन या ध्यान, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई, और फिर ये भी तलाशने की कोशिश की कि क्या है ऐसी बात, क्यों हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। जब एक बार उन कारणों को जान लिया तो फिर उन्हें दूर करना भी अपने ही हाथ में था। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर तसल्ली से और अच्छी तरह से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन कैसे की जाए, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। बिल्कुल क्लियर है, अब बहुत से हमारे दर्शक जो हैं कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट हो रहा है काफी टाइम से, ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है जब समझ ली मेडिटेशन का तो उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान है कि लगता ही नहीं है ना। कई बार वही थॉट्स वेवर होते जाते हैं, मुश्किलें आती जाती हैं। एक बार आज इस पूरी कड़ी में हम ये साथ मिलकर तलाशते हैं कि कैसे करें ध्यान।
1: सबसे पहले शायद हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे मेडिटेशन की आवश्यकता है, एंड रियली पुट इट डाउन कि कौन सी चीज आप अपने अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं जिसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक उसकी तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है या जो एंथुजियाज्म है वो बिल्डअप नहीं होगा। हम दो दिन ट्राई करेंगे फिर गिव अप कर देंगे, कोशिश करेंगे लेकिन और ही थॉट्स में उलझे रहेंगे क्योंकि हम क्लियर होकर नहीं बैठे हैं तो कि हमें क्या इसकी जरूरत है, और दूसरा इसको करने से मुझे क्या चाहिए। ड्यूरिंग द डे आई कैन सी कि मेरे वूंड्स कहां पर हैं, कौन सी चीजें जो मुझे थोड़ा सा दर्द थोड़ा सा दुख अनुभव कराती हैं, औरों की नहीं। अगेन इम्पोर्टेंट इट्स हियर, तो ये नहीं देखें कि ये मुझे दर्द, लेकिन मेरे अंदर की कौन से संस्कार हैं जो मुझे बार बार तकलीफ देते हैं, जिनको मैं कोशिश करती हूँ फिनिश करने के लिए तो वो थोड़े दिन के लिए फिनिश हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से फिर इमर्ज हो जाते हैं।

0: तो कौन से ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर देती है, वो भी जड़ से, यू नो, मूल एकदम रूट से जैसे उसको उखेड़ देगी। एंड जो चीजें आज तक हम समझते आए कि ये मेरी आदत है, ये नहीं चेंज हो सकते, वो चेंज हो जाती है।
1: हो ये रहा है एक्चुअली कि समझ में तो आ रहा है कि यही चेंज कर, क्योंकि जैसे ही ज्ञान हमें मिला है तो ये समझ में आ गया कि ये चेंज करने ही पड़ेंगे और चेंज मैं खुद को ही कर सकता हूँ।
0: तो वो एक बार क्लियर आ गया कि मुझे चेंज करना है एंड दिस इज द टेक्निक जो इसको जड़ से चेंज कर सकता है। नाउ व्हेन आई टेक आउट टाइम टू सिट, आई विल रियलाइज कि मेरा वो टाइम कितना वैल्यूबल है। एक तो हम वी आर सो शॉर्ट ऑफ टाइम सारा दिन में, तो अगर मैंने 15 मिनट निकाले हैं या आधा घंटा निकाला है, तो मेरा वो आधा घंटा कहीं ऐसा न हो कि वो ही ऑर्डिनरी थॉट्स में चला जाए जो वैसे भी सारा दिन चलते हैं। इट्स लाइक आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माई सेल्फ एंड विद गॉड फॉर हाफ एन आवर, आई डोंट हैव मोर टाइम देन दैट, एंड देन आई डिडंट मेक यूज ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो ये तो अपने साथ बहुत चीटिंग हो गई। तो जब बैठते हैं करने, तो सबसे पहले बैठने से पहले जो अपनी मेंटल प्रेपरेशन होती है, या कहीं रात को सोने से पहले जो अपनी मेंटल प्रेपरेशन होगी, टू टेल माई सेल्फ कि कल सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है
1: और क्या डिस्कस करना है।
0: जैसे अगर किसी बड़े व्यक्ति से अपॉइंटमेंट हो तो हम कभी लेट नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे एक बात याद आती, कुछ दिन पहले एक बहन ने फोन किया बैंगलोर से और वो कहती मुझे बात करनी है एंड आई वाज इन समथिंग एल्स। तो मैंने कहा बहन बाद में बात करते हैं, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। कहती मुझे सिर्फ 5 मिनट दो बस। आई सेड चलो 5 मिनट। शी टुक दोस 5 मिनट्स एंड उसने 5 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं लिया। 5 मिनट में उसने अपनी 4 प्रॉब्लम्स पूछ ली। शी वॉज सो फोकस्ड, शी सेड मेरी ये एक प्रॉब्लम है, इसका आप आंसर बताओ, एकदम शॉर्ट में बताओ, ये फिनिश हुआ। शी डिड नॉट गो अबाउट अच्छा ये ऐसे ऐसे। दैट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। आई सेड इसको 5 मिनट मिले थे एंड शी मेड द मोस्ट ऑफ दोज 5 मिनट्स। शी न्यू कि उसके पास 6ठा मिनट नहीं है। शी डिड इट सो वेल। यही मुझे करना है कि मेरे को वो 15 मिनट मिले अपने साथ और परमात्मा के साथ, और मैं वो 15 मिनट वेस्ट कर देती हूँ। ऑफिस में ये हो गया, इसने ये कर दिया, आज इससे वो बात करनी है, 15 मिनट खत्म।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं हमने प्रिपेयर नहीं किया होता। दैट्स वेरी ट्रू।
0: टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम रात को पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल सुबह जो टाइम भी हम अपने लिए फिक्स करते, जैसे हम अमृत वेलक करते 4 बजे, लेकिन हर एक अपनी पर्सनल रूटीन के हिसाब से, लेकिन रिमाइंड योर सेल्फ कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट एंड मेक श्योर कि हम उस अपॉइंटमेंट के लिए टाइम पे पहुंचते हैं। क्योंकि हम जितनी प्रायोरिटी उस चीज को देंगे, अगर वो हमारे लिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, दैट मीन्स मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो उससे जो प्राप्ति मुझे मिलनी है वो भी नहीं होगी, क्योंकि मैं कभी करूंगी कभी नहीं, कभी 5 दिन बीच में बीत जाएंगे, कभी 10 बजे टाइम मिला तब किया, कभी 6 बजे मिला तब किया। तो इट्स लाइक क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज की फिर मेरे लिए। तो और इसलिए अगर इम्पोर्टेंस समझ कर नहीं बैठे तो बैठने के बाद भी इम्पोर्टेंस
1: समझ में नहीं आती।
0: तो फिक्स योर अपॉइंटमेंट एंड फिक्स द एजेंडा फॉर द अपॉइंटमेंट कि कल मुझे किस चीज पर वर्क करना है, मुझे परमात्मा से कौन सी शक्ति लेनी है, मुझे क्या चाहिए कल सारा दिन के लिए। और हम मोस्टली क्या करते हैं कि रात को कुछ न कुछ लिख कर सोते हैं कि हमारे क्या, मेरी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आ रही है या कौन सा संस्कार है जो मुझे तकलीफ देता है, सो दैट आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई सिट ऑन इट नेक्स्ट मॉर्निंग। और दूसरा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, फिक्स्ड प्लेस, एक स्थान अपने घर में उसको बनाए जो आप हमेशा उसी जगह पर बैठे एंड प्रेफरेबली उसी टाइम पर बैठे। और दूसरा, जब हम बैठे, जैसे कोई भी गेम हम खेलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे मेडिटेशन करने के लिए भी हमें अपने अंदर के लिए माइंड को वर्क करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस प्रोसेस में अभी जो मैं करने जा रही हूँ, कुछ एक थॉट्स बीच में आएंगे जो मुझे तंग करेंगे, आई नो दैट बिकॉज मैंने कितनी बार खेला है और वो बार बार आती हैं। तो मुझे पहले ही इधर बताना पड़ेगा द रूल ऑफ द गेम, दिस एंड दिस एंड दिस इज नॉट अलाउड। सो व्हाट इज नॉट अलाउड, चिंता, चिंता ये अलाउड नहीं है। कल सारा दिन में क्या हुआ इसके बारे में सोचना, ये अलाउड नहीं है। किसी और के बारे में बैठकर चिंतन करना, जजमेंट पास करना या क्रिटिसाइज करना, ये अलाउड नहीं है। इस समय

0: अगले आधे घंटे के लिए यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो अगर कोई थॉट्स बीच में आते भी हैं, डू नॉट इंगेज, उनके साथ ही बैठकर उनमें उलझ नहीं जाए। एंड थर्ड इज नाउ प्रिपेयरिंग माई स्टेज। Before I start the meditation, I have to prepare my stage, and the stage is of a detached observer. मुझे साक्षी दृष्टा, जो आज तक हम देखते आए कि हमें साक्षी होकर हर चीज देखना है, वो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। साक्षी मुझे दो चीजों से होना है, एक जो बाहर हो रहा है उनसे साक्षी होना, और एक जो अंदर होना है।
1: So I have to see, I have to watch me. ये जो बैठी हूँ मैं ध्यान में, वो भी देखना है।
0: सबसे पहले उसके लिए हम बाहर वाले वर्ल्ड से कैसे साक्षी होंगे, कि आई लुक एट माई सेल्फ, कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, जो हम आज दिन तक भी देखते हैं कि ये सृष्टि नाटक रंगमंच है। एंड लुक एट माई सेल्फ सिटिंग इन द ऑडियंस, मैं ऑडियंस में हूँ, बाकी सब लोग स्टेज पर है। एंड बिल्कुल आप एक सेकेंड के लिए उस सीन को विजुअलाइज करके देखें कि आपके जितने भी परिचित लोग हैं, जिनके साथ आपको सारा दिन इंटरैक्ट करना पड़ता है, आप ऑडियंस में हैं और वो स्टेज पे हैं। एंड जस्ट लुक एट देम परफॉर्मिंग, कि वो स्टेज पे आ रहे हैं, स्टेज पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्टेज से जा रहे हैं, एंड हम उनको बहुत प्यार से सिर्फ ऑडियंस में बैठकर देख रहे हैं। हर एक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है,
1: परफेक्ट। द मोमेंट वी एक्चुअली बिकम एन ऑडियंस, वी रियलाइज कि इनका यही पार्ट था, चाहे वो नेगेटिव ही लग रहा है उस वक्त, क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा थे तो इसलिए वो नेगेटिव थे।
0: जब हम वहां होते हैं तो हम बहुत उलझ जाते हैं और हम उनके पार्ट पर क्रिटिसिज्म या जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम यहां से बैठकर हर एक का पार्ट देखते हैं, तो आप देखो कभी भी प्ले देखने जाएं या मूवी देखने जाएं, तो उसमें तो हर तरह के पार्ट होते हैं, बट वी फील के हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, दैट मेक्स द मूवी इंटरेस्टिंग। अगर उस मूवी में सब लोग परफेक्ट वाला रोल प्ले करें तो वो मूवी का तो मजा ही नहीं है। तो जब हम ऑडियंस में बैठकर देखते हैं, हमें वो मूवी कितनी अच्छी लगती है। तो यही अगर हम अपने जीवन में भी ऑडियंस में बैठकर देखें या ऐसे होकर देखें, एवरीबॉडी इज प्लेइंग द पार्ट, एंड यू नो कॉन्शियसली वो थॉट क्रिएट करें कि हर एक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है
1: वो परफेक्ट कर रहा है,
0: उसको वो ही रोल मिला है।
1: एक रियलाइजेशन हो जाता है कि जस्ट ए पार्ट, आत्मा तो हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा तो इतनी सुंदर है, बट बिकॉज वी आर दे आर परफॉर्मिंग, वी डोंट स्टार्ट हेटिंग द विलन।
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट हेट द विलन, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द एक्टर इज डिफरेंट एंड द रोल इज डिफरेंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। अब सोल कॉन्शियसनेस हो तो ये समझ में आ जाए आत्मा एक्टर है और रोल वो है जो इस समय स्टेज पर प्ले कर रही है। और एक्टर कैसा है, एक्टर तो ब्यूटीफुल है, एक्टर प्योर है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, लेकिन हमने एक्टर को रोल के साथ मिक्स कर दिया तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो उनका रोल है अभी के लिए वो जो कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट देन वी कैन एक्चुअली सी आवरसेल्व्स आल्सो, आई कैन एक्चुअली विजुलाइज दैट।
0: सो वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग एज वी आर। जो एक्सेप्टेंस की बात है वो यहां से बैठकर एक्सेप्ट करना इजी है, उलझे जब होते हैं उसके अंदर तो एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, वी कैन रियली प्रिपेयर दिस, क्योंकि ये प्रेपरेशन हमें सारा दिन में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स हर एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, एंड वो फिर सारा दिन में हमारे ऊपर वर्क करेगी। तो स्टेज पर एक्टर्स को देखें एंड गिव योर सेल्फ द थॉट कि हर एक जैसा कर रहा है, He's doing his part very, very well. किसी को भी चेंज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को बताना होगा। इनमें से किसी को भी चेंज की जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा, जब हम साक्षी होकर देखेंगे तो हमें भी उनका पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। क्योंकि आपने जजमेंट करना बंद कर दिया और उनको समझना शुरू कर दिया। जब यहाँ होते हैं प्ले में तो जजमेंटल बन जाते हैं, और जब साक्षी होकर देखते हैं तो एम्पथी आ जाती है, समझ में आता है कि वाई आर दे डूइंग वॉट दे आर डूइंग, वाई आर दे सेइंग वॉट दे आर सेइंग। तो उससे क्या होगा, जब मैं अपनी माइंड की प्रेपरेशन उस तरह कर लू तो सारा दिन में वो मुझे अफेक्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और वो जैसा कर रहे हैं ठीक।
1: इनफैक्ट एवरी टाइम वील इंटरेक्ट, कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया, आई थिंक द ड्रामा कैन कम बैक टू अस।
0: एक बार मैंने आउटर वर्ल्ड से डिटैच हो दिया, अब मुझे इनर वर्ल्ड से डिटैच होना बहुत ईजी है। अब अंदर भी एक स्टेज है, मैं उस ऑडियंस में बैठा हूँ एंड जो अब जो एक्टर्स हैं वो हमें थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत सारे आते हैं, यहाँ रहते हैं, जाते हैं, इतने सारे आ जा रहे हैं. आई हैव टू डिटैच एंड लुक एट देम. ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक थॉट जो आए आई गेट एंटैंगल्ड इन इट. तो डिटैच, तो डिटैच होने से क्या होगा, जैसे औरों से डिटैच होने से हम उनको समझ पा रहे थे, अंदर डिटैच होने से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे. एंड व्हेन आई डिटैच आई अंडरस्टैंड कि मैं ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं हूँ. आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस. आई एम डिफरेंट, दीज आर ऑल माई क्रिएशन, सो दे आर इन
1: माई हैंड. दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट टाइम्स वी से दे कम, यू नो, आते जाते हैं विचार, क्या करें उनका, विचार आते जाते हैं.
0: इसलिए साक्षी होकर माइंड की स्क्रीन को देखें एंड वॉच आ रहा है, उसे डिटैच होकर उसको देखें, इट विल पास, वो चला जाएगा. इसको भी कुछ एक मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना है. जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार बहुत कुछ निकल आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है, जैसे वो कबर्ड था जिसको हमने साफ करना है,
1: बंद के थे
0: लेकिन बहुत सारा जंक भरा हुआ है. और जब क्या होता है, जब ऊपर ऊपर का सामान हटाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से तो पता नहीं क्या कुछ नहीं बाहर गिराता. तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन जब करते हैं तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, इम्प्योर, वेरी इम्प्योर, वेरी नेगेटिव, जो वैसे कभी नहीं आए, मतलब ये तो क्या हो रहा है. तो मेडिटेशन इज हीलिंग. जैसे हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो जो बीमारी है वो एक बार उछल खाती है, तो वो जो बीमारी है वो हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं. अभी तक हम उसको सप्रेस कर रहे थे, गुस्सा नहीं करना, बस उसका कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो नहीं, तो उसको सप्रेस कर दिया तो बीमारी अंदर ही रह गई. आज नहीं तो 10 दिन बाद गुस्सा आ जाता था. लेकिन होलिस्टिक हीलिंग मीन्स उस बीमारी को अंदर से निकालना. तो जब हम माइंड को साइलेंट करना शुरू करते हैं बहुत तरह के थॉट्स आएंगे. आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती है, दैट्स ओके. बट अगर आती है तो डरना नहीं है कि ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो कुछ हमारे सबकॉन्शियस में से निकलता, दैट्स अ लॉट टू डू विद दिस बर्थ, बट देन दैट्स अ लॉट टू डू विद एवरीथिंग दैट्स स्टोर्ड हियर, बिकॉज सारे जन्मों का सब कुछ स्टोर किया हुआ है. तो वो सारा निकलेगा और हम जो संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं वो सारे रूट से संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं. तो वो अगर निकलता है, डोंट वरी, लेट इट कम, डोंट गेट स्केयर, इट विल पास अवे, प्रोवाइडेड आई डोंट गेट एंटैंगल्ड.
1: या हियर अनदर यू नो कॉन्फ्लिक्ट विच कैन कम इज इफ आई एम द क्रिएटर ऑफ द थॉट्स, देन दोज नेगेटिव थॉट्स जो कि बहुत आई कांट इवन इमेजिन कि वो मैं थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, दैट कैन बी वेरी डिप्रेसिंग एंड गिल्ट में आ जाते हो आपकी, ये मैं ही क्रिएट कर रही हूँ ये थॉट्स जो आ रहे हैं इससे,
0: ये मैंने ही क्रिएट किए हुए. लेकिन वंडरफुल बात यह है कि मैं ये नहीं हूँ. लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है. लेट से कि ये साड़ी मैंने पहनी और मैंने ही इसको मैला कर दिया, तो वो थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैंने ही मैला कर दिया अपने कपड़े को. लेकिन फिर भी मैं मैली नहीं हूँ, मेरी साड़ी मैली हो गई है, वो साफ हो सकती है. तो मैंने इम्प्योर थॉट्स क्रिएट किए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स एंड जो हमारे संस्कार बने हैं उसी में तो थॉट्स क्रिएट होते हैं ना. तो मैंने क्रिएट किए हैं लेकिन वो मैं नहीं हूँ. यू नो कई बार क्या हो जाता है कि जब इम्प्योर थॉट्स निकलते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग आई एम डर्टी, यू नो, हाउ कुड आई थिंक लाइक दिस, मैं इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ, यू नो, एंड दैट टेक्स अ पर्सन एब्सोल्यूटली इन टू गिल्ट एंड दे गो मैं ही गंदी हूँ. तो वो नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ये मैंने क्रिएट किया अज्ञानवश, आई कैन नाउ चेंज इट. तो लेट दोज थॉट्स पास एंड वंस दे हैव ऑल पास्ड अवे आई विल कम टू द सेंटर, आई विल कम टू हु आई एम, मैं कौन हूँ. और उस स्थिति में हम जाके स्थित हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं द बीज, द सीड स्टेज, कि मैं कौन हूँ. क्योंकि हमने शरीर और शरीर से बाहर के लोगों से भी डिटैच हो गए, फिर अंदर अंदर की थॉट से भी डिटैच हो गए, तो अब बचा कौन, अब सिर्फ मैं कौन, वो कॉन्शियंट एनर्जी, मैं वो आत्मा हूँ जो यहाँ बैठी हूँ. एंड देन आई कैन सी माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ, जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट. नाउ अगेन जब हम बी से सी पॉइंट ऑफ लाइट, डोंट ट्राई एंड लुक, यू नो सम पीपल से आई कांट सी द लाइट, यू डोंट हैव टू सी इट विद दिस, बट उसका एक इमेज तो आप अपने सामने क्रिएट करेंगे ताकि कोई और इमेजेस नहीं आते जाएंगे।

0: आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम दैट कॉन्शियंट बींग, इस स्थिति में कुछ एक मिनट हम रहते हैं, ताकि जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति हमारी बहुत अच्छी अर्ली मॉर्निंग में बनती जाती, और उसमें हम अपनी कोई भी एक ओरिजिनल संस्कार को ले लें। जैसे अभी हम पीस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बिकॉज अब सारे डिस्टर्बेंस, सारे नेगेटिव वेस्ट खत्म हो गई, तो आई विल बी एबल टू एक्चुअली फील दैट। जो बात आ रही थी, अभी तक क्या हो रहा था, हम थॉट क्रिएट कर रहे थे, इंटेलेक्ट उसका पिक्चर भी बना रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा,
1: फील नहीं हो पा रहा था,
0: फील नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने पहले वाली क्लेंजिंग नहीं की सारी। तो अब जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा और तब मैं ये थॉट क्रिएट करूंगी, आई विल बी एबल टू एक्चुअली फील व्हाट इज पीस। क्योंकि पीस है क्या? पीस वो स्थिति है जब कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है, दैट्स ऑल, आई एम एब्सोल्युटली एट रेस्ट। तो वो थॉट क्रिएट करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एंड आई कैन एक्चुअली फील वाइब्रेशंस, एनर्जी। तो बिकॉज एवरी थॉट आई क्रिएट इज एनर्जी दैट विल गो इनटू द एनवायरमेंट। तो वो थॉट सिर्फ मेरे तक न रहकर हर जगह फैलेंगे, चारों तरफ जाएंगे, मेरे घर का वायुमंडल बनाएंगे, और घर में मेरे जितने लोग हैं उन तक भी वो सारे थॉट्स पहुंचेंगे। सो दैट्स व्हाई दीज थॉट्स क्रिएटेड इन द मॉर्निंग आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज माय फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को देखना। तो इसको ही करने में अगर हम रियली विधि पूर्वक करते हैं, तो शुरू शुरू में 10-15 मिनट्स लग जाएगा करने में। यू नो, एक है कि हम बस बैठे और कहा मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एंड देन आई स्टार्ट ऑफ, लेकिन वो होता नहीं है। क्योंकि जो नीचे का सारा नॉइज है वो हमें बहुत जल्दी वापस नीचे खींच लेता है। तो इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, ये ग्राउंड वर्क है। ये ग्राउंड वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता नहीं बस मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं और परमात्मा के पास पहुंच जाऊं, नहीं, ये ग्राउंड वर्क अगर हो जाएगा तो फिर हम जितनी देर के लिए भी वहां ठहरना चाहे हम ठहर सकेंगे, क्योंकि हम अपने पीछे के सब चीजों को समेट कर आए हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे पुल करेगी उस तरफ। तो इस पर समय दे, यू नो, डोंट बी इन अ हरी टू मूव फॉरवर्ड। एंड फिर एक बार सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आ गए, फिर मैं आत्मा यहाँ से अपने इस नाटक रंगमन से निकलकर अपने घर चलती हूँ परम धाम में, विच इज गोल्डन रेड लाइट जैसे हम देखते, और सारी आत्माएं वहां पर हैं, और मैं आत्मा जाकर परमात्मा के पास बैठ जाती हूँ। मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि आई एम गोइंग देयर टू मीट गॉड, आई एम गोइंग देयर टू मीट माई फादर एंड माई फ्रेंड। तो मैं आत्मा परम धाम में पहुंचती हूँ, तो हम परमात्मा निराकार, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते, हम उनके पास जाकर बैठ जाते। वो भी मेरी तरह एक आत्मा है, लेकिन ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव। मैं उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ, तो उनसे जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली मुझ पर फ्लो करती है। कई बार हम कहते हैं क्या हमें भगवान से शांति मांगनी है, यू नो, कि शिव बाबा मुझे शांति चाहिए। नो, एक, क्योंकि वो मेरा पिता है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए। दूसरा, जो कुछ उसका है
1: मेरा है,
0: वो है ही मेरा। और तीसरा, जब एक हाई सोर्स ऑफ एनर्जी के सामने हम जाकर बैठते तो हमें उससे एनर्जी लेनी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास पहुंच जाती है। इट्स लाइक समुद्र के किनारे जाकर बैठे और शीतलता आनी चाहिए, मांगना नहीं पड़ेगा, वो ठंडक ऑटोमेटिकली महसूस होती है। तो उस स्थिति में तो फिर हम जितना देर बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जो बात करना चाहे वो भी करें, एंड फिर बातों से भी
1: भरे चले जाए।
0: जैसे कि अब कुछ बात करने जैसा नहीं रहा, बस हम परमात्मा के पास बैठ जाते हैं और वो सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भर दी जाती, और फिर वो भरपूर होकर हम वापस यहाँ पर आकर अपने स्थान पर बैठ जाते। अब जब हम एक बार यहाँ आकर बैठ जाते तो वो एक और छोटी गलती जो हम करते हैं कि आते जैसे ही भर कर नीचे आते तो तुरंत से उठ जाते हैं, एंड यू नो आई तुरंत I immediately go into activity. Nahin, I have just filled myself and come. I need to experience that here for a few minutes. तो जब हम परमधाम की यात्रा कर नीचे वापस आते हैं, कुछ क्षणों के लिए अभी बैठे रहे, तो एक बार जब यहाँ आते तो फिर उस टाइम कुछ क्षणों के लिए वो जो ड्रामा था उसको फिर से अपने सामने ले आइए, वही एक्टर्स, वही सब लोग।

0: अब उनको हम उस स्थिति में से देख रहे हैं. फ्रॉम दैट कॉन्शियसनेस ऑफ माई पीस आई एम लुकिंग एट ऑल ऑफ देम. तो वो सारे लोग मुझे अलग दिखाई देंगे. यू नो आई विल नाउ, जो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा था जजमेंट नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, अब वो नेचुरल हो जाएगा बिकॉज आई एम वेरी सेंटर्ड, आई एम वेरी फुल. तो उस स्थिति में एक बार उस ड्रामा को फिर से देखें और उस शांति की वाइब्रेशंस जैसे कि हम वो सारे एक्टर्स को दे रहे हैं, एंड फिर एक क्षण के लिए उस ड्रामा को फिर से छोड़ दीजिए एंड गो बैक टू योर स्टेज. कि आई एम अ पीसफुल सोल. ये हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि सारा दिन में ये होगा कि वो ड्रामा सामने चल रहा है, एक्टर्स बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए मुझे एक मिनट में वापस उस स्थिति में जाना है कि आई एम अ पीसफुल सोल.
1: उस कॉन्शियसनेस में रहना है दैट हू एम आई.
0: मतलब रहना भी उधर ही है ड्रामा में, लेकिन फिर भी ड्रामा से न्यारा रहना है. उसकी प्रैक्टिस अगर हम सवेरे इस तरह से कर लेते हैं तो फिर सारा दिन में वो बहुत इजी हो जाएगा. क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस में फीड कर दिया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. इस स्थिति में बैठकर मैं ड्रामा को देख रही हूँ और ड्रामा में होते हुए भी मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ. ये सुबह अगर कुछ एक मिनट्स के लिए कर लिया, सारा दिन करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो फिर जो वो हम हर एक घंटे में एक मिनट वाला करते हैं, उस एक मिनट में फिर हमें ये करना है कि ये ड्रामा है, सब एक्टर्स हैं, लेकिन मेरे पास एक मिनट मिला है इसमें से डिटैच होकर गो बैक टू दैट सेंट्रल स्टेज. और ये एक एक मिनट मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ अगर हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी. वो क्रिएट तब होती है जब हम भूल जाते हैं मैं कौन
1: हूँ. शिवानी, यहाँ जो आपने बताया, जबकि जो एक प्रोसेस जो कि पहले फाउंडेशन जिसे आप कह रहे हैं कि दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोसेस, बिकॉज अब इट्स वेरी क्लियर टू मी कि सीधे ही हम ये कहें कि मैं एक पीसफुल, आई एम अ पीसफुल सोल, इट डजंट वर्क. You know, even if we feel that it works, it does not work unless until we experience it. और उसके लिए वो grounding जरूरी है. तो क्या पहले कुछ दिन वहां तक जाने से पहले ये grounding की जाए?
0: ये भी कर सकते हैं, absolutely. कई बार जब हम 7-day course करते हैं तो पहले आत्मा का परिचय हमें मिलता, तो कुछ एक दिन हम आत्म अनुभूति ही करते हैं कि पहले मैं अपने आप को तो रियलाइज कर लूँ, अपने आप को तो पहचान लूँ. तो कुछ एक दिन वो करें, वो भी कर सकते हैं एब्सोल्युटली. और उसमें जब हमें लगे कि हाँ मुझे अनुभव हो रहा है, फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा.
1: और अब जो कई बार कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैंने आधा घंटा अपने लिए रखा है सुबह मेडिटेशन का, लेकिन वो तो इतनी जल्दी हो जाता है क्योंकि बाबा से बात करने का कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं. मैंने कह दी अपनी बात खत्म होगी, अब जवाब का दिन भर में आएगा. बट नाउ आई अंडरस्टैंड यू नो दैट हाउ दिस ग्राउंडिंग एक्चुअली,
0: दिस इज लाइक, ये जो ग्राउंडिंग है ना, इट्स लाइक वार्मिंग अप. अगर हम वो वार्मिंग अप नहीं करेंगे तो आगे की जो एक्सरसाइज होती है वो ठीक से हो नहीं पाती.
1: और हर एक्सरसाइज से पहले वार्मिंग अप जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. आज एक और बार आपने एक बहुत क्लैरिटी से बताया कि मेडिटेशन कैसे की जाए, क्या एक सही तरीका है, उसकी फाउंडेशन क्या हो और कहां से फिर यहां से शुरू करेंगे तो फिर वो इतनी मुश्किल नहीं लगती है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने का हम सब ने तय कर लिया है, फैसला किया, लेकिन मेडिटेशन कैसे करनी है ये बहुत जरूरी हो जाता है. आज जिस तरह से हमने ये जाना कि एक रात पहले ही तय कर लें हम इस अपॉइंटमेंट के लिए कि ये अपॉइंटमेंट मेरे साथ है और फिर परमात्मा के साथ है, तो उसका एजेंडा हमारे पास होना चाहिए. फिर किस तरह से सुबह उठने के बाद जो जगह तय की है उसको जरूर स्वच्छ जगह हो, पवित्र जगह हो और पवित्र मन से ही वहां बैठे, ये सोचें कि ये मेरे दिन की फाउंडेशन होगी. फिर किस तरह से उस फाउंडेशन का जो एक पूरी प्रिपरेशन है कि किस तरह से उस ड्रामा को देखें दिन भर में जो होगा उसे डिटैचमेंट के साथ देखें और उन सभी विचारों को आने दें, उन्हें रोके ना, और एक बार निकल जाने के बाद फिर उस ध्यान में बैठें, अपने आप से बात करें और फिर उस परमपिता परमात्मा के पास जाएं. तो अपने आप जिस ध्यान को हम कई बार सोचते हैं कि हमारा योग नहीं लगा, वो योग लगने से कोई नहीं रोक सकता. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आपके पास है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं.

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्य कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान दें।

0: Ik ben Roy.
1: Tilke omange hai jawa. Rang mein duba hai sama.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन कराक के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। यूं तो 1857 की क्रांति की आवाजें कई दिशाओं से गूंजी थी, मगर वो नगर जहां इस संग्राम को नियोजित अभियान का स्वरूप दिया गया उसका नाम था कालपी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा कालपी का किला आज भी इस बात की गवाही देता है कि किस तरह असंख्य देशभक्तों के लहू से रंजित यमुना चीत्कार कर उठी थी। श्री कृष्ण के साथ अपने विशेष अनुराग पर इठलाती ये नदी नहीं जानती थी कि एक रोज उसका आंचल अपने ही पुत्रों के खून से रंग जाएगा। इस हादसे के बाद वो बही तो जरूर, लेकिन उसका अलहड़पन न जाने कहां खो गया। आजादी का सवेरा भी उसके होठों से वो गमजदा भावना हटा सका जो 57 की क्रांति के वक्त उस पर गहरे बैठ गया था।

का नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। क्रांति नायक नाना साहब पेशवा इसी दुर्ग में आकर ठहरते थे। क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग के नीचे भूमिगत तल में हथियार बनाने का कारखाना बना रखा था, जिसे उस समय का सबसे बड़ा शस्त्रागार माना जाता था। कोच, कालपी या कानपुर, लड़ाइयां कहीं भी हुई हों, लेकिन उनका नियंत्रण इसी दुर्ग से हुआ। दुर्ग के नीचे यमुना से जुड़ा वो किला घाट है, जहां क्रांतिकारियों ने यमुना का पवित्र जल हाथ में लेकर संकल्प लिया था कि अपने खून की अंतिम बूंद तक वे आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं।

फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के। किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए। श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतत उसकी। आ मृत्यु आ, आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो।

मई 1857 के मध्य तक कालपी की सेना को छोड़कर उत्तर भारत की समस्त सैनिक टुकड़ियों ने बड़े पैमाने पर लड़ाई करना छोड़ दिया था। कालपी में क्रांतिकारियों ने 84 गुंबद से यमुना तक के सभी मार्ग काट दिए थे। जगह जगह खाइयां, अवरोध के लिए चौकियां, 10,000 सशस्त्र सैनिक, 200 नौकाएं, बीहड़ों में डेरा, ये सभी बातें एक अच्छी खासी तैयारी का प्रमाण थी। मगर आजादी अभी दूर थी। ह्यूरोज ने जब कालपी पर आक्रमण किया तो इस दुर्ग पर फतह पाने के लिए उसे लगातार 24 घंटों तक आग के गोले बरसाने पड़े। मगर अफसोस, वो एक भी क्रांतिकारी को जिंदा नहीं पकड़ सका। आजादी के दीवानों की तैयारी में एक तैयारी आत्म बलिदान की भी थी। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हुकूमत उन्हें जिंदा पकड़े।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम्स से।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।
3: रक्तदान करें, जीवन दान दें।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
1: मैं आज फिर से कुछ पढ़ के शुरू करना चाहूंगा।
2: जरूर।
1: ये कहता है, अ वाइज मैन मेक्स हिज ओन डिसीशंस, एन इग्नोरेंट मैन फॉलोज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज नो मोर देन दिस, व्हाट पीपल थिंक दैट द अदर पीपल थिंक।
2: ज्ञानी आत्मा मतलब जिसके अंदर ज्ञान है, जो अपनी सोच अपनी चॉइस से क्रिएट करता है, चाहे आसपास लोग कुछ भी कह रहे हैं, चाहे मेजोरिटी कुछ भी सोचते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी सही समझती है, लेकिन आत्मा मुझे क्या कहती है, व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, जो मेरी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है। कई बार ये भी हो सकता है कि दुनिया सब कुछ एक अलग सोचती है और हम कुछ अलग ही बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बट व्हाट इज राइट फॉर मी द बीइंग, जो सही है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। एंड समटाइम्स कोई भी और उस बात से अग्री नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ हम फील करेंगे कि वो हमारे लिए सही है, एंड फिर हम डिसीजन लेंगे वो वाइज। एंड इग्नोरेंट मैन कहा, जो सिर्फ फॉलोज पब्लिक ओपिनियन, मतलब निर्णय लेने के टाइम उनका जो क्राइटेरिया है वो ज्यादातर ये होगा कि सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, सबको सही क्या लगता है, सब किस बात को अप्रिशिएट या अप्रूव करते हैं, दुनिया में सही किसको माना जाता है।
1: ऑल द टाइम दुनिया को खुश करना या दुनिया क्या कहेगी।
2: दुनिया को खुश करने के प्रोसेस में कई बार हमारी अपनी खुशी गायब हो जाती है। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी जो कर रहे हैं वो सही हो, जरूरी नहीं है। आज अगर मेजोरिटी लोग नाराज होते हैं तो नाराजगी सही नहीं है। सही नहीं है बाय नॉट बाय एनी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, बट सही नहीं है बिकॉज आई फील इट कि ये मेरे लिए सही नहीं है। अगर मेजोरिटी लोग आज इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे फील हो जाएगा इरिटेट होते समय ये मेरे लिए सही नहीं है, बट व्हेन आई गिव अ जस्टिफिकेशन आई सेड इट्स ओके, एवरीबॉडी गेट्स इरिटेटेड, इफ एवरीबॉडी गेट्स इरिटेटेड इट्स फाइन इफ आई गेट इरिटेटेड। तो हम अपने जीवन को पब्लिक क्या सही समझते हैं, मतलब लोग क्या सही समझते हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स को अपना बिलीफ सिस्टम बना के, अपनी जीवन जीने की मान्यता उसको बनाकर उसी के थ्रू चलना शुरू कर देते हैं, इवन इफ इट्स राइट फॉर मी और नो। खाने पीने में, कपड़े पहनने के तरीके में, जो भाषा हम बोलते हैं उसमें भी कि लोग कौन सी लैंग्वेज अप्रूव करते हैं।
1: हेलो बोलते थे, नमस्ते बोलते, नहीं नहीं हाय निकले आजकल।
2: हम ज्यादा सोचते भी नहीं है कि ये सही है या नहीं है, सब कर रहे हैं तो इसलिए सही होगा। आई हैव टू डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग, आई हैव टू बी लाइक एवरीबडी

0: क्या मेरी भी वही डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट होने वाली है? जो लोगों की डेफिनेशन ऑफ प्यार है, खुशी है, क्या मेरी भी डेफिनेशन वही होने वाली है? या इज देयर गोइंग टू बी अनदर वे ऑफ लिविंग? कुछ दिन पहले आपने एक एपिसोड में कहा था, मैं किसी के घर गया, उन्होंने बड़ी गाड़ी मुझे नहीं भेजी, छोटी गाड़ी भेजी, तो मैं हॉट हो गया या गुस्सा हो गया, नाराज हो गया।
1: नहीं, मैंने ये कहा था कि उनके पास घर पे थी,
0: भले थी,
1: और जब मेरे आने के बाद उन्होंने बोला मैं थोड़े काम पे अभी आता हूँ, बैठिए, और वो मर्सिडीज में बैठी।
0: वी फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। डिसरिस्पेक्टेड क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या बनी हुई थी? हमारी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या बनी?
1: आपके घर पे कोई मेहमान आए तो गिव हिम द बेस्ट,
0: ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी बनी थी।
1: आपके घर में, आपके घर में मैं आऊं और आप बोले दो ग्लास पानी लाओ और स्टाफ आपके लिए चांदी के ग्लास में लाए, मेरे लिए कांच के, अजीब सा नहीं लगता?
0: अजीब सा भले लगे, क्यों अजीब सा लग रहा है? क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग के हिसाब के अनुसार अलग था।
1: मैंने ये नहीं बोला कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी लाओ,
0: विच इज ओके, बट स्टिल उसको अगर हम अभी चेक करें,
1: बुलाया क्यों?
0: हर्ट ये क्यों डीप हो रहा है
1: बताइए?
0: ये हर्ट डीप इसलिए हो रहा है क्योंकि लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग की
1: लेयर्स ऑफ गुड मैनर्स एंड बड़ा
0: गुड गुड मैनर्स भी कहाँ थे?
1: मेरी गुड मैनर्स है, बड़ा दिल है कि मेरे पास कोई मेहमान आए तो मैं उसको अपनी बेस्ट कार दूंगा,
0: वो आपकी
1: डेफिनेशन में, या किसी छोटी गाड़ी में जाऊंगा,
0: आपकी डेफिनेशन है ना।
1: मैं अच्छा कप निकाल के चाय पिलाऊंगा मेहमान को,
0: राइट,
1: खुद भले मग में पीऊं,
0: राइट,
1: ऐसी बात नहीं है।
0: सी दिस इज सी, इसलिए ये हमारी शक्तियों को कितना डिस्टर्ब करता है।
1: दिस इज नॉट शक्ति और कंडीशनिंग, ये तो किसी मेहमान को भगवान क्यों बोलते हैं आप?
0: बोलते हैं ना, तो कोई मेहमान को भगवान बोलते हैं, कौन बोलता है? कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, वो उनकी मान्यता थी, उन्होंने सी हाउ स्टेप वाइज इट गोज, उन्होंने जीवन को उस तरह से जीना शुरू किया, वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, वेरी राइट फॉर देम, वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेशन फॉर देम, सब कुछ सही है। हम उस जीवन जीने को उस तरह से चलते गए, राइट, उस कंडीशनिंग से हम चलते गए, फिर सडनली हमारे सामने एक सिचुएशन आई, एक परिस्थिति आई जहां किसी ने हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया, यही हुआ ना एक्चुअली, हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया। जैसे हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया, हमारा डिसीजन किस आधार पर बेस्ड था कि वो पब्लिक ओपिनियन के जो मेहमान है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, आज वो नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ आज मेरे साथ, तो फिर मेरा डिस्टर्ब होना नेचुरल था। मैं उस क्षण भी बिल्कुल उस पुरानी अपनी पब्लिक ओपिनियन की कंडीशनिंग के थ्रू ही चल रहा था।
1: अंडरस्टैंडेबल, राइट, आपकी बात
0: अंडरस्टैंडेबल, इसलिए अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, सी यू आर टॉकिंग अबाउट देम।
1: नो, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट वन थिंग, की यू हैड, जब आप इन्वाइट करने के टाइम पे आपने पब्लिक,
0: आप उनके बारे में बात कर रहे हैं,
1: क्यों नहीं कर
0: रहे? आप बार बार उनके बारे में
1: सिचुएशन तो समझाऊं,
0: हमें सिर्फ किस पर फोकस करना होता है, मेरा रिस्पांस क्या होना चाहिए था। आप देखो क्यों, कितना पुराना ये डीप संस्कार है, हम बार बार उस पर स्लिप होकर जाते हैं, ये हर एक के साथ हो रहा है। वी हैव टू, दैट्स व्हाई वर्क सो हार्ड ऑन आवर सेल्फ, क्योंकि एवरी टाइम योर थिंकिंग इज ओनली गोइंग टूवर्ड्स, लेकिन उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने क्यों पब्लिक ओपिनियन के थ्रू मुझे बुलाया, लेकिन उन्होंने, मैंने क्या किया, मेरे पास क्या चॉइस थी, मैं क्या कर सकता था, उस पर नहीं फोकस आ रहा अभी तक। सी हाउ द ग्रोव इज गोइंग, हमारी रिस्पेक्ट इसमें नहीं है कि लोग हमें कैसा ट्रीट करते हैं, ये भी तो कंडीशनिंग है कि लोग हमें जैसा ट्रीट करते हैं वो रिस्पेक्ट है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट? आप अपने को रिस्पेक्ट करें, इसकी क्या डेफिनेशन है कि लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं? क्या ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है? अगर ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट होगी तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे पूरे दिन के अंदर।
1: क्यों?
0: लोग हमें कैसा ट्रीट करें, दैट डिसाइड्स दैट वेदर आई एम रिस्पेक्टेड बाय पीपल, विच मीन्स फिर हम एक इमेज बनाएंगे अपने मन में कि ऐसे ऐसे लोग ट्रीट करें तभी वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। सब लोग उस अनुसार चलेंगे नहीं, और जैसे

0: कोई उस अनुसार चलेगा नहीं, इमिजिएटली आई विल फील डिसरिस्पेक्टेड हो जाएगा ये, क्यों? एंड फिर सारा दिन में कितनी बार फील डिसरिस्पेक्टेड, फील डिजेक्टेड, फील रिजेक्टेड सारा दिन में कितनी बार, क्योंकि हम उस कंडीशनिंग को चेंज नहीं कर पा रहे। वो कंडीशनिंग बनाई किसने थी? हम सब ने मिलकर बनाई थी, सब ने मिलकर बनाई, लेकिन अभी कोई भी रुक कर चेक नहीं कर रहा क्या ये कंडीशनिंग मेरे लिए सही है, क्या ये कंडीशनिंग मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्या ये मुझे एट ईज रहने देती है।
1: अभी तक तो नहीं हुई इस पे।
0: दिस इज वॉट द प्रॉब्लम।
1: उस दिन से लेके आज तक याद है वो?
0: उस दिन से हाँ, बिकॉज वो कंडीशनिंग सेटिस्फाई
1: तो
0: नहीं हुई थी।
1: तो नहीं
0: है, एट ईज नहीं है ना। और उस दिन से आज तक याद है भी वो बात नहीं है, उसके बाद और कितनी सारी बातें हो गई, और हर बार हमने वो कंडीशनिंग नहीं चेंज की कि रिस्पेक्ट मीन्स दिस इज दिस दिस दिस द वे पीपल ट्रीट मी दैट इज रिस्पेक्ट। ये किसने बनाया फॉर्मूला? ये दुनिया ने बनाया, दुनिया ने फॉर्मूला बनाया, मैंने उस फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना लिया, और उस फॉर्मूला ने मुझे सारा दिन में कितनी बार तंग किया, कितनी बार अनकंफर्टेबल किया, तो मुझे उस फॉर्मूला को वापस चेक करने की जरूरत है। एनी फॉर्मूला, एनी कंडीशनिंग, एनी इक्वेशन क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड व्हिच इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी राइट नाउ, इफ इट्स कंफर्टेबल इट्स फाइन, लेकिन अगर वो मुझे एट ईज नहीं रखती है तो मुझे रुककर चेक करना चाहिए कि मेरा मन क्या कहता है, सही डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या है। सिर्फ दो मिनट भी आप साइलेंस में बैठ गए ना किसी दिन और इस डेफिनेशन को चेक करें, सम्मान, किसी को रिस्पेक्ट देना, इसकी सही डेफिनेशन क्या है। जब सही डेफिनेशन समझ में आ गई, फिर सेकेंड चीज हम अपने आप से पूछेंगे कि ये सम्मान क्या लोगों ने मुझे देना है या मैंने पहले अपने आप को देना है। जब भी मन अनकंफर्टेबल हो, हिला हुआ हो, स्टॉप, क्यों डिस्टर्ब है, कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ ऐसा किया, कोई बात ऐसी आई जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, वो मुझे कंफर्टेबल क्यों नहीं लगी? बिकॉज इट वॉज नॉट फिटिंग विद द वे आई थिंक थिंग्स शुड बी, मेरी कंडीशनिंग। उस कंडीशनिंग को, उस थिंकिंग प्रोसेस को अगर रुके, दिस इज व्हाट मेडिटेशन डज, यही तो मेडिटेशन में करना है। जब हम पॉज नहीं लेते, हम स्टॉप नहीं करते, तो पुराने ही तरीके से चलते जाएंगे, लेकिन दिस इज रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन उनके मैनर्स ठीक नहीं थे, वो मेरे मैनर्स। गुड मैनर्स की डेफिनेशन भी किसने डिसाइड की? लोगों ने डिसाइड की, मैं अपनी क्रिएट करता हूं। फॉर मी गुड मैनर्स विल बी, आपके लिए गुड मैनर्स की डेफिनेशन क्या होगी?
1: अच्छी तरह से नमस्ते करना, वेलकम करना, प्यार से किसको बिठाना,
0: और अगर कोई हमारे से ठीक से जैसा हमने सोचा था व्यवहार करेंगे वो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए गुड मैनर्स कौन सी होंगी?
1: प्लीज गेट आउट।
0: ऐसा गुड मैनर्स नहीं होगा ये।
1: क्यों
0: नहीं? हम कहेंगे अगर गेट आउट, तो इसको कहेंगे कि यहाँ जो हर्ट और एंगर और ईगो आएगा ना, उसको कहेंगे दिस विल बी गुड मैनर्स, क्योंकि ये करके यू विल बी कम्फर्टेबल, ये करके आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, ये लोगों को हटाना, डांटना, ऐसे करना, ये हमने दुनिया से सीखा है, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। हमने सीखा, किसी न किसी को देखते करते हुए सीखा है ये सारा कुछ। हमने देखा कि किसी ने किसी को डांटा, सामने वाला डर गया, उसको हमने सोचा वो रिस्पेक्ट है, हमने भी करना शुरू कर दिया।
1: छोटे बच्चे पैदा होते रो के डराते हैं, जाके इस दुकान में रोने लगते हैं, डरा देते कि फिर देखो और जोर से रोऊंगा, हाँ। अगर ये खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं और जमीन पे लेट के रोऊंगा,
0: और फिर उस टाइम पेरेंट्स तो, मान लेते हैं।
1: नहीं, वो बात नहीं कर रहा, बच्चे की मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, कि आपने बोले देख के किया,
0: हाँ।
1: उसको डांट के डराना नहीं आता है,
0: हाँ।
1: रो के डराता है।
0: वो डराता नहीं है, वो रो के अपनी बात कहता है,
1: बात मनवाता है ना,
0: मनवाता नहीं है, बात कहता है, ठीक है। पेरेंट्स उस टाइम मान जाते हैं, और फिर बच्चे की कंडीशनिंग क्या हो जाती है कि रोने से लोग मेरा कहना मान लेते हैं। आज

0: वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन मन ने अभी भी कौन सी कंडीशनिंग रखी हुई है कि रोने से, मतलब शोर मचाने से, चिल्लाने से लोग मेरा कहना मान लेते हैं। फिर उस आत्मा ने और तरफ, चारों तरफ भी ये होते हुए देखा कि रो, शोर मचाओ, चिल्लाओ, काम हो जाता है, काम हो जाता है, कंडीशनिंग बन गई। दूसरों ने भी कहा ऐसे ही तो काम होता है, प्यार से कभी काम होता है किसी का? प्यार से बोल के तो लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। हमने मान लिया पब्लिक ओपिनियन।
1: मैंने तो खुद देखा सिस्टर, वाइफ जो है रोके अपने काम करवा लेती है पति से, पति डांट के अपने पत्नी से काम करा लेता है, दोनों के बस
0: इतना सही। अगर ले लें कि हमने ये देखा है, लोग ये करते हैं, हमने भी करना शुरू कर दिया, और जब हमने ये करना शुरू कर दिया, हमने ये नहीं चेक किया कि क्या ये रोना मेरे लिए कंफर्टेबल था, क्या ये रोना सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है, और हस्बैंड ने ये भी नहीं चेक किया कि क्या ये गुस्सा करना मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए कंफर्टेबल था। हमने सिर्फ देख लिया कि हस्बैंड डांटते हैं तो वाइफ कहना मानती है, वाइफ ने देख लिया कि वाइफ रोती है तो हस्बैंड कहना मानते हैं, देख लिया करने लग गए। दिस इज द गैप इन बिटवीन वॉज नॉट यूज, दिस इज वॉट इट सेज, द वाइज मैन चूजेज हिज ओन डिसीशन, एन इग्नोरेंट मैन फॉलोज वॉट पीपल हैव बीन डूइंग। कि हर जगह सब ऐसे ही होता है ना, रो लो तो कहना मान लेते हैं, गुस्सा कर लो तो कहना मान लेते हैं, मेरा नुकसान,
1: चलो इसका पहले कर दो ये नाराज हो जाएगा,
0: हाँ
1: चलो पहले इसको दे दो ये नाराज हो जाता है।
0: तो वो हमारी कंडीशनिंग नहीं बनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल। और अब जब हम पढ़ेंगे ना ये लाइन, तो हमें लगता है हाँ हम तो अपने ही डिसीजन लेते हैं खुद, आई टेक माई ओन डिसीजन।
1: कहाँ लेते हैं डिसीजन, हमको तो बचपन से सिखाया गया बड़ों से पूछ पूछ के करो, उसको पूछ पूछ के करो।
0: पूछना वो तो एक अलग बात है, वो तो राय लेना है, वो तो कम्फर्टेबल है, राय लेना, एडवाइस लेना, ओपिनियन लेना, डिसीशन, फाइनल डिसीशन टू डू एनीथिंग, एंड डिसीशन इज नॉट जीवन के डिसीशन के ये करना है या ये करना है, यहां जाना, नॉट डिसीशन, नॉट इवन लाइक दोज, जीवन जीने के तरीके के डिसीशन, व्यवहार करने के तरीके के डिसीशन, बात करने के तरीके के डिसीशन। इतना सॉफ्टली बोलेंगे तो लोग समझेंगे कमजोर है, थोड़ा तो जोर से बोलना चाहिए। यह है जीवन जीने के तरीके का डिसीशन। ये सारे डिसीशन किस बेसिस पे बने, लोग ऐसा कहते हैं।
1: जब मैं वॉचमैन से रुक के भी बात करता था या किसी नौकर से रास्ते में रुक के बात करके पूछता था सब घर पर ठीक है क्या है, तो लोग कहते थे इनके तो सलाम का भी जवाब नहीं देना चाहिए, जस्ट वॉक स्ट्रेट, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएंगे आपके, बात नहीं करेंगे। यू आर अ स्टार, यू आर एन एक्टर, यू शुड नो हाउ टू बिहेव। आप इनसे बात करते हो, कमाल है।
0: सी दिस इज व्हाट, मतलब कैसे कैसे, अब ये जो बिलीफ सिस्टम्स है
1: ये मेरी तरफ से हुआ ये इस तरह। और जब मैं बाहर दरवाजे के बाहर में सड़क पे प्लांटेशन लगाया था, बिकॉज हमारा एरिया बहुत ट्रीज बहुत कम थे, तो मैंने सोचा कि ट्रीज बहुत जरूरी है, तो बाहर में पाइप थोड़ा घर पे देते देते पानी दे रहा था, तो यू नो व्हाट अ रिक्शा फेलो स्टॉप्ड एंड टोल्ड मी, इतने बड़े आदमी हो के एक माली नहीं रख सकते आप, रिक्शा ड्राइवर आपको शोभा नहीं देता ही।
0: तो विच मीन्स कि शोभा की रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है, कि आप अपने गार्डन को पानी नहीं दे सकते,
1: पेड़ को पानी नहीं डालो।
0: अब कोई और अगर इन्फ्लुएंस्ड होना चाहे इस बात से, तो वो उस दिन के बाद पानी नहीं डालेगा, वो उस दिन के बाद वो सलाम
1: भी हो सकता है।
0: हाँ।
1: कोई बोले इतना बड़ा आदमी है देखो पानी दे रहे,
0: कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति है खुद पानी दे रहा है, ह्यूमिलिटी, कितनी ह्यूमिलिटी है, और कुछ सोचेंगे इतना बड़ा व्यक्ति है खुद पानी दे रहा है, एक माली भी नहीं अफोर्ड कर सकता, कंजूस। डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियंस, हम किसी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, हमें किसको सेटिस्फाई करना है कि मेरे लिए क्या सही है। जैसे आपने कुछ एपिसोड्स पहले भी कहा था कि किसी ने राय दी कि ये तुमको शोभा नहीं देता,
1: हाँ वो पुरानी बात,
0: शोभा नहीं देता, लेकिन उसको करते करते क्या हो गया, ह्यूमिलिटी से अहंकार की तरफ शिफ्ट हो गए।
1: करेक्ट। हाँ
0: तो ये हमें चेक करना होगा कि किसी ने तो कह दिया कि ये, जैसे इस केस में भी, क्या पानी खुद दे रहे हैं या आपको शोभा नहीं देता, लेकिन ये हमें

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
3: रक्तदान करें, जीवन दान करें।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: विषम को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें कटाहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

किसी ने खूब कहा है, अच्छी बातें पढ़ने देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक सुशील, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो शून्य से 90.4 आवाज।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी। 10,000 crore cells in the brain.

0: to 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो इसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगी, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रही है, बोलो बोलो
1: रीत
0: नहीं
1: रीत
0: नहीं
1: नहीं
0: डोरी
1: डोरी
0: नहीं गोरी।

0: दुश्मन होती है। बोलो बोलो
1: रात
0: नहीं
1: घात
0: नहीं
1: बरात
0: नहीं
1: निशानी
0: नहीं जवानी।

0: ये खोलो
1: कुछ बोलो
0: भेद जरा ये खोलो
1: बोला, बोला कुछ बोलो।

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान।

0: and عقلی نہیں ہے اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا
1: عقلی جان سلیم

0: ये प्रयासों के पुस्तिल गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ
1: सामने।

0: पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।
1: लंबी कल में बाल अवारा पैंट का बना पजामा, अरे लंबी कल में बाल अवारा पैंट का बना पजामा, पांच बापू बाला खाकर

छतरी जैसा जूड़ा और जूड़े से चोटी निकली, जूड़े से चोटी निकली। टोकरी भी अब फैशन बन गई, मर गए गंगा रामा। एक छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स खर्चूंगी, अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स खर्चूंगी, साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा करके लूंगी, अरे कब्जा करके लूंगी। तौबा तौबा आज की छोरी बन गई एक ड्रामा, एक सुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे।

दुनिया पहचाने, जो ठीक है जवाब तो दे, पर मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने, सच है ना बोलती क्यों नहीं, वो मैं जानू तू जाने, पर दुनिया वाले क्या जाने, ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े, ये देख के मचा हंगामा, लुट के मामा.

0: मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रोट के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रोट के हमसे

होश डाली अपने भूलों से खुद झुक रही है। दिल ले गई ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। दिल ले गई एक चुलबुली

0: कोई बात दबाके है कोई नहीं बात कैसी तू बनती है री आई हाई
1: हट दरिया किनारे एक बंगलो सफारी गई
0: जो गई अरे जाएगी कहाँ

कैसी उलझन में है प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, वो हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार कैसी उलझन में है प्यार बड़ी, हाँ बड़ी, हाँ हाँ बड़ी।

मैं घबरा गया, दिल धड़कने लगा कर चकरा गया गया गया गया। मेरी खातिर दो दो यार, मेरी खातिर तो यार लड़ने मरने को तैयार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। ये कनार दो बीमार कैसी उलझन में है प्यार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल।

दिलदार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार कैसी उलझन में है प्यार बड़ी, हाँ बड़ी, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल।

कभी हमने नहीं

दो आलम की और जान हमी पर दोगी, तुम जान हो दो आलम की और जान हमी पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

बैठे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में

0: अच्छा कौन है
1: कैसा तन गया।

कैसा बन के कैसा तन का ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लन

रे पाप की रे सूट पहन कर कैसा सूदे फांदे पाप की रे पाप की रे सूट पहन कर कैसा सूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साल में तो साहब बन गया सलामत साहब बन गया साहब बन के कैसा

0: सो ना
1: हर इंतजार आएगा वो दिन थोड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।